0: பாகிஸ்தான் டொராண்டோ. அவாஸ் தி சஃபர் தில் சிதில்தா.
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773. बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में. 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं. बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज. जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन. पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868. बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868. पाकिस्तान के नंबर वन डेवलपर HMR ग्रुप आपके लिए ला रहे हैं कराची में HMR वाटर फ्रंट. इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव इवनिंग संडे 7 जून शाम 5 से 9 बजे तक हिल्टन गार्डनिंग 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा में. इस लग्जरी वाटर फ्रंट लिविंग की डिटेल के लिए कराची से HMR की टीम यहां तशरीफ ला रही है. लेट्स कनेक्ट, इनोवेट एंड शेप प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर. आपको इस एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट में शिरकत की दावत दी जाती है. रजिस्ट्रेशन के लिए HMR वाटरफ्रंट canada.com पे लॉगिन हो या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए नजमा मलिक 6478241485 या फरहान अंसार 6479190645. कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए. शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं. इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं. मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल. कॉल शिराज हुसैन 6472714147. लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं. कॉल शिराज हुसैन 6472714147. डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 4167579999. दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए. तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं. इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट. रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं. मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 9052323567. अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो. इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स. केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज. रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं. बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002. बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता. अपने

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852, दैट्स 6477679852। विशाल
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639.
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद एंड TGIF आमिर. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.
6: फ्राइडे, यस, इवेंचुअली एंड फाइनली
5: फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा. आपको पता है सैटरडे संडे भी आएगा ना फ्राइडे के बाद.
6: आजकल तो जितनी रफ्तार से आता है उससे कहीं तेज रफ्तार के साथ गुजर जाता है और यूं लगता है दुनिया में अब के दो छुट्टियों की कोई हैसियत औकात नहीं रही.
5: मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे का दिन आमिर के हिसाब से, सैटरडे संडे 4 घंटे का दिन, जो बड़ी जल्दी बीत जाता है. लेकिन फ्राइडे फ्राइडे है, वीकेंड वीकेंड है, कैसा भी हो लेकिन अपने आप में एक फील, एक फ्लेवर जो फ्राइडे को सैटरडे संडे के आते हैं ना, वो अपने आप में बड़े खूबसूरत होते हैं. आप सभी का स्वागत है और लवी डवी शो शुरू हो चुका है. 9 बजे से 11 बजे तक हम आपका साथ देंगे और आप हमारा साथ दीजिए. 416-303-3639. बहुत खूबसूरत सी मॉर्निंग है. पिछले 3 दिनों से बड़ी जबरदस्त सी जो समर है वो हमें वेलकम कर रही है, राइट?
6: जी बिल्कुल. जब समर आता है यानी गर्मियों का मौसम आता है तो यूं लगता है जैसे ये पत्ते जिन्हें हम देख रहे हैं, ये फूल जिन्हें हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, ये न जाने कितनी दिहाइयों से खिलने के मुंतजर थे. सबसे ज़्यादा इंतज़ार, इंसानों से भी ज़्यादा इंतज़ार शायद इन पौधों को, इन दरख्तों को, इन फूलों को और इन दरख्तों को रहता है इस मौसम का, कि जिसमें ये खिल के एक नया पैगाम देते हैं कि आप जितने भी अफसरदा हों, जितने भी परेशान हों, जितने भी वीरान और बंजर हो जाएं, एक मौसम ऐसा जरूर आएगा कि आपको खिलने का मौका मिलेगा. आप फूल बनके महकेंगे, आप सरसब्जो शादाब लहलहाती हुई फसलों की तरह लोगों को भी शादाब करेंगे, सरसब्ज करेंगे, देखने वाले को भी भले लगेंगे और लोगों की भूख और प्यास भी मिटाएंगे. तो ये मौसम एक बहुत बड़ा पैगाम है, देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है कि हर किसी के दिन ज़रूर आते हैं. There will be some bad days, there will be some good days as well. तो पैगाम यह है कि आड़ा तिरछा वक्त हो, जली कटी हुई घड़ियां हो, या आपको लगे कि हालात शायद किसी शेप और फॉर्म में आपके हाथ से निकल रहे हैं, जैसे आप रेत को मुट्ठी में लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बिखरती चली जाती है, इसी तरह हालात भी कभी कभी महसूस होते हैं. लेकिन यकीन मानिए कि वही वक्त होता है नए मौसम का, नए दरख्तों को लगाने का, नई कोंपलों की आबियारी करने का, नए फूल बुनने का, नए फूलों से मुजयन करने का माहौल को. और फिर जब बहार आती है तो हम सब उसका मजा
5: लेते हैं. क्या बात है, अब पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं.
6: जी बिल्कुल.
5: तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे. हमसे रابطे का नंबर है 416-303-3639. स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 416-593-0055.
6: और आप जानती हैं कि आपके साथ शायरी की जुबान में बात करना बहुत अच्छा लगता है.
5: जी.
6: तो एक शेर आपसे बात करते करते और इन फूलों का जिक्र करते करते मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा मैं अपने सुनने वालों के साथ भी शेयर कर दूं.
5: जी.
6: ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो कहीं जाके दिन संवरने वाले थे।
5: क्या बात है।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: मम्मा, why don't you go to work now?
9: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
10: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
9: क्या वो मदद करेंगे?
10: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
11: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
10: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
11: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
12: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374.
13: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
14: शो और आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, इस वक्त 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, टन्स ऑफ सनशाइन। ये जो सन है, सन के ऊपर बिल्कुल भी कहीं भी क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहे। ये थोड़ा सा भी क्लाउड दिखता है तो लगता है कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं।
15: जी बिल्कुल।
14: यू नो, मैंने +15 से -15 तक तब्दील होते कुछ घंटों में देखा है।
15: ओ, कुछ घंटों में?
14: I was wearing a dress +15 and I came back home and fell sick for a few days because it was -15 by the time I came home. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, because सारे time आप देखिए सब सन सन दिखाई दे रहा है। दोपहर का मौसम 22 degrees रहेगा। अगर हम बात करें आपके शाम के मौसम की, कल के मौसम की, रात का मौसम रहेगा करीब 9 degrees, सुबह का 12 degrees। जब आपकी क्लास शुरू होगी तो भी मौसम बड़ा प्यारा होगा, टन्स ऑफ सनशाइन के साथ। और आप अपने स्टूडेंट्स को जो होमवर्क दिया है वो अभी पूरा करने में लगे हैं।
15: पहले सेशन में हमारे लर्नर्स का होमवर्क ये है कि उन्हें पोस्टर्स बनाने
14: जी,
15: हैं। ये जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स आप देखते हैं, इसी की ट्रेनिंग थी कैनवा सॉफ्टवेयर पे उनकी। और दे आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। इस दफा का जो बैच है वो बड़ा सीनियर, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा तजुर्बाकार और स्किलफुल है अपने अपने सेक्टर्स में।
14: और उनको पता है उन्हें क्या चाहिए?
15: जी बिल्कुल बिल्कुल। उनमें एक दो लोग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, एक दो लोग उनमें बिल्डिंग के हैं, दे आर बिल्डिंग दी एम्पायर्स इन नियाग्रा फॉल्स. उनमें एक दो लोग हेल्थ सेक्टर के हैं, एक बिजनेसमैन है, फिर एक साहब हैं वो अपना कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं. इसके अलावा एक और साहब हैं वो आईटी कंसल्टेंट हैं. इस दफ़ा क्लास बड़ी
14: डाइवर्सिटी वाली,
15: हाँ जी, जम के चल रही है, बड़ी कमाल की चल रही है और बहुत अच्छी चल.
14: मैंने देखा एक कपल आपके आया था, एल्डरली कपल, और दोनों के दोनों देवर वेरी एजुकेटेड, वेरी फोकस्ड प्रोफेशनल्स, लेकिन जो हस्बैंड थे थे मतलब उस वक्त मैंने एक एक हफ्ता पहले देखा, वो ज़्यादा यू नो ही वाज टेक्निकली वेरी वेरी साउंड.
15: बिल्कुल.
14: और जो उनकी वाइफ थी उनसे मैं काफ़ी रिलेट कर पाई क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं थी और वो अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी बड़े आराम के साथ. शी वॉज फोकसिंग ओनली ऑन आमिर जी लेक्चर, और हस्बैंड से उन आमिर जी का लेक्चर सुन के वो अपने हस्बैंड से कहती कि ध्यान दीजिए, मेरा जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, पोस्टर पे ध्यान दीजिए आप. उनके हस्बैंड ने बड़ा अच्छा पोस्टर बना के दिया तो इट वाज अमेजिंग बैच.
15: या बिल्कुल बिल्कुल. और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिवानी, हमने ये इरादा किया है
14: अच्छा
15: कि हम लोगों के प्रेमिसेस पे जाके उनको ट्रेनिंग देंगे.
14: जी बिल्कुल.
15: ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है. इससे पहले डिजिटल मीडिया में किसी ने ये काम नहीं किया है कि किसी के बोर्डरूम में जाके 10 12 15 लोग बैठे और छोटे से क्लासरूम स्टाइल में प्रैक्टिकली लोगों को ट्रेन किया जाए.
14: क्या बात है.
15: ये ऐसे ही है शिवानी कि जैसे आप कोई एक स्किल सीख लें और सारी जिंदगी आपके काम आए. इट्स नॉट फॉर अ डे और टू और अ मंथ और टू और मे बी अ ईयर और टू, इट इज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई खातून आटा गूंदना सीख ले तो सारी जिंदगी के लिए सीख लिया उसने, दोबारा नहीं सीखना है उसको. अगर खाना बनाना जैसे आलू बनाना सीख ले अगर कोई
14: मैंने आज से 19 साल पहले सीखा था वो मैं आज भी बना लेती हूं.
15: एग्जैक्टली. सो बिल्कुल ऐसे ही ये डिजिटल मीडिया भी है. एक बार आपने सीख लिया तो 19 साल के बाद भी आपके पास ये स्किल रहेगा, एडिटिंग का, प्रोडक्शन का, फ्रेमिंग का, कॉम्पोजिशन का, हाउ टू यूटिलाइज डिफरेंट शॉट्स एंड सीन्स एंड मेक द कंटेंट एंड यूज़ द कंटेंट, यूट्यूब पे उसको कैसे डालना है, इंस्टाग्राम पे कैसे इस्तेमाल करना है, फेसबुक पे कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपकी ब्रोकरेज है, इंश्योरेंस ब्रोकरेज है, आपकी मोर्टगेज ब्रोकरेज है, या आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज चला रहे हैं, तो अपने स्टाफ को इतना ट्रेन करवा दीजिए जिसका फायदा आपको भी डायरेक्टली
14: पहुंचे. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और जितने आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज है, उसमें हर एक जो रियल्टर हैं वो अपने हिसाब से अपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करे, वर्चुअल टूर को प्रमोट करे, बहुत सारे आइडियाज होते हैं आजकल क्योंकि एक्सपोजर बहुत है, तो बहुत सारे आइडियाज हैं. अब आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि आपको क्या चाहिए, अपने हिसाब से प्रमोट कीजिए. 416-303-3639 नंबर है, 416-303-3639. और आमिर, एक खबर अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर दें. आप लोगों की ह्यूज डिमांड थी कि आफ्टरनून के जो लिसनर्स हैं जो इस वक्त ऑफिस से आ रहे होते हैं वो भी हमें सुनना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की थी और काफ़ी ये कोशिश रंग लाई है. अब मंडे से हम 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ होंगे, तो 2 to 3 आफ्टरनून ड्राइव टाइम हमें ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए. नंबर यही रहेगा, 416-303-3639.
15: जी, अब मुलाकात आप तमाम सुनने वालों से दोपहर के वक्त होगी. आप इसको सपहर का वक्त भी कह सकते हैं
14: अच्छा।
15: जिसमें बच्चों को लाने ले जाने में आप मसरूफ़ होते हैं, इसी दौरान आप रेडियो भी ट्यून इन करते हैं, बहुत से लोगों की शिफ्ट्स ख़त्म होती हैं, बहुत से लोग गाड़ी में अपने काम में मसरूफ़ मशगूल होते हैं, ट्रक्स में मसरूफ़ होते हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर टाइम नाउ मंडे से, यानी सोमवार से
14: जी.
15: हम लोग 2 से 3 बजे आपकी खिदमत में पेश होंगे, तो आप जरूर सुना कीजिएगा. स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो.
14: और ये गाना आपके लिए, आमिर, एक मूवी आई थी एक दूजे के लिए, ये मूवी 1981 में आई थी. इसमें साउथ ऑफ इंडिया के सुपरस्टार, वेरी वेरी सीजन्ड एक्टर, हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी उन्होंने काम किया, कमल हासन वो थे और रति अग्निहोत्री थी. ये एक उस वक्त की कहानी थी जब नेबर्स, जो लोग, दो लोग होते हैं, लड़का और लड़की, दे दे फॉल इन लव. और डेफिनेटली दूसरी कास्ट के होते हैं, एक साउथ इंडियन होते हैं तो दूसरे नॉन साउथ इंडियन, फैमिलीज तैयार नहीं होती हैं. तो ये फैमिली ड्रामा में वो इतना इम्पैक्ट किया इस फिल्म ने लोगों को. और एंड में जाके दे डाई, उनकी दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ, इससे पहले कि वो अलग हों वो दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ. इतने सारे लोगों ने उनको फॉलो किया और यंगस्टर्स तो बिल्कुल दीवाने हो गए उनके लिए. तो फिल्में बड़ा असर डालती हैं लोगों के जहन में. इसका एक गाना बड़ा पॉपुलर था, वही गाना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को.
15: कमाल का गीत है, बहुत अच्छा चुनाव है आपका. स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available, approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available, extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
6: साहब, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जी चाहता है कि सेविंग हो तो वो लग जाए, जी चाहता है किसी दोस्त अहबाब से पैसा उधार लेके डालें तो वो डाल दें, जी चाहता है के बैक होम में अगर कहीं कोई सेविंग पड़ी है तो वो मंगवाएं, वो मंगवा के लगा दें। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं उनमें इतनी जान होती है और इतना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ उनको बनाया गया होता है, उनकी लोकेशन चुनी गई होती है, उनका एरिया चुना गया होता है, फैसिलिटीज एमिनिटीज चुनी गई होती हैं, कि इंसान का जी चाहता है कि बाइंग का मौसम है, खरीदने की घड़ियां हैं, खरीदने का वक्त है, बायर्स की मार्केट है, तो क्यों ना इस मार्केट से फायदा उठाया जाए। याद रखिए कि आज जो पौधा आप लगा देंगे कल उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पौधा आज लगाना बहुत जरूरी है कल के फल के लिए। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि बिना बीज बोए बिना पौधा लगाए ही फल उनको मिल जाएगा, तो ये याद रखिए ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, इट विल बी इम्पॉसिबल। और फिर एक ही चीज रह जाएगी आपकी जिंदगी में, रिग्रेट, यानी पछतावा रह जाएगा कि काश अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छे टाइम पे अच्छे रियल्टर के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आज जो हमसाए में लोगों ने $3-4 लाख बनाए हैं हमारे भी बन जाते। बात हो रही है रॉलिंगवुड्स टाउन्स की, लॉन्च हो रहे हैं जून 1 को, लोकेशन है मेविस रोड एंड रे लॉसन बुलेवर्ड, ब्रांड न्यू फ्री होल्ड टाउन होम्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 600। और भी डिटेल्स जानेंगे, कमाल का प्रोजेक्ट है, ध्यान से बात सुनिएगा। निकी गांधी जी, वेलकम करते हैं आपको।
7: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी आपका फॉर पुटिंग मी ऑन एयर, एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के बहुत ही एक्साइटिंग प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंगवुड टाउन, जिसकी प्राइसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है सिर्फ 600,000 से और अर्ली 2028 की क्लोजिंग है। इसका मतलब आपको एक्सटेंडेड डिपोजिट स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, मतलब कि आप बहुत ही कंफर्टेबल और स्मार्ट वे में ना इन्वेस्ट करने का आपको एक मौका मिल रहा है। और जैसे हमें भी आपने बताया, बिल्कुल सही बात है कि बायर्स मार्केट है, सो बहुत टाइमिंग है, अपॉर्चुनिटी है। और अब हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें ना, तो सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है मेविस एंड रे लॉसन बुलेवर्ड पे, जो कि ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए टाउन हाउसेस है जो कि आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड पे रहते हैं. और अगर हम रियल एस्टेट में ना एक चीज कहते हैं लोग कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, राइट, तो ये बिल्कुल परफेक्टली फैट बैठता है रोलिंगवुड टाउन पे क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है. मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 410, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, सब डेली एमिनिटीज जितनी भी है बिल्कुल नजदीक है आपकी. यहाँ तक कि कॉलेज सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है. हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है. इसका मतलब कि अगर आप फैमिलीज के साथ रह रहे हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ना ये एक बहुत स्ट्रांग लोकेशन है. इसके साथ साथ एक और खास बात ये है कि ये जो पॉकेट है ना इसके 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना बहुत लंबे टाइम से कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं आया है और हम देख भी नहीं रहे हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स कि कोई इस पॉकेट में प्रोजेक्ट आएगा. बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन में आ रहे हैं, मिसागा में आ रहे हैं, ब्रैम्पटन में भी जो आ रहे हैं वो बहुत नॉर्थ साइड पे इस पर्टिकुलर पॉकेट में नहीं है. डेवलप्ड एरिया है, मैच्योर्ड कम्युनिटी है. सो अगर आप इस मैच्योर्ड कम्युनिटी में अपना ब्रांड न्यू घर लेना चाहते हो तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है. गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और इसके साथ साथ ना इस यहाँ पे हमारे पास 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के टाउन हाउसेज अवेलेबल है. हमारे पास 3 से 5 बेडरूम तक, 5 वॉशरूम तक के भी टाउन हाउसेज अवेलेबल है. इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, सबके लिए ना हमारे पास कुछ ना कुछ सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे है ही है. इसके साथ साथ जो बिल्डर है ना वो बहुत बढ़िया बढ़िया इंसेंटिव देने वाले हैं. और जैसे कि आपने बताया ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जून 1st को. सो जून 1st को प्राइजेस और इंसेंटिव्स रिलीज हो रहा है. और मैं बता दूं कि मैं बिल्डर के साथ इसमें डायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ. सो सभी रियल्टर्स, ब्रोकर्स, मेरे भाइयों बहनों को बता दूं अगर आपको भी इस ब्रोकर लॉन्च को, जून 1st को हमारा ब्रोकर लॉन्च होने जा रहा है सुबह, अगर आपको इस ब्रोकर लॉन्च में हिस्सा लेना है, अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए, आप मुझे अभी के अभी कॉल कर सकते हो एट 416-456-3815. सभी रियल्टर्स को इट्स ब्रोकर्स प्रोटेक्टेड. सो मेक श्योर यू कॉल मी एट 416-456-3815. इसके साथ साथ आजकल ना प्री कंस्ट्रक्शन घरों पे ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का भी जीएसटी एचएसटी रिबेट का बेनिफिट चल रहा है, राइट, जिसमें एलिजिबल बार को अप टू 130,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है. इसलिए जो भी बायर्स अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे ना उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. दोस्तों मार्केट जो है ना अब धीरे धीरे ओपन अप होनी शुरू हो चुकी है. बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी अब वापस आ रहा है. इंटरेस्ट रेट भी स्टेबलाइज हो रहा है. सो जो लोग वेट कर रहे थे कि जब कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएंगे तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है. रोलिंगवुड टाउन इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, इन्वेस्टर हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ लेना चाहते हो, रोलिंगवुड टाउन डेफिनेटली एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है. सो सभी मेरे रियल्टर्स भाइयों बहनों को, सभी लिसनर्स को, सभी क्लाइंट्स, अगर आपको वीआईपी प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव सब की कंप्लीट डिटेल चाहिए, आप मुझे अभी के अभी कॉल कर सकते हो एट 416-456-3815. आई रिपीट, इट्स 416-456-3815. बैक टू यू अमय जी.
6: यहां नंबर दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात कीजिए, मशवरा कीजिए. याद रखिए कि बात आप करेंगे तो बात बनेगी, बात आगे चलेगी, रास्ता निकलेगा पैसा बनाने का. याद रखिए, मार्केट हैज टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ. और जो सिचुएशन आजकल चल रही है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं पड़े हुए तो उन पैसों को 2 गुना 3 गुना करने का मौका इससे बेहतर आपको आने वाले वक्त में नहीं मिल पाएगा. यहां नंबर है, नोट कीजिए, बात कीजिए, सलाह कीजिए, 416-456-3815. नंबर आपको दोबारा दे रहे हैं, 416-456-3815. थैंक यू वेरी मच निकी.
7: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
8: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
9: Mama, why don't you go to work now?
10: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
11: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
10: क्या वो मदद करेंगे?
11: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
12: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
11: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
12: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
13: सब हादसे का हो जाना, हादसे का सामना होना, चाहे फॉल्ट आपका हो या कसूर किसी और का, हम तकरीबन हर आए रोज हादसात को होता हुआ देखते हैं। किसी में चोटें बहुत गहरी होती हैं, जख्म बहुत गहरे होते हैं, और किसी में चोटें भी गहरी नहीं होती और जख्म भी गहरे नहीं होते। बात यह नहीं है कि हादसा हो गया, मसला और मामला दरअसल यह है कि हादसे के बाद क्या हुआ। इट्स नॉट अबाउट द एक्सीडेंट, इट्स अबाउट द प्रिकॉशंस एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, दैट्स व्हाट मैटर्स। अगर कोई जख्मी हुआ तो अस्पताल ले जाने के लिए इंतजाम क्या था, अगर

0: गाड़ी डैमेज हो गई तो उसको मुनासिब जगह पे ले जाने का इंतजाम क्या था? हादसे के बाद आपने हादसे को रिपोर्ट किया या नहीं किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। हादसे के बाद रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या हैं? बहुत सों को जो लोग इस मुल्क में नए आते हैं या लाइसेंस नया लेते हैं या यहां आके ड्राइविंग पास करते हैं, तो एज फॉर एज आई नो कोई सर्टन प्रोसीजर या तरबियत या कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो ये भी बताए कि वेयर टू गो, व्हेन टू गो, हाउ टू रिपोर्ट, व्हाट टू से, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। और जब आप एक्सीडेंट के बाद किसी रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, वहां सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। एक आध शख्सियत को वहां बिठाया होता है और वो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू हेल्प यू आउट, दे आर देयर टू डू देयर ओन क्लरिकल वर्क। वहां आपको हादसे का पूरा नक्शा बनाने के लिए कहा जाता है कि आप बना के दिखाइए, ड्रॉ कीजिए यहां के क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या थी सारी कहानी। बेस्ड ऑन ऑल दीज ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं आपको बता दूं कि हादसे के फौरी बाद जिस शख्सियत की आपको जरूरत पड़ती है वो है एक सीजन्ड, एक स्किलफुल, एक एक्सपर्ट, एक माहिर बैरिस्टर पर्सनल इंजरी में स्पेशलाइज किया हुआ, जो आपको आपकी जुबान में बताए कि क्या प्रोसीजर होगा, अब क्या करना होगा आपको, आप किस तरह की कंपनसेशन के अहल होंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, कहां लगेगा, किसको फराहम करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी एक इंतहाई सीनियर और तजुर्बाकार पर्सनल इंजरी बैरिस्टर को हमने दावत दी है। इन्होंने स्पेशलाइज किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, एमबीए किया, उसके बाद बैरिस्ट्री की, कमर्शियल लॉज को जानते हैं और पर्सनल इंजरी के हवाले से ऑल दी रेलेवेंट लॉज को प्रैक्टिस करते हैं। कमाल के बैरिस्टर हैं, सैयद एम रजा बैरिस्टर, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो फैल भाई, आपका और आपके इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो फैल भाई, तो आपने कहा रिपोर्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखें, रिपोर्टिंग के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जब आप एक्सीडेंट सीन से कॉल करते हैंगे और पुलिस ऑन द सीन आती हैगी, ये पर्टिकुलरली उन क्रैशेस में जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और जहाँ पे इंजरीज भी जरा सीरियस होती हैं, तो वहाँ पे पुलिस सीन पर आती है और पुलिस अपना ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हैगा। कोई सीन पे अगर विटनेसेस हो तो उनका जो है वो स्टेटमेंट लेता हैगा और उसके साथ साथ जो है वो ड्राइवर्स के स्टेटमेंट भी लेता है, इफ दे आर मतलब ये कि एबल एनफ और मतलब ये कि दे कैन गिव दे स्टेटमेंट एट दैट पॉइंट। फिर ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो पूरा उसका डायग्राम बनाता हैगा कि गाड़ी कौन सी गाड़ी जो है वो टेंटेटिवली कहाँ थी, अगर फर्ज किया कि गाड़ियों की पोजीशन चेंज हो गई है और अगर वहां पे कोई आई विटनेस है तो उसके स्टेटमेंट की बेस पर जो है वो डायग्राम बनाता हैगा और सारी पार्टियों की जो है इंफॉर्मेशन लेता हैगा एंड देन मतलब ये कि ही फाइनलाइजेस द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट फाइनलाइज होती है वो कंप्यूटर पे करते हैंगे और उसकी कॉपी जो है वो एक आध हफ्ते बाद जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो अवेलेबल होती हैगी, तो वो कॉपी जो है वो MTO का एक पोर्टल हैगा उस पर अवेलेबल हो जाती हैगी। उसके $12 चार्जेस हैंगे और जो तो वहां से जो है वो जिस जो भी मतलब ये कि इन्वॉल्व पार्टीज हो एक्सीडेंट में वो वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकती हैंगी। दूसरा तरीका जो है वो ये होता हैगा कि जब पुलिस सीन पर नहीं आती हैगी तो पुलिस कहती है कि जी आप कोलिजन सेंटर जाएं, वहां पर जाके रिपोर्ट करें और कोई भी एक्सीडेंट जिसमें $1,000 से ज्यादा डैमेजेस है वो रिपोर्ट करना जरूरी हैगा। तो रिपोर्टिंग इसलिए होती है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी हो कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अगर पुलिस सीन पर नहीं आती हैगी और वो फॉल्ट डिटरमिन नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी पार्टी, अगर कोई चार्ज नहीं हुई ऑन द सीन तो किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है। जाहिर बात है एक पार्टी फॉल्ट पर है और एक पार्टी फॉल्ट पर नहीं है, या बहुत रेयर केसेस में 50-50 का चांस जो है वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो ये बात सारी कोलिजन सेंटर की है। जब आपको कोलिजन सेंटर आप सेम डे भी जा सकते हैं अगर टाइम नहीं है, इफ यू आर मतलब ये कि टेकिंग केयर ऑफ योर इंजरीज, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं एक्सेट्रा, तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैंगे।
0: अच्छा।
1: या आप अगर नेक्स्ट डे भी अगर मसला आएगा तो आप उसके बाद भी जा सकते हैंगे, मतलब ये कि एक दो दिन बाद, कोई मसला नहीं है बिकॉज देर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट। तो आप वहां पे जाके जब आप रिपोर्ट करते रहेंगे तो यकीनन सीन ऑफ एक्सीडेंट से जो है वो आपने अदर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन ले ली है, उसका इंश्योरेंस स्लिप वगैरह सब चीजों की पिक्चर लें आप, उसका ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर जरूर लें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैंगे वो अपने एड्रेसेस चेंज करते रहते हैंगे, तो ड्राइवर लाइसेंस से फायदा ये होता है जब आप ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर ले लेते हैंगे तो हमारे पास एजेंसी रहेंगी, उससे जो है उसके अपडेटेड एड्रेस का भी पता चल जाता है, यानी अगर वो बाद में एड्रेस चेंज भी कर ले, जो कि लिटिगेशन वर्क के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट सर्व करने होते हैं वहां पे
0: जी।
1: तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आपने कोलिजन सेंटर पे जाना है, आजकल वहां पे कंप्यूटर लगे हुए होते हैंगे, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने हेल्प योर सेल्फ करनी हैगी, आपने जो है वहां पे खुद ही सारी जो है वो फिल करनी हैगी, और खुद ही आपने जो है उसके डिस्क्रिप्शन भी देनी है और डायग्राम भी बनानी है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप पहले किसी अपने सेल फोन पर जो है वो नोट्स आप जॉट डाउन कर लें, या आप ऐसा करें आजकल चैट GPT है उसको आप दें डिस्क्रिप्शन कि जी दिस वॉज द हैपनिंग ऑफ द एक्सीडेंट, आई वॉज ड्राइविंग ऑन दिस रोड, प्लीज गिव मी वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट, तो वो भी आपको दे देगा।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही।
1: तो वो भी जो है आप कॉपी पेस्ट मार दें, यानी कॉपी पेस्ट मारने का मतलब ये है कि वही वॉइस जो है वो आप टाइप कर दें, मगर आप ये बात ये याद रखें कि आपकी डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए, यानी जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसी तरह से ज्यादातर आप लिखें, यानी अगर आपका फॉल्ट नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि जी आपने क्या लिखना आएगा, तो यकीनन वी आर हियर टू हेल्प यू। तो ये जो है ये डायग्राम आप बना के और उसको जो है वो सारा आप उसको फिनिश कर दें, और उसके साथ साथ एक कॉपी जो है वो आपके लिए भी प्रिंट हो जाती है वहां पर ही, तो वो कॉपी आप प्रिंट करके जरूर ले लें अपने साथ, या अपने आपको जो है वो आप ईमेल कर दें, और उसके साथ साथ अगर प्रिंटेबल कॉपी हैगी तो वो आप प्रिंटेबल कॉपी जो है वो भी आप ले लें, और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी चाहिए होते हैंगे वो, इसलिए कि आपका क्लेम जो अगेंस्ट अदर ड्राइवर है ये उसकी बड़ी ज्यादा बेसिस रहेंगी। याद रखें कि अगर आप क्लेम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे यकीनन ये क्वेश्चन कर सकती है कि आपकी गाड़ी को डैमेजेस बहुत ज्यादा है, व्हाई यू डिडंट रिपोर्ट द एक्सीडेंट, यू शुड गो एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैगा। लेकिन बहरहाल अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हैगा और अगर आपने तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर ज्यादा आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैगा। और जो है आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया था, तो आज इस पे बात हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में टॉपिक दिए थे हम उस पे भी बात करेंगे। तो अभी जो है इसको बस समराइज करते हुए, व्हेनेवर देयर इज अ कार एक्सीडेंट यू नीड टू कॉल सैयद लॉ, वी आर हियर टू हेल्प यू, लास्ट 13 ईयर्स वी हैव बीन डूइंग दिस, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सेटलमेंट में हमने जो है अपने क्लाइंट्स को दिलवाए हैंगे, एंड वी इंटरेक्ट डायरेक्टली विद अवर क्लाइंट्स, मीन्स टू से दैट वी स्पीक टू देम डायरेक्टली, मी एंड माई स्टाफ, so that we work together in a coordination like a team, ताकि आपके क्लेम की वैल्यू और आपकी जो भी एक्सीडेंट की नीड्स है उसको मैक्सिमाइज करें। तो फैल भाई नंबर आप बताएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यू हैव अ गुड वीकेंड, और आपके लिसनर्स को एज वेल
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ये नंबर है, ये आप अपने पास रखिए, नंबर सेव कर लीजिए, ये नंबर बहुत कारामद, बहुत मुफीद और यूजफुल नंबर है। हादसे के हवाले से बात करें, आप ड्राइव करते हैं या नहीं करते हैं, यू मस्ट हैव दिस नंबर 416-937-5046। ये बैरिस्टर सैयद एम रजा का डायरेक्ट नंबर है, आपके काम आएगा 416-937-5046। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू,
1: थैंक यू, तो फैल भाई थैंक यू।
2: आमिर कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब हमारे पास एक डिफिकल्ट टाइम आता है, कभी कभी हमारे पास डिफिकल्ट टाइम आता है तो हमें लगता है कि जिंदगी जो है वो फिर से रिवाइंड हो जाए, और हमें हर पल ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते थे। अगर हम कल जो हमने कल किया उसको हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते थे, राइट। और काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, कहते हैं काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी कब दिल रोएगा, काश जिंदगी सचमुच किताब होती, फाट सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ता उन पन्नों को जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है, हिसाब तो लगा पाता कितना खोया और कितना पाया है।
0: वाह क्या कहने,
2: काश जिंदगी सचमुच किताब होती, वक्त से आंखें चुराकर पीछे चला जाता, टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाता, कुछ पल के लिए कुछ और मुस्कुराता, काश जिंदगी सचमुच किताब होती, है ना।
0: ये बहुत बड़े फलसफे की तरफ आपने इशारा किया है। देखिए एक फिल्म बनती है उसमें बहुत से वसाइल खर्च होते हैं, बनाने वाला बहुत खूबसूरत सेट बनाता है, दुनिया के बेहतरीन अदाकारों को कमाल के कैरेक्टर्स कमाल के किरदार लिख के देता है, कहानी में बड़ी जान होती है, म्यूज़िक बड़ा शानदार होता है, लोकेशंस बड़ी भरपूर होती हैं और उसकी पिक्चर क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता है, उसकी डबिंग भी कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड से करवाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म नाकाम हो जाती है।
2: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को भी पसंद,
2: लोगों को भी पसंद हो। जी बिल्कुल,
0: एक डायरेक्टर अपनी तमाम तर जहानत तजुर्बा अपनी धूप छाँव में अटी हुई मेहनत सारी की सारी उस फिल्म पर लगा देता है
2: जी।
0: लेकिन वो फिल्म कामयाब नहीं हो पाती। ऑन द अदर हैंड कभी कभी वो डायरेक्टर एक आम सी कहानी लेके आम से कैरेक्टर्स को उस कहानी में पिरो के एक आम सी सादा सी फिल्म बनाता है और वो सुपरहिट हो जाती है। तो ये जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही है, कभी हम कुछ काम बगैर प्लानिंग के करते हैं और वो इत्तेफाकन किए हुए बगैर प्लानिंग के बगैर मंसूबा बनाए हुए काम मशहूर व मारूफ हो जाते हैं और दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं।
2: क्या बात है, ये आपकी बात जो लास्ट वाली लाइन थी कि कभी कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कुछ आराम से ऐसी मूवी इन जनरल बना देते हैं वो चल जाती है। किशोर कुमार जितने अच्छे सिंगर थे उतने अच्छे कॉमेडियन भी थे, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे, मूवीज़ भी बनाते थे। उनकी पहली कुछ मूवीज़ उनकी बनी थी और वो बहुत चली, जिससे कि इनकम टैक्स उनको बहुत पे करना पड़ गया। तो उन्होंने एक मूवी बनाई चलती का नाम गाड़ी लेट 50s में। अच्छा। और उसमें अपने दोनों भाइयों को भी लिया, अशोक कुमार और अनूप कुमार, कोई तीनों भाई थे इसमें, हीरोइन मधुबाला थी। और उन्होंने इस एम के साथ बनाई फोकस होके स्ट्रिक्टली कि ये मूवी बिल्कुल फेल होनी चाहिए जिससे मैं लॉस दिखा सकूं और मेरा रिकवर हो जाए। और वो मूवी इतनी चली तो कभी कभी होता है कि फ्लॉप के लिए बनाई गई है और चल गई। कभी आपने जैसे बताया कि सब कुछ डाल दिया, लेकिन
0: आपने आगाज किया बहुत खूबसूरत से अशार से, तो इस छोटे से सेशन का इख्तिताम भी कुछ शेरों से करना चाहते हैं। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
2: क्या बात है,
0: तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
2: क्या बात,
0: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: सब आप थके मांदे थके हारे सारा दिन मेहनत करने के बाद जब घर जाते हैं तो आपको राहत अफजा कुछ घड़ियां चाहिए, सुकून चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए, आप रिलैक्स होने के मूड में होते हैं। घर पहुंचते हैं, पहुंचते ही आपका जी चाहता है कि पर्दा स्क्रीन काफ़ी बड़ा हो, उस पर एक शानदार से फिल्म चल रही हो, क्रिकेट का कोई मैच देखने का इत्तेफाक हो, फैक्चुअल कंटेंट है तो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हो, या फिर अगर मिजाज बड़ा शायराना सा बन गया है तो कोई अच्छा सा पुराना खूबसूरत सा मैडम नूर जहां का या मेहदी हसन खान का या फिर जगजीत चित्रा की गजल से दिल बहलाया जाए, शाम को और खूबसूरत बनाया जाए, ये आपका जी चाहता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो पर्दा स्क्रीन जिस पर ये दिल के फफोले सांझे करें आप, वो बड़ी जानदार हो, आप उसके साथ चिपक जाएं और फिर गाने पे गाना चले और गानों का ये दौर चले, या फिर फिल्म पे फिल्म चले, फिल्मों का एक दौर चले, ये चाहते हैं आप। इसके लिए ऐसी पर्दा स्क्रीन के लिए, ऐसी बड़ी स्क्रीन के लिए, आला स्क्रीन के लिए, खूबसूरत ऑडियो क्वालिटी के लिए, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए, रंगों के खूबसूरत इम्तिजाज के लिए आपको एक ही जगह जाना होगा, जहां हर शाम खूबसूरत शाम होगी, हर लम्हा खूबसूरत और रंगीन लम्हा बन जाएगा। घर आएंगे तो आपका वाकई जी करेगा घर में टिक के बैठ के कुछ देखने को। जगह एक ही है साहब अप्लायंसेस के लिए, मायारी आला और कमाल का पायदार नाम डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्वाइन किया है सलीम चौधरी ने, वेलकम करते हैं आपको।
1: हमें भाई थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और मैं एक और भी ऐड कर देता हूँ, आजकल के जितने मॉडर्न टीवीज हैं
0: जी,
1: इनमें एक और चीज बड़ी मजे की आ गई है कि आप जैसे अभी विंटर में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स के साथ
0: जी,
1: तो यू कैन मेक इट वर्किंग फायर प्लेस इलेक्ट्रिक। हाँ, वो पीछे एक ऐसा वो सीन चल रहा होता है और वहां पर ऐसी क्रैकलिंग साउंड आ रही होती है, वो जैसे वुड की फायर में बर्निंग की। दीज थिंग्स यू कैन ऐड, प्लस एक बड़ी अच्छी चीज व्हाट हैज एडेड अप टू दी दीज टीवीज दैट दे सैमसंग हैज कम अप अलोंग विद एलजी फ्रेम टीवीज।
0: अच्छा,
1: फ्रेम टीवीज आर सच अ नाइस थिंग दैट व्हेन यू पुट इट ऑन द वॉल व्हाट हैपन इज दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट एज ए टीवी इट बिकम्स a picture frame like Picasso ki painting jo bhi ho you can put it on it automatically wo uske upar play hoti rehti hai aur aapki family ki bhi pictures ho to you don't have to worry about ke koi banda paas se chalega usko lagega jaise aapne painting hai ki hai lekin evening time mein ya kabhi jaise aapne kaha tha Jagjit Singh aur Madam Noor Jahan ke agar kisi ne song sunne ho usko fireplace banana ho So having said that, तो मुझे लग रहा है कि we are going to be one of the best TV outlet for this year. You know, the amount of people who are interested in Sony, Samsung and LG TVs, they are huge. Especially अभी जो World Cup शुरू हो रहा है in about 14-15 days. उससे बहुत बड़ी हाइप है मार्केट में,
0: बिल्कुल,
1: एंड पीपल आर इनटू इट क्योंकि अभी तो प्ले ऑफ चल रहे हैं, बट द मोमेंट प्ले ऑफ विल फिनिश द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स और उसके बाद आपको बताया कि वर्ल्ड कप ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रेंजी इन द मार्केट।
0: यस,
1: सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोनी डीलर्स। हमारे पास सैमसंग का 98 इंच का टीवी जो है इट्स अवेलेबल एंड वी आर गोइंग टू क्लियर ऑन दिस वीकेंड only for 1950 almost 100 inch ka tv hai aur 1950 plus tax mein
0: bilkul theek
1: sony ke hamare paas bravia 5 bravia 7 bravia 9 jinki sound par they are on clearance iske alawa lg is famous for its oleds
0: right
1: if you're looking for any oled tv in lg dixie is the place to come
0: sahi
1: और फिर हमारा ये दिस इज द लास्ट वीकेंड ऑफ जैसे हम पिछले दो दिन से कह रहे थे कि डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज वन द डीलरशिप फॉर कैनमोर एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनमोर डीलर इन द होल ओंटारियो
0: राइट
1: कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हम उनसे नॉर्मली बाय कर रहे हैं वी हैव ऑर्डर अबाउट लाइक से 17 कंटेनर loads of the product and thirdly our prices jaise main aapko bataun ki in appliances ke upar aam taur pe jo hamare national store jo competitor hain ya hamare koi bhi jo local business medium size ke jo businesses hain our price I just give you idea ki jo stove hai jo national store 799 ka bech raha hai fridge 799 ka bech raha hai आप ये दोनों हमसे बाय करेंगे तो वी विल गिव $300 डिस्काउंट
0: वाह $300 डिस्काउंट है वाह
1: ये डिस्काउंट है यानी इफ यू बाय टू ऑफ देम यू गेट राइट वे $300 डिस्काउंट
0: वाह
1: इन द स्टोर सो आप ये समझे कि यू आर सेविंग अबाउट $150 ईच लाइक 650 का आपको स्टोर मिल जाएगा और 650 का ही फ्रिज मिल जाएगा और $399 का डिश वॉशर है और वॉशर डायर हमारे पास एक आए हैं विदाउट एजिटेटर
0: जी
1: 5.2 क्यूबिक फीट लेकिन जो भी मार्केट में 5.2 क्यूबिक फीट के हैं दे आर अबाउट 899 to 999
0: जी
1: दिस ओनली दिस वीकेंड
0: सही
1: लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टुमारो संडे एंड वी ऑलवेज इंक्लूड द मंडे इन आवर वीकेंड फॉर दीज फोर डेज सिर्फ आपको कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा आमिर भाई का लवी दवी शो का
0: लाइक
1: फ्रॉम दैट रेफरेंस इंस्टेड ऑफ 749 आई एम गोइंग टू टेल यू गुड प्राइस यू कैन गेट ओनली फॉर 495
0: दैट्स अ स्टैगरिंग डिफरेंस ये तो बहुत बड़ा फर्क है सलीम भाई वाह
1: बहुत बड़ा फर्क लिटरली यानी कि अब 749 से $495 ड्रायर इन सब के ऊपर दो साल की वारंटी है और इसके अलावा जो मेन चीज है कि वी इन द बिल्ट इन अप्लायंस है बिल्ट इन में क्या है कि वॉल ओवन है माइक्रोवेव है कुकटॉप आता है जो कि काउंटर के ऊपर लग जाता है एंड देन वी हैव यू नो बिल्ट इन डिश वॉशर जो कि पैनल रेडी डिश वॉशर आती है And the fourth one is in that one, जैसे panel ready fridges आ रही हैं. So those panel ready fridges, if you wanna see, you can come to the store, visit us. KitchenAid has given us a huge, you know, built-in kitchen. हमारे पास Bosch है, हमारे पास Samsung है, Electrolux है, and we are their authorized dealers. So if right. you are trying to upgrade your product and want to make sure that you want to get the best price. Before buying from anywhere else in the whole city,
0: wow.
1: please come to Dixie Electronics. मैं आपको बताऊं कि आपको less than $8,000 में फ्रिजिडेयर गैलरी का पूरा यू नो बिल्ट इन किचन मिल सकता है
0: बिल्कुल ठीक
1: $8,000 आमतौर पर लोग पीपल आर बाइंग दोज थिंग्स यू नो रफली अराउंड 12,000-13,000 बट यू विल बी गेटिंग the बेस्ट प्रोडक्ट In those kind of things.
0: बिल्कुल ठीक.
1: इसके अलावा हमारे पास आपको पता electric fireplaces हैं, washer dryer हमारे पास है all in one. Where you just what you do is technically is that Samsung वाले को है ये बड़ी एक यूनिक सी चीज है कि आप सिर्फ आपने अपनी लॉन्ड्री को वॉशर के अंदर जो है वो जितने भी कपड़े हैं उसको रखना है Remaining it will wash in 28 minutes.
0: Oh wow.
1: And 40 minutes में dry करेगा You don't have to take the clothes out. Automatically कर देता है और based on कि जितने ये आपके जो जितने भी कपड़े हैं जैसे उनका soil level है कितने वो उनको washing चाहिए होती है तो ये इतनी ज्यादा energy save कर रहा है कि literally आमतौर पर washer क्या होता है कि 55 minutes में हम wash करते हैं
0: and
1: 55 minutes में we dry.
0: वाह
1: दिस वन
0: ये तो क्या कमाल की प्रोडक्ट है चौधरी साहब आप जानते हैं कि जब भी आप इसका तज़करा करते हैं तो न जाने क्यों मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं किसी मासूम शोहर की तरह किसी बहुत नई नई हस्बैंड की तरह मुझे लगता है कि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और ये सूनर देन लेटर हम सबको खरीद ही लेना चाहिए। नंबर मैं आप शेयर कर देता हूं, इस प्रोडक्ट के बारे में और भी बात करेंगे हम, सब हो जाएगा, कपड़े धुल भी जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे, जो ही ये कपड़े धुल जाएं, ड्राई हो जाएं, आपको मैसेज भी आपकी घड़ी पर आ जाएगा कि काम हो गया है, कपड़े उठा लीजिए, कहानी ख़त्म। ये नंबर मिलाएंगे और आज सलीम भाई से बात कीजिए, चाय का कप पिएं, ये मशीन घर लाएं, ज़िंदगी आसान करें। 905-625-5900। बिजली बचेगी, टाइम बचेगा, सरदर्द बचेगी, आसानी पैदा हो जाएगी और आपके लिए बड़ी राहत हो जाएगी। अब सलीम भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसका ज्यादा फायदा बीवियों को मिला या शोहरों को मिला?
1: आई थिंक इसका एज ए फैमिली मेरा ख्याल होगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो आपको 40% इलेक्ट्रिसिटी की बचत है जो कि मियां की पॉकेट पे थोड़ा सा लाइट होगा। और बीवियों की बचत ये है कि देखें, उन्होंने सिर्फ ट्रेन करना है हस्बैंड्स को वन टाइम के फ्रिज इसको कपड़े कैसे डालने हैं, रेस्ट उनका, और देखें कितनी आसान सी ट्रेनिंग होगी, उनको कुछ यल नहीं करना पड़ेगा और आराम से सिखा सकती हैं सलीम को या आमिर भाई को कि जनाब अच्छे रखने हैं। और बाकी ये खुद ही आई साइकिल सेलेक्ट करती है, लिटरली आई टेल यू दिस इज ऑल AI बेस्ड।
0: Oh, wow.
1: Number two, it consumes, आपको सोप को भी हर टच करने की जरूरत नहीं।
0: wow.
1: आप वन टाइम इसको फिल कर दें एंड फॉर नेक्स्ट अप टू 47 लोड्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के इसके अंदर कितना सोप डालना।
0: 47 लोड्स,
1: अप टू 47 लोड्स लिटरली, यानी आप समझे कि फॉर नेक्स्ट मंथ एंड हाफ आपको सोप को भी टच करने की जरूरत नहीं है।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या
1: आपका
0: बात
1: काम
0: है।
1: सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने सिर्फ कपड़ों को मशीन के अंदर रखना है और ये खुद ही वॉश करेगा, ड्राई करेगा, आपको फोन पे बता देगा कि क्लोथ्स हैव बीन ड्राइड आउट एंड वॉश्ड, और डोर खुद खुद ओपन हो जाता है इसका, आपने कपड़े सिर्फ निकालने हैं। इसके अंदर ना कभी वो जो होता है ना आजकल एक मशीन के अंदर मोल्ड लग जाता है, कभी मोल्ड नहीं लगेगा इसके अंदर, और सोक को आपको टच नहीं करना 47 रोड तक।
0: अरे
1: लग्जरीज Which you know, any family who has future के अंदर मुझे लग रहा है ये सारा कुछ होगा ना, जैसे हमारे वॉशरूम्स हैं ये उन्हीं के अंदर चली जाएंगी ताकि वहीं पर लॉन्ड्री हो एंड व्हाटएवर टाइम यू नीड इट।
0: अच्छा, ये इनका साइज भी इतना छोटा है कि वहाँ वॉशरूम में ही लग जाएगा ये सारा सिस्टम।
1: 27 एक वॉशर के साइज के बराबर है ये।
0: ओ वाह वाह वाह, अमेजिंग, कमाल का प्रोडक्ट है ये, वाह।
1: यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग,
0: वेरी नाइस, ये तो कमाल का प्रोडक्ट है। अब जरा लवी डवी शो सुनने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा ये भी बता दीजिए।
1: देखिए ये मार्केट के अंदर आज की डेट में 2799 का है।
0: अच्छा,
1: आपके स्टोर के रेफरेंस से
0: जी,
1: आपके आवाज के रेफरेंस से और लवी डवी शो के रेफरेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन डू दिस वन फॉर 2395 फॉर दिस वीकेंड।
0: ओह वाओ, 2395 ओनली, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वाह।
1: यस, इसमें और आपको इस ये लास्ट वीकेंड है, यू कैन गेट 0% फाइनेंसिंग ऑन दिस वन ऑल्सो।
0: जबरदस्त, वाह वाह,
1: एक साथ में है, यू डोंट हैव टू पे फुल अमाउंट और 0% फाइनेंसिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर है, और डिलीवरी फ्री दिस वीकेंड।
0: जबरदस्त, कमाल है ये।
1: जो बात इसकी सबसे बड़ी खूबी आमिर भाई हुई है कि 6.1 क्यूबिक फीट इसका ड्रम साइज है, विच इज द लार्जेस्ट राइट नाउ इन द होल मार्केट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 लॉन्ड्रीज यू मे हैव टू डू ओनली लाइक 5 लॉन्ड्रीज। टाइम की बचत देखें जरा, तो लॉन्ड्रीज पांच करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ 10 पर मंथ, और दूसरा ये है कि हाफ ऑफ द टाइम जो है उसमें सेविंग हो रही है, एंड फोर्थ वन जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि कपड़ों की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
1: इसकी लाइफ है दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनर्जी एंड वॉशिंग एंड वॉशिंग एंड मेक द थ्रेड्स सो वीक ऑफ योर क्लोथ्स, इट विल सेव देम। सो आपकी एक शर्ट जो पहले 2 साल चलती थी या 3 साल, it can go on for next few years, like 5-6 years. कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
0: बिल्कुल सही. यहाँ है नंबर, ये नंबर मिलाइए और मशीन घर ले आइए. सिंपल एज दैट. $500 का ये आपके लिए डिस्काउंट भी है, सहूलत भी है, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, काम भी हो जाएगा. 905-625-5900 905-625-5900. चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू. थैंक यू.
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
4: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: मम्मा, why don't you go to work now?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है. एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है.
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है. कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर.
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे. उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई. तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे. इनके पास 12 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री.
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट. डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ. सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले.
10: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046. दैट इज 416-937-5046.
11: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
12: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
13: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
12: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
14: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ. और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अभी जो हमने खबर शेयर की, मंडे से आप हमें 2 से 3 तक आफ्टरनून ड्राइव में सुनेंगे. आपकी फरमाइश पर हम ये दोपहर में आपके लिए ये शो लेकर आएंगे. बहुत सारा म्यूजिक होगा, बहुत सारी बातचीत होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी और ये लवी डवी तरीके से आपके लिए अपने चिर परिचित अंदाज में, यानी कि फेमिलियर अंदाज में जो आप पसंद करते हैं, पेश किया जाएगा. एक बड़ी अच्छी एक थॉट है आमिर, आप बिकॉज आप एक्सटेम्पो बड़ा अच्छा बोलते हैं और मेरी तरह आप प्रिपेयर हो के नहीं बोलते, फिर भी उससे भी अच्छा बोलते हैं. तो एक चीज़ में ज़रूर आपकी इनपुट, मैं आपकी राय, आपकी इनपुट जानना चाहूँगी. एक थॉट है, हिंदी का है, मैं उसको ट्रांसलेट थोड़ा उर्दू में कर दूँगी. रिश्तों की, संबंधों की पाठशाला अगर बनाए रखनी है तो गणित विषय में कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब यह है कि हम जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, उसमें जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए और वो उस चीज़ को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें वो माहिर होते हैं। और यानी कि उनके लिए क्वालिफिकेशन एक ही होती है कि वो पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, मेरिट में आने चाहिए, तभी उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन रिश्तों की पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, तो अगर रिश्तों का स्कूल अगर बनाया जाए तो उसमें कम अच्छा नहीं कमज़ोर होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के, और वो है मैथ में। अगर आप रिश्तों की स्कूल बनाना चाहते हैं तो मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। यानी रिश्तों में अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे कि उसने दो किया तो मैंने तीन कर दिए, उसने तीन किए तो मैं तीन ही करूँ, चार कैसे कर दूँ, तो इसलिए जितना कमज़ोर आप मैथ में होंगे ना अपनों के साथ, उतना ही रिश्ते मज़बूत बनेंगे।
0: मैं ज़रा सा डिसएग्री करूंगा आपके अच्छा, थॉट के साथ, पूरे अदब से, पूरे एहतराम से, घुटनों को झुका के, लरजते हुए हाथों के साथ और कांपते हुए होंठों के साथ।
14: मतलब फ्राइडे को आप ऐसे ही लोगों से डिसएग्री करते हैं?
0: मतलब ये बड़ा आजजाना सा एक तरीका
14: है। फ्राइडे को ही कहा करूं?
0: अच्छा। नहीं, खवातीन के साथ डिसएग्री करने से पहले ये सारी चीजें कह देनी चाहिए।
14: जैसे भी चौधरी साहब कह रहे थे आसान तरीके से ट्रेन कर दीजिए।
0: तो खवातीन के साथ जब भी आप डिसएग्री करें तो उससे पहले एक तमहीद जरूरी है,
14: डिस्क्लेमर,
0: कम अज कम एक सफे की तमहीद कि मैं तमाम दुनिया की माफिया मांगने के बाद ये डिसएग्री करना चाहता हूं। तो ये मेरी तरफ से
14: जी।
0: अगर आप किसी रिश्ते को पक्का, सच्चा, मजबूत, पायदार, देर पा रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हिसाब का बहुत पक्का होना चाहिए आप।
14: अच्छा,
0: 100%। मेरे नजदीक रिश्तों को मजबूत बनाने का एक ही फॉर्मूला है।
14: अच्छा।
0: और वो है डू मोर फॉर्मूला।
14: अच्छा।
0: आप हिसाब रखें किसी ने कितना किया, आप उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। दो दोस्ती, जैसे हम कहते हैं दोस्ती, दो से शुरू होती है, एक तो दो के दरमियान होती है, टू इंग्लिश में कहते हैं, एक है देना, टू गिव। तो अगर आप हिसाब रखें कि शिवानी ने आज मेरी दो जुमलों में तारीफ की है, मेरे साथ की, मेरी रफाकत की, मेरी जो वर्किंग एथिक्स हैं उसकी, तो कल मुझे शिवानी के किसी एक पहलू की कम से कम तीन से चार जुमलों में तारीफ करनी होगी।
14: एक इस पे बात आती है,
0: मुझे लगता है सर
14: कि तारीफ करते टाइम इसका मतलब जहन में ये चीज थी, कुछ मैथ था कि दो बार की तारीफ, इसका मतलब होता है कि मेरा मानना है, अगेन मेरा मतलब, मैं मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ये आजकल बिल्कुल समानता का, इक्वलिटी का जमाना है,
0: जी बिल्कुल।
14: तो मैं भी आपको पूरे सॉरी के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कि जब इंसान, जब आप मेरी तारीफ करें
0: जी,
14: हम और आप मान लीजिए दोस्त हैं
0: जी,
14: या आपके दोस्त की आप तारीफ करें तो आपको याद ही नहीं रहे कि उसने एक किया था कि दो तारीफ की थी। हाँ। जब आप उनकी तारीफ करें तो उस लम्हा मौजूद जो आप कहते हैं मोमेंट में रह के आपका दिल चाहे आप बोलते चले जाएं, नहीं दिल चाहे तो आप एक ही लाइन बोलें,
0: हिसाब ही ना रखें,
14: ये पैरामीटर्स की तारीफ नहीं हो कि क्योंकि मुझे दो बोलना ही बोलना है, चाहे मुझे, मैं बिल्कुल ना मुझे समझ में नहीं आए क्या बोलना है, फिर भी आज मैं दो बोलूंगा क्योंकि कल इसने दो बोला।
0: देखिए, दो का हिसाब रखने के लिए, या चलिए आपकी बात मान लेते हैं, दो का हिसाब ना रखने के लिए भी तो हिसाब का अच्छा होना जरूरी है कि ये दो था, मुझे अनगिनत करना है, तो अनगिनत भी तो किसी गिनती में ही आता होगा।
14: जी, अनगिनत गिनती में आता है, लेकिन उसके लिए दो को याद रखना जरूरी नहीं है। मतलब अनगिनत के लिए आपको वो गिनती को याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको ये याद ही नहीं होना चाहिए कि उसने दो तारीफ की कि नहीं की, बस आप उसमें खो जाइए कि इंसान आपकी तारीफ कर रहा है।
0: यानी आप उस लाइन से एग्री नहीं करती कि हिसाब की तो बहुत पक्के हो तुम देव
14: जी? वैसे हाँ जी वैसे मैं मैथ में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे।
0: अच्छा?
14: मेरी जो पोजीशन क्लास में बनती थी वो एक मैथ से और एक हिंदी से बनती।
0: तो आजकल क्या हुआ फिर आपके मैथ्स को?
14: इसलिए अब एक एक उम्र के बाद छोड़ दिया
0: हिसाब किताब ही छोड़ दिया।
14: बहुत अच्छे बन गए मैथ में तो अब सोचा कि गणित को छोड़ ही दिया।
0: यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम के जब उरूज पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो बेमानी हो जाते
14: जी?
0: यानी आप मैथ के इतने उरूज पे पहुंच गए कि मैथ अपनी अहमियत ही खो गया?
14: नहीं, मैथ मेरे लिए पूरी है, लेकिन जब इट कम्स टू रिलेशनशिप।
0: अच्छा अच्छा।
14: पहले बचपन में रिश्तों में भी मैथ मेरा बड़ा मजबूत था।
0: अच्छा अच्छा।
14: तुम्हारे साथ रिश्ता तभी है जब तुम बना के रखोगे अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है।
0: थोड़ी नहीं, आप में इतनी मैच्योरिटी है कि कभी कभी मुझे यूं लगता है कि आप के अंदर एक छोटा सा हकीम भी छुपा हुआ है, एक छोटा सा आयुर्वेदा भी छुपा हुआ है, एक छोटी सी ब्यूटिशियन भी आपके अंदर रहती है, एक होम मेकर भी आपके अंदर छुपी हुई है, एक छोटी सी कुक भी रहती है आपके अंदर। सो आप एक पूरा पटारा है। वाह,
14: 1935 की पैदाइश आपने कही है तो कुछ तो सीखा ही है ना।
0: 37 की कही थी, दो अपने पास से लगाए आ जा
14: फिर आप मैथ पे आ गए।
0: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
9: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
10: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
11: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
12: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
11: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
13: लवी डवी शो, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। कहते हैं कुछ वक्त शरारतों को भी दिया कीजिए, वरना ये हसीन पल चले जाएंगे और फिर से लौट के नहीं आएंगे। तो हमारे अंदर एक ज़रूर एक बच्चा जिंदा होना चाहिए, एक चाइल्ड रहना चाहिए। जो एक बच्चा होता है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, हर चीज़ बता देता है। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर भी बन जाएं, हमारी अगर तबीयत ख़राब है तो हम अपने आप ही उसका ट्रीटमेंट कर लें। और इसके लिए हम जाते हैं, बस 2-3 दवाइयाँ खा लेते हैं और हम अचानक से ठीक फील करने लगते हैं। और हमें लगता है कि हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो यूँ ख़त्म हो गई कि बस फिर से लौट के नहीं आएगी। लेकिन चंद घंटों के बाद फिर से हमें सिम्टम्स पता चलने लगते हैं और हम फिर परेशान होते हैं। और कभी कभी तो जब बहुत देर हो जाती है तब हमें लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आराम से आप अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। और वो सिर्फ 10 नंबर के फासले पर ये ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। पहले नंबर नोट कीजिए, क्योंकि जिन मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनसे बातचीत के बाद इस नंबर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। 4374383399। और बिल्कुल परेशान नहीं हुई, इंटरव्यू के बाद आमिर जी ये नंबर फिर से अनाउंस करेंगे अपने अंदाज में। तो आयुर्वेद और हर्ब्स गुरु जी हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि अचानक से हम अच्छे होने लगे। क्योंकि गुरु जी एक और बड़ी खासियत है गुरु जी की, आमिर जी, जो हम लोग एक बार मिलने गए थे तो वो कह रहे थे कि जब गुरु जी के पास जाते हैं लोग तो 80% ठीक हो जाते हैं।
14: बिल्कुल, उनको देख के, उनसे बात करके, उनसे मिल के। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, ये ऊपर वाले की देन है बहुत बड़ी, कि उनको देखते ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाती है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी कुव्वत मुदाफ़त की वजह से, यानी जो कुव्वत मुदाफ़त का मतलब है कि वो कुव्वत, वो ताकत, वो शक्ति जिसे हम कहते हैं जो बीमारियों को मात देती है, कुव्वत मुदाफियत।
13: गुरु जी के सामने हम बैठते हैं जाके तो ऐसा लगता है कि हम बीमारी हमारे शरीर से बॉडी से निकल रही है।
14: जी बिल्कुल।
13: और गुरु जी 4 दिन ब्रैम्पटन में होते हैं, पहले से मैं आपको बता दूं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और आमिर 3 दिन गुरु जी स्कारब्रो में होते हैं,
14: और ये सारा वक्त लोगों के दिलों में होते हैं।
13: हाँ, और दिलों में ऑल 7 डेज। गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: नमस्कार नमस्कार बहन जी, मैं भगवान आशीर्वाद से अच्छा है। भाई साहब नमस्ते, भाई साहब
14: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग।
0: सही कहता है, हम लोगों को दिल में रहे तो उसके बिना क्या चाहिए भाई।
14: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रहते हैं गुरु जी, आप लोगों के दिलों में रहते हैं।
0: लोगों को दिल में रहे तो भी देखो, कोई भी बीमार हुए तो अभी बहुत लोग बता रहे, कोई भी बीमार आए तो मेरे को क्या है, कुछ नहीं, मेरे पास गुरु जी है, गुरु जी के पास जाए तो ठीक हो जाएगा, वैसा हिम्मत से रह रहा है बहुत लोग। ये सारा मेरा को पूर्व जन्म का भगवान का खुदा का आशीर्वाद है, नहीं तो वैसा नहीं होता है। अभी भी मेरे पास एक लोग आ गया था, वो बताया था गुरु जी मेरे को कल चोट मारते या मेरे हिम्मत में रहा, कुछ नहीं, गुरु जी है, गुरु जी के पास जाए तो 5 मिनट में, एक दिन में ठीक हो जाता है, वैसा हिम्मत से आया था, वैसा बोल रहा है। वो सुन के मेरे को खुश होता है। देखो भाई एक मास्टर को, उसको स्टूडेंट अच्छा होने को मास्टर को हैप्पी है,
14: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: एक माता पिता को, उसको बेटा अच्छा होने को माता पिता को हैप्पी है, वैसा एक डॉक्टर को, एक पेशेंट अच्छा होने से डॉक्टर के हैप्पी है, वैसा मेरा पेशेंट 99% नहीं बोलते, 100% लोग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेरे को भी हैप्पी होता है। हमारा सोच सुन के कितना लोग, बहुत लोग आगे आ रहा है, सारा लोग ठीक हो गया था, जॉइंट पेन लोग एंड कमर के दर्द में लोग एंड आर्थराइटिस पर्सन, स्किन प्रॉब्लम के लिए, स्नीजिंग के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, एंड वो होता है, वो चर्बी होता है, फैट को अंदर बॉडी का फैट होता है, फैट बहुत लोगों को लूज हो गया, बच्चा कम से कम अभी मैं एक साल में 26 लोगों को बच्चा हो गया भैया, ये भगवान आशीर्वाद से।
13: अमेजिंग।
0: फर्टिलिटी के प्रॉब्लम के लिए आता है, पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए आता है, लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज हो, ओवर ब्लीडिंग हो, वैसा भी लोग भी आके ठीक होता है, और मेन इधर ये कंट्री में एलर्जी एंड ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है। हमारा भाई लोगों को बहुत दूर लॉन्ग टर्म वो ड्राइविंग करता है, इसलिए लोअर बैक पेन होता है, L3, L4, L5 में बल्जिंग होता है, डिस्क प्रॉब्लम होता है, वैसा लोगों को, बहुत लोगों को ठीक हो गया, यूरिक एसिड से भी दूर कर दिया था लोगों को।
14: बिल्कुल सही। यहाँ गुरु जी एक दो सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आजकल लोगों में मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, सांस फूल जाता है, 2 कदम चलते हैं बैठने को दिल करता है, सुस्ती पड़ जाती है, बिस्तर में से निकलने को दिल नहीं करता, और जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, वो भी डैमेज हो जाती है एकदम से। तो ये मोटापे का इलाज क्या है आपकी नजर में?
0: ये मोटा का कैसा होता है भैया, हमारा बॉडी को अंदर फैट लेवल्स ज्यादा होता है
14: जी,
0: एंड हमारा मसल्स को अंदर पानी लेवल ज्यादा आता है, इसलिए ओबेसिटी हो जाता है, ताकत कम होता है, ताकत तब कम होते, देखो हमारा बोतल में, ओपन बोतल में क्या होता है, पानी नहीं तो उसके अंदर हवा होता है, अच्छा। हम पानी भरे तो हवा बाहर जाता है, वैसा बॉडी को अंदर ताकत नहीं होता है, उधर पानी बैठता है, चर्बी बैठता है, हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, फैट ज्यादा बन जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बॉडी बैठने के टाइम में भी, बैठ के उठने के टाइम में नहीं उठ सकता है, वॉक कर नहीं सकता है, श्वास बढ़ जाता है, बॉडी वीकनेस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, इस कारण से क्या होता है बॉडी में आर्थराइटिस, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वैसा होने को प्रॉब्लम होता है, लेडीज को पीसीओडी होने का प्रॉब्लम हो जाता है, इरेगुलर पीरियड आने का प्रॉब्लम होता है, और हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। उसको लिए हमारा पास हिमालयन हर्बल से, हम सच्ची हर्बल से बहुत अच्छा में बन गया था, उससे बहुत लोग फर्क हो गया।
14: बिल्कुल ठीक। यहाँ आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी का नंबर दे रहे हैं, मोटापा हद से बढ़ रहा है, सांस फूल जाता है, सीढ़ियां 2 भी नहीं चढ़ पाते, 3री चढ़ते हैं सांस फूलने की वजह से मजीद आगे जा ही नहीं सकते हैं आप, वॉक नहीं कर पाते हैं, जिंदगी यूं लगता है जैसे डिसेबल या मफलूज होके रह गई है। तो आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी से बात कीजिए। 7वीं पीढ़ी है आयुर्वेदा में, मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों का इलाज करते थे इनके बड़े, इनके बुजुर्ग। आज हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी हमें यहां मुयस्सर हैं। ये नंबर मिलाइए, गुरुजी से बात कीजिए।

0: 9999 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू गुरु जी.
0: थैंक यू.
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज. आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना. बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर. रूहानी कॉलेज, रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं. 905-731-2555 905-731-2555 55 रूहानी कॉलेज.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust।
7: एक नाम जिस पे आपको भरोसा है, एक नाम जो आप बहुत ट्रस्ट के साथ लेते हैं, एक नाम जिसमें बहुत सारा प्यार समाया हुआ है। जब पूरी की पूरी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ जहाँ पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और वो शॉपिंग पे लिए हुए जब ग्लासेस आप लगाते हैं और सब एक तरीके से बिल्कुल नो सेम टू सेम बन के हम हॉलीडेज़ पर जाते हैं, स्टाइल में रहते हैं, एक पूरी अपीयरेंस पर ही फ़र्क पड़ जाता है अगर अच्छे से आपने लगाए हो। आमिर, एक लुक ही चेंज हो जाता है, और नहीं तो आपको बहुत कुछ काम करना पड़ता है अपने

0: ऊपर अगर ग्लासेस अच्छे नहीं लगाए हैं, और कांडा ऑप्टिकल एक ऐसा नाम है जिसकी किसी भी लोकेशन पे चले जाए, काफ़ी चीज़ों को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किया है इस हर एक लोकेशन ने। एक तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, जो स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट है, इतना स्माइलिंग है, और इसीलिए खूबसूरत भी नज़र आता है, और हर तरफ एक स्टाइल नज़र आता है, ज़िंदगी को खुश नुमा तरीके से जीने का जज्बा हर एक लोकेशन में नज़र आता है। और जो ब्रेन है के पीछे वो है अश्विनी कांडा जी, राइट?
1: जी बिल्कुल, इस वक्त हमारा साथ निभा रहे हैं। जीटीए में कामयाब बिजनेस पर्संस की अगर बात की जाए, उनका जिक्र किया जाए, तो एक बड़ा और पायदार, अच्छा और मोतबर नाम अश्विनी जी का भी है। बात करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
2: थैंक यू वेरी मच अनिल जी, शिवानी जी, आप बड़े ही प्यारे ढंग से मुझे इंट्रोडक्शन दी, मेरी जानकारी सभी तक शेयर की, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बहुत देर से इस बिजनेस में हूँ, 1980 में जब मैं इस कंट्री में आया तो उसी टाइम से एक ही काम मुझे आता है कि ग्लासेस कैसे बनाने हैं, जैसे कि उनको रंग कैसे करना है, उनको हार्डन कैसे करना है, यू नो ऑल दिस। इफ यू गो, ये लंबा सफर है, तो इसमें बहुत कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस काफी आया है, उसके बाद देखो सीख भी रहे हैं रोज की रोज, देयर इज नेवर एंडिंग, एंड लकीली वी हैव ए वेरी वेरी गुड टीम टू वर्क विद मी, एंड आवर कम्युनिटी ने बहुत हमें साथ दिया है। सिंस देन वी हैव मल्टीपल लोकेशंस अराउंड जीटीए, एंड अभी तो हमने किचनर में भी खोला है, बर्लिंगटन में, मिल्टन में, सो ऑल दीज एरियाज वी हैव लोकेशंस। A few more are coming, which we will share with our audience, obviously. जल्दी ही सुनने वालों तक पहुंचाएंगे. But again, इसका सारा जो credit है हमारी community के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्हीं के reason we have all this, and also a media who played a big role in our business, because जितना मर्जी हम अच्छा हो, पर एक बार पहली बार तो कस्टमर को लाने के लिए मीडिया जरूरी होता है, बिकॉज दे टेक अवर इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट विद एवरीबॉडी, इसी रीजन लोग आते हैं, एक बार हम प्रूव कर देते हैं, देन दे कंटिन्यू टू कम।
0: अश्विनी जी कितने ऑनेस्ट हैं, कह रहे हैं कि एक बार तो जरूरत पड़ती है, फिर कोई आ गया ना, फिर तो अश्विनी जी जिंदगी भर के लिए अपना बना ही लेंगे।
2: ऑनेस्टली देखिए, अगर पहली बार में हम फेल हो जाएंगे तो जितना मर्जी आप शोर मचाएंगे तो वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे ये दिस इज नॉट गुड। तो हमने ये पकड़ा होता है कि एक बार जब आ गया ना, एंड देन वी विल मेक श्योर वी प्रूव इट, एंड अगेन रोज की रोज मीडिया हमें हमेशा जरूरत, हमारे पास हमारी, हमें उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी हमेशा ही बिजनेस को जरूरत होती है, बिकॉज नए नए लोग एंटर करते हैं, नए नए लोग आते हैं, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू अपडेट। मैकडोनल्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज, होटल, ये देखिए इतनी बड़ी कंपनी, डू यू थिंक एनीबॉडी नीड देयर इंट्रोडक्शन? नो, एवरीबॉडी नोज दोस नेम्स, बट दे स्टिल एडवर्टाइज।
1: यस,
2: रीजन दे डू इट, दे कीप यू अप टू डेट विद इंफॉर्मेशन, कीप यू इन लूप, एंड दिस इज व्हाई मीडिया के लिए तो ताली बजती ही है।
1: बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अश्विनी जी के, हम तो आपकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ग्लासेस की बात करते हैं, स्पेक्स की बात करते हैं, लेकिन लोग आपकी मोहब्बत में ज्यादा आते हैं, इसकी क्या वजह है?
0: ये मतलब ना, ये इससे अश्विनी जी को 15-16 साल जानना पड़ेगा तो
2: पता। देखिए, बहुत ही आप अच्छे हो अमीर जी, आप बड़े बड़े अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, बड़े खुश मिजाज हो, दिल लगा के रखते हो जब आते हो तो। आपको तो मुझे लगता है एक यक यक क्लब में एंट्री भी करनी चाहिए, बिकॉज यू नो यू आर सो गुड एट इट, एटलीस्ट गिव देम 1 hour अ डे, मेक अ वीकेंड, यू नो 1 hour स्टेज शो, वी गो देयर एंड वॉच यू। एंड एंजॉय लाइफ, यू नो, अब 10 साल तो वैसे ही बढ़ जाएंगे।
1: चलो ये है कि कम से कम एक शख्स तो जरूर टिकट खरीदेगा, अश्विनी जी तो जरूर खरीदेंगे उस टिकट उस शो की।
2: नहीं नहीं, हम शिवानी जी हम सब इकट्ठे आएंगे वहां पे।
0: हां
2: जी, तो बड़ा मजा आएगा।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
2: इट्स इंपॉर्टेंट। शिवानी जी, वी हैव ए ग्रेट पर्सन, यू नो, जो हमें सभी का बहुत साथ देता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एज वेल। शिवानी जी तो मुझे बहुत बहुत बहुत पुराने, इनको तो तब से जानता जब जी छोटे से।
0: देखिए एक बार हमारे जिस स्टेशन में मैं पहले थी, वहाँ के ओनर ने किसी से मिलवाया कि हमारे पास ये देववंश से हैं, तो मुझे अचानक से लगा कि ये कुछ, मतलब मुझे 1930 के बॉन तो नहीं समझ रहे। तो मैंने उनके सामने कहा, जी हम, मैं ना बचपन में भर्ती हो गई थी, यहाँ पे खेलने आती थी, तो मैं पत्थर मार मार के ग्लास तोड़ती थी। तो इन्होंने कहा कि बहुत तुम उधम मचाती हो, यहाँ काम करो थोड़ा सा। तब से हम
2: बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने का। एंड अगेन सभी सुनने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड इसी एक ही उम्मीद है, एक ही विनती है कि एनी टाइम यू आर इन ए मार्केट टू बाई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, आई एग्जाम, हमें जरूर याद रखिए कांडा ऑप्टिकल को। वी विल मेक श्योर कि आपको हम बढ़ चढ़ कर आपको बढ़िया प्रोडक्ट देंगे, बेटर सर्विस देंगे। एंड उसके साथ साथ ईद मुबारक भी मैं सभी सुनने वालों को करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा और त्योहार है, तो उसके लिए भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो उसके लिए ईद की भी मुबारक सभी को। एंड कीप अप योर ग्रेट वर्क।
0: थैंक यू।
2: 416-922-5263 कांडा ऑप्टिकल का नंबर है
0: जी।
2: इसमें जब कोई भी डायल करते हैं तो दे कैन रीच Kanda Optical any store and book their appointment. And also we have a website kandaoptical.com, वहाँ जाके भी हम update करते रहते हैं, हम products के बारे में जानकारी डालते रहते हैं। Card ये है, Chrome Heart, Trim, ये जो Tom Ford है, Prada, Dita, Valentino, all these brands are available at Kanda Optical. आइए, ढेर सारी saving कीजिए, मौका दीजिए। We will make sure you are super happy with everything. Thank you.
0: Thank you, Ashwini ji. Pleasure having you with us always.
2: Thank you.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584। लवी डवी शो पर आखिरी बार 9 से 11 के शो में आपसे इजाज़त, और मंडे से हम 2 से 3 आपके साथ होंगे उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में आप सभी के साथ रूबरू होंगे, आप सभी से फ़ोन कॉल पर बातचीत होगी, और ज़रूर हमें सुनिएगा इसी चैनल पर 2 से 3 मंडे से हम एक नए टाइम पर आ रहे हैं। बहुत खुशी के साथ ये अनाउंसमेंट आपसे कर रहे हैं, होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्द, और 416-303-3639 हैव अ नाइस वीकेंड, नमस्कार।
1: जिंदगी यह तब्दीली का नाम है, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत से वाकयात जो आपके साथ रूनुमा होते हैं उनके बारे में आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता। ज़िंदगी प्लानिंग नहीं है, ज़िंदगी बेसाख्ता होने वाले कुछ वाकयात, हादसात, सानहात का मजमूआ है, ये बात ध्यान में रखिए। और अकड़ जाना एक मुर्दे की पहचान है, जब इंसान मर जाता है तो वो अकड़ जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें लचक नहीं होती, उसमें गुंजाइश नहीं होती। जो जिंदा आदमी है, जिसमें एहसासात हैं, महसूसात हैं, जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें इंसानियत का जज्बा है, वो हमेशा लचकदार रहता है। ये लचक ही इंसान की पहचान है, चाहे वो रिश्ता हो, नाता हो, ताल्लुक हो, साथ हो, बंधन हो, प्यार हो, चाहत हो, इकरार हो, इजहार हो, सब लचक मांगते हैं। लचकदार बन जाइए, अपने आप में, अपने रवैयों में, अपने मिजाज में गुंजाइश पैदा कीजिए। वो दरख्त जो झुकना नहीं जानता, जरा सा तेज हवा का झोंका उसको जमीन बोस कर देता है, वो गिर जाता है और दोबारा खड़ा होने की हैसियत नहीं रहती उस दरख्त में। जो दरख्त झुके हुए होते हैं और लचकदार होते हैं, उन पे फल भी लगता है, उनमें छांव भी आती है, और तेज हवा के झोंके का शिकार नहीं होते, बड़े से बड़ा तूफान भी झेल लेते हैं। इसलिए गुंजाइश पैदा कीजिए, लचक पैदा कीजिए, रवैयों में आसानी पैदा कीजिए, अपना ख्याल रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए, जो कि मंडे को 2 से 3 नशर होगा, अपना ध्यान रखिए। शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, एंड हे यू, आई लव यू।

0: ஆசை மீறி.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
3: Toronto ready!
4: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स. It deserves.

Tie your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
4: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारबरो 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना साथ देने आएंगे स्नैक्स चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर
0: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी
4: You're tuned into CMR FM.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
2: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
1: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
3: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
1: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
4: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
1: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान 23 degrees Celsius एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर विल हिट 25 to 26 degrees today and a little higher than yesterday, of course, temperatures and sunset hoga 8:50 per 8:50 p.m. hoga sunset and minimum temperatures at night time today 8 degrees, single digits, tomorrow 21 and 10, Sunday ko 24 aur 11. But we are looking at next 7 days of a lot of sun and a bit of clouds and beautiful weather. Hai, nothing to complain. It's Brampton TV and Appliance ki taraf se ye segment jo hai hum aap tak pahunchate hain the weather report. Aap pahunchiye Brampton TV and Appliance par 801 Bovade Drive west of the corner of Bovade and Chakusi in Brampton to get the amazing deals jo Eid ki extended deals hai for this weekend. And TV Appliance Laundry ke Sultan aapko amazing deals offer kar rahe hain. Aaj hai South Asian Unlimited Radio ka Bollywood Friday jahan par geek संगीत का कारवां चलेगा पहला गीत आपने स्लम डॉग मिलियनेयर से सुना सुखविंदर सिंह की आवाज में जय हो जिससे हमने जय हो करके दिन की शुरुआत कर ली है 12:15 हमारी हेडलाइंस है स्पॉन्सर्स के मैसेजेस हैं एंड द गुड थिंग दैट हैपेंड यस्टरडे वाज कि 14 साल की एस्थर जो गायब थी पिछले दो हफ्ते से हैज बिन फाउंड सेफ एंड ऑब्वियसली जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें उस इंसान को शख्स को जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है फॉर 72 आवर्स मॉनिटर किया जाता है बट शी इज़ बैक विद हर फैमिली दैट्स अ ग्रेट थिंग लॉट ऑफ पीपल वर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप यू नो बट चमत्कार हुआ है एंड ग्रेट वर्क दैट द पुलिस फोर्स हैज़ डन उसके लिए भी उनको बिल्कुल जो है क्रेडिट जाता है फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क एंड 12:08 है May 29th है टुमारो इज़ द वीकेंड एंड देन मंडे को जब मुलाकात होगी तो फिर होगा नया हफ्ता नया महीना एंड जून के महीने में हम कर लेंगे अपनी पूरी एंट्री एंड इसके अलावा जो है 416-593-0055 और फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं पार्क टू सर्व एज फीफा ट्रेनिंग साइट ये भी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब फीफा को लेकर जून और जुलाई में पूरी धूमधाम से फीफा फीफा फीफा ही हर तरफ सुनाई देगा एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर कैनेडा बिकॉज जितना भी फीफा यहाँ आने से जितनी गेम बड़ी होगी उतना ही हम सबके लिए अच्छा है डिक्लाइनिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट की वजह से यॉर्क रीजनल डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने भी कट्स का ऐलान किया है प्रोविंस पैसेस बिल अलाउंग इट टू टेक ओवर टोरंटो'स स्टेक इन द डील दैट गवर्न्स एयरपोर्ट बिली बिशप एयरपोर्ट प्रोविंस प्लान्स टू डेजिग्नेट एयरपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन to fast track its expansion and closure hoga on Lakeshore West and Berry Go lines this weekend obviously for a lot of work that is being done and छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जतिंदर गंदम भी हमारे साथ होंगे आगे चलकर रियल्टर जतिंदर गंदम उनसे क्विकली बातचीत करेंगे देयर इज अ प्रॉपर्टी मस्कोका में कॉटेज प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बायर जो भी इंटरेस्टेड हो याद रखें द सेलर्स रियली मोटिवेटेड टू यू नो सेल देयर प्रॉपर्टी सो यू नो अच्छी कीमत मिल रही है मस्कोका में अगर आप कॉटेज में इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान से सुनिएगा जो मैसेज आगे चलकर हम आपके लिए प्ले करेंगे एंड रियल्टर जितेंद्र गंदम का नंबर है 416-265-2222 आई विल बी राइट बैक
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.
2: Hiya, अंजू कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट।
2: हाय अंजू कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, Clear Optical by Varun Kanda.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Brampton TV and Appliances, Asian's popular South Asian clothing and textile store, and Real Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Russian drone attack ne Romania mein do logo ko ghayal kiya, sparks NATO and European Union outrage. Report ke anusar, mini pigs to organ printing. Vladimir Putin ka $26 billion anti-aging plan aya samne. Hormuz tolls ko lekar US ne Oman ko threaten kiya with sanctions. And US ne kaha, we won't tolerate this. 2 days after perfect health report ke, Donald Trump ne Iran aur Venezuela ko mix up kiya. Trump ne kaha, Venezuela ke saath hamara conflict hai and they no longer have a navy, air force and leadership. Actually, Trump was talking about Iran, not Venezuela. Trump ko sexual assault par accuse karne wali mahila par US ne interrogation shuru ki and Swiss train station par ek shakhs ne stab karke 3 logo ko zakmi kiya. Man reportedly shouted Allahu Akbar and attacked 3 people. Officials ne ise terrorist act bataya hai. रिपोर्ट के अनुसार यूएस ईरान ने सीजफायर डील पर सहमति बना ली है. ट्रंप येट टू अप्रूव इट. प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल आर्मी को ऑर्डर दिया टू टेक कंट्रोल ऑफ 70% ऑफ द गाजा स्ट्रिप. एंड कैनेडियन शख्स ने 47,000 से ज्यादा मैनग्रोव ट्री 24 आवर्स में प्लांट किए, सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. लोकल समाचारों में केनेथ लॉ आज प्लीड गिल्टी करेगा टू 14 काउंट्स ऑफ एडिंग सुसाइड एंड दूसरी और मिलिट्री. टोरंटो टीन एस्टर फाउंड सेफ, जांच जारी है. एंड विटवी क्रैश के बाद टीनेज गर्ल थ्रोन 100 फीट फ्रॉम व्हीकल. एंड जज ने टोरंटो के प्लास्टिक सर्जन को ऑर्डर दिया टू पे $21 million टू फॉर्मर पेशेंट्स आफ्टर इंस्टॉलिंग 24 कैमराज अराउंड क्लिनिक. Widespread TTC and GO train service suspensions के चलते गार्डनर एक्सप्रेसवे टू क्लोज दिस संडे. भारतीय समाचारों में अडानी स्किल्स ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया टू ट्रांसफॉर्म 11 ITIs इन कच्छ. और गुजरात ने इमरजेंसी टीम को डिप्लॉय किया एज लायन कप डेथ्स राइज टू 8 इन गिर. राजस्थान के मिनिस्टर गौतम डाक के खिलाफ केस दर्ज किया गया फॉर अब्यूजिंग कॉप्स. बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग इन पंजाब. जट सिख फेस, हिंदू कनेक्ट एंड दलित आउटरीच. ये बीजेपी की लार्ज पॉलिटिकल गैम्बल दिखती है, ब्रेकिंग द परसेप्शन ऑफ बीजेपी एज प्राइमरीली अ हिंदू पार्टी इन पंजाब. असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों को प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब बीजेपी घोषित किया है. ढिल्लो अ फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड अ क्लोज एसोसिएटर ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं. बीजेपी का फोकस मालवा, द्वाबा और माजा बेल्ट पर रहेगा. हीटवेव के चलते टूरिस्ट पहुंचे शिमला बट नो ट्रैफिक जैम येट. जम्मू कश्मीर के रजौरी में टेररिस्ट छुपे हुए हैं. ट्रूप्स ने हाइडआउट्स पर की फायरिंग. पुणे में डैम वाटर के रिसीड होने से पांडव एरा कंबरेश्वर टेंपल इमर्ज हुआ. अमित शाह का कहना है कि बंगाल ने बीएसएफ को 600 हेक्टर्स लैंड की दे दी है फॉर फेंसिंग विद इन 7 days. एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की दिल्ली हाउस फायर में मौत हुई, एसी ब्लास्ट सस्पेक्टेड. एंड म्यांमार प्रेसिडेंट अब इंडिया का दौरा करेंगे. ट्रेड एंड डिफेंस ऑन द एजेंडा. एंड ड्राई टैप्स एंड लो प्रेशर वाटर क्राइसिस इन दिल्ली को ग्रिप किया डिस्पाइट सप्लाई फ्रॉम हरियाणा. पाकिस्तान की खबरों से ऑफिशियल्स के अनुसार ट्रेन ऑपरेशंस टू एंड फ्रॉम क्वेटा रिमेन सस्पेंडेड साइटिंग अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस फॉर द डिसरप्शन. वाशिंगटन में आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मिड ईस्ट पीस एफर्ट्स को डिस्कस किया. मीटिंग के दौरान बायलैटरल टाइज को रिव्यू किया जाएगा. ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा हुई. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यूएस में ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वाइट किया टू ऑनर देयर रूट्स एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. उन्होंने वादा किया कि पाकिस्तान के बेहतर दिन आने वाले हैं. पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर भी बातचीत की. न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी लीडर्स से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने की मुलाकात. पीएमडी ने सिंध के दादू के लिए नए मैक्सिमम टेम्परेचर्स का ऐलान किया 51.5 डिग्री सेल्सियस. लड़काना और जकोबाबाद फॉलोड क्लोजली विद रीडिंग्स ऑफ 50.5 डिग्री सेल्सियस. NCCIA पंजाब ने एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एंड इंसाइटिंग अनरेस्ट ऑनलाइन के लिए 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है. अलग अलग शहरों से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया. ये लोग स्टेट के खिलाफ कैंपेन चलाने के दोषी पाए गए. प्राइम मिनिस्टर शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कमिटेड है टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पीस वाया यूनाइटेड नेशन मिशंस, और PFF की लैक ऑफ प्लानिंग कॉस्ट के चलते पाकिस्तान AFC अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ पॉसिबल. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से ऋषभ पंत ने रिजाइन किया एज लखनऊ सुपर जायंट्स कैप्टन 2 seasons आफ्टर रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपीज डील. गुजरात टाइटन्स के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल का कहना है कि होपफुली वी विल बी एबल टू गेट वैभव सूर्यवंशी आउट अर्ली. और हेली मैथ्यूज टू लीड वेस्ट इंडीज इन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप. और फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर BCCI सेलेक्टर शुड रिमेन पेशेंट एंड नॉट पुश हिम इनटू द सीनियर टीम डिस्पाइट स्टेलर IPL परफॉर्मेंस. बॉलीवुड खबरों से रणवीर सिंह की प्रलय की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी. सलमान खान होस्ट्स प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ मातृभूमि फॉर सुभाष गई. पूजा भट्ट के अनुसार पिता महेश भट्ट कन्वर्टेड टू इस्लाम बिफोर मैरिंग सोनी राजदान. पूजा ने कहा माई डैड नेवर पार्ट वेज विद माई मॉम. सलमान खान ने स्टेप इन किया टू मेक पीस बिटवीन रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर. फिलहाल पूरी इंडस्ट्री डिवाइडेड है ओवर रणवीर सिंह एंड फरहान की कॉन्फ्लिक्ट ऑन Dawn 3. सलमान खान ने फोन करके दोनों पार्टीज को कहा टू रिजॉल्व द इश्यूज विदाउट hurting the future of their respective projects. Varun Dhawan ki film Hai Jawani To Ishq Hona Hai ko censor ne UA rating di, runtime at 136 minutes. And Lux Cozy signs Varun Dhawan as the brand ambassador till 2030 due to his massive audience appeal and fashion taste. Aur director Sanjay Gupta aur Sanjay Dutt to reunite for Kante 2. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headline. Studio ka number 416-593-0055. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
1: हाँ जी सनी जी, कैसे हैं आप?
0: जी फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए.
1: बस बढ़िया जी, बढ़िया. आप जो वो एडवर्टाइज देते हैं ना एशियन की,
0: सॉरी
1: एशियन,
0: जी जी जी जी,
1: जो एडवर्टाइज देते हैं आप, तो वो स्टोर तो बंद हो गया, 4 महीना हो गया उसको बंद हुए.
0: नहीं, द एड्रेस इज 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट 23 इन स्कारब्रो. सो मे बी यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट एड्रेस.
1: नो, ओ आई थिंक सो, दे वर लिटिल स्मॉल वन देयर.
0: या यू आर प्रोबब्ली गोइंग टू सम डिफरेंट स्टोर, क्योंकि ये जो है ये मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू के इलाके में है एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टोर. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, नंबर 25 यूनिट, स्कारब्रो.
1: हाँ सर जी मैं वहीं पे ही रहता हूँ, वो बंद हो गया है
0: सर. वो तो खुला है, मुझे लगता है आप किसी और स्टोर के साथ इसको मिक्सअप कर रहे हैं.
1: सर जी मैं दिन में 4 मरतबा वहाँ से पास होता हूँ. वो बड़ा स्टोर था कपड़े का, श्रीलंकन स्टोर, वो बंद हो गया है. 5-6 महीने हो गए उसको बंद हुए.
0: उनकी एड अभी शुरू हुई है. चलिए एनीवेज, आई लुक इनटू इट. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मे बी आप कंफ्यूज कर रहे हैं किसी और स्टोर के साथ. कई बार ऐसा भी होता है कि द लोकेशंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट कुड आल्सो बी अ फैक्टर. बट एनीवेज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत उदित नारायण की आवाज में, एंजॉय करें. आते हैं बहुत ही जल्द वापस. एंड बाहर का तापमान हो चुका है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
2: अच्छी, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
1: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
3: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
4: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
5: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se. Ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca located at Woodbine Avenue and John Street. Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: 10 meter. Bas inna ko yaad rakho. Tuhanu upparon langdiyan bijli diyan power lines to ghatto ghat 3 meter dur rehna chahida hai. Ontario vich bijli to hon wali mautan da ik pramukh karan power lines han. Ate bina chhue vi tuhadi maut da karan ban sakdiyan han. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
4: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk-in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
7: ਲੇਕ ਡੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟੰਡਰਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਟੰਡਰਾ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 11,000 pounds ਤੱਕ ਦੀ ਟੋਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਓ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟੰਡਰਾ 4x4 ਕਰੂ ਮੈਕਸ DRD ਆਫ ਰੋਡ $172 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 months ਲਈ 4.29% APR ਤੇ $5,800 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
8: Another Don Clean with the Don Ducks.
9: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Don Platinum, the better grease getter.
11: दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात, गम अभी सोया है जगाए कौन। वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, कौन दुख झेले आजमाए कौन। अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन। आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज याद आए कौन, देखिए आज याद आए कौन।
12: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है। बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 25-26 साल से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं इन सदर्न ओंटारियो, एंड ही हैज़ बिकम एन एक्सपर्ट एट व्हाट ही डज। बिजनेस कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसा है,
13: क्यों, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अतीक भाई ने मेंशन किया था, जिसको लेकर ऑब्वियसली देयर आर सम क्वेरीज और कुछ लोगों के सवाल हैं, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। नंबर प्लीज अतीक भाई का नोट करें, 416-666-2745, 416-666-2745। ध्यान से सुनिएगा सेगमेंट को, और उसके बाद सेगमेंट के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और अतीक भाई से मुलाकात करें, या जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। अतीक भाई, आपका स्वागत है।
14: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
13: जी आपको भी आदाब एंड गुड आफ्टरनून। एंड अतीक भाई, कल आप जब ऑन एयर थे तो यू वर मेंशनिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दिस लैंड, 100 acre की लैंड जो आपने एक्वायर की है, एंड जिसमें $60,000 पर एकर के हिसाब से। मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा और हमें कुछ एक्सप्लेन करें, समझाएं, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर यू लेफ्ट यस्टरडे, एंड लिसनर्स जानना चाहते थे कि भाई थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को थोड़ा हमें समझाएं, यू नो व्हाट, हाउ, व्हाई एंड ऑल द क्वेश्चंस।
14: श्योर, और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी इनबॉक्स फुल हो गया था मैसेजेस से और कॉल से। मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन कर दूं कि सिचुएशन क्या है।
13: ठीक है,
14: सेकेंडरी प्लान सिटी ने अप्रूव कर दिया और सेकेंडरी प्लान ऑफिशियल प्लान का पार्ट बन गया, पहली बात।
13: Okay.
14: और ये क्या होता है कि एक लैंड जो अर्बन एरिया से बाहर होती है, रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चरल है, किसी और जोन के अंदर है, उसको सिटी ने अपने ऑफिशियल प्लान में, जोनिंग में, अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया। सो आपकी अपसाइड तो ये हो गई कि आपको अब लैंड पे कोई काम नहीं कराना है, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए रेडी हो गई है।
13: ठीक है,
14: तो करंट जोनिंग उसकी एग्रीकल्चर, आज की तारीख में वो रेजिडेंशियल अर्बन के अंदर आ गई। 100 acre की लैंड, और ये इसके टाइटल पे 3 अलग अलग ओनर थे, तीनों ने अपना मॉर्गेज डिफॉल्ट किया, और वो चीज जो 10 million से ऊपर की थी मुझे आधे से भी नीचे पैसों में मिल रही है थ्रू रिसीवरशिप। यहां तक भी बात क्लियर होगी?
13: ठीक है, बिल्कुल।
14: अब वो उसके जो नंबर बैठ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तकरीबन कोई $60,000 पर एकड़ के हिसाब से।
13: $60,000 पर एकड़?
14: पर एकड़। नॉर्मली सिटी के अंदर नहीं, मतलब मैं आपको मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, टोरंटो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से आउटस्कर्ट, यानी हैमिल्टन, लंडन, वाटरलू, ओशवा नॉर्थ, इन एरियाज में आपको आज की तारीख में मार्केट से कम डिस्काउंटेड प्राइस में लैंड मिलती है $1 million पर एकड़। ये एवरेज बात कर रहा हूं।
13: जी जी,
14: तो मिलियन की चीज आपको $60,000 पर एकड़ के हिसाब से मिलेगी, और इस पे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, सीनियर होम, इन सब की अप्रूवल करानी है, और अप्रूवल कराने के बाद इस लैंड को हम सेल कर देंगे, और वही चीज जो आपको $60,000 पर एकड़ के हिसाब से मिल रही है ये X5 हो जाएगी, यानी 5X आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इतना पैसा बनाने का इसमें मार्जिन है। जिसको प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म चलना है वो रुक जाए, जिसको अपना पैसा मल्टीप्लाई करने अलग होना है वो अलग हो जाए। हमारा और आपका साथ स्टेज बाय स्टेज चलेगा, जैसे जैसे लैंड अप्रूव होती जाएगी आप अपना पैसा बाहर निकालते जाइए या फर्दर कंटिन्यू करते जाइएगा। और मजे की बात यह है कि ये जो $60,000 की बात हो रही है ये भी आपने 3 installments में पे करनी है। एक आप अभी देंगे जून में, एक आप देंगे सितंबर में, और आखिरी आप देंगे दिसंबर में। तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आ रहा, लैंड टाइटल आपके नाम पे, ओनरशिप आपके नाम पे, और आपकी मर्जी है आप 1 acre, 10 acre, 50 acre जितने लेना चाहें आप ले सकते हैं।
13: जी जी, एंड जिसके लिए ऑब्वियसली अतीक भाई से आप संपर्क करें, 216-666-2745, 416-666-2745। अतीक भाई, हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली अर्ली पार्ट ऑफ द वीक टेक्स्ट किया था, पर्सन लिव्स इन किचनर, उन्होंने आई गेस पिछले हफ्ते और द वीक बिफोर आपको सुना होगा, और उन्होंने जानने की कोशिश की थी, जबकि हम रेगुलरली इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू बिन एंगेज्ड इन सदर्न ओंटारियो सिंस 2000। उन्होंने कहा कि किचनर वाटरलू में अगर कोई शख्स, आई थिंक ही प्रिज्यूम्स यू लिव इन GTA, तो उनको उनका सवाल ये था कि किचनर वाटरलू में कितना एक्सपर्टीज अतीक भाई का होगा, और इज इट द सेम फॉर इंटायर सदर्न ओंटारियो?
14: पूरे सदर अंटारियो में एक ही आंसर है, और वो मेन चीज है कि अगर आपके पास इंजीनियर और प्लानर और आर्किटेक्ट, ये तीन बंदे अगर आपके पास स्ट्रांग है आपकी टीम के अंदर, तो आप मिरेकल्स कर सकते हैं। और अगर यही तीन बंदे आपके पास नहीं है या कमजोर हैं, तो डिजास्टर के लिए तैयार हो जाए।
13: सो यू, द वे यू गेन्ड एक्सपीरियंस इन वॉट यू डू एंड यू डू इट द बेस्ट, आपका कहने का मतलब है कि भाई सदर्न ओंटारियो में कुछ भी हो, वो जोनिंग करवाने, एट द एंड ऑफ द डे यू टेक द एंटायर हेडेक, यू, दिस इज द होमवर्क दैट यू एंड योर टीम डज, और वो प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो सकती है।
14: 100% आपने सही समझा है। लिटरली टिम्बकटू भी अगर है और मुझे एड्रेस मिल जाता है, मैं आपको घंटे दो घंटे या विद इन अ डे बता दूंगा कि इस लैंड पे फ्यूचर प्लान क्या बन सकता है, ये काम की है नहीं है, 5 साल बैठना है, 50 साल बैठना है या 5 महीने बैठना है। यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद जस्ट अ फोन कॉल अवे। अच्छे दिन है ये, इस वक्त जितने लोगों ने मॉर्गेज ले रखा हुआ है वो डिफॉल्ट्स पर आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ सनी साहब, जब मिलियंस की बात होती है, 100 एकड़ की बात हो रही है, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज, मैं मतलब उन लोगों से जब मिलता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, किसने आपसे कहा था कि आप सेकंड और थर्ड मॉर्गेज तक चले जाएं? अगर फर्स्ट मॉर्गेज में ही आपकी बात नहीं बन रही तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आप गलत चीज उठा रहे हो।
13: Exactly.
14: और वही हुआ, ओवर प्राइस में चीजें खरीद ली, अब कोर्ट के थ्रू मुझे पेनीज दे रहा हूं, और उसमें मजे की बात यह कि जो ओनर्स थे उनकी पूरी इक्विटी खत्म हो चुकी है। तो लिटरली आप मॉर्गेज बाय कर रहे हैं उस चीज का जो 10 मिलियन की और आप 4 मिलियन में लेकर आ रहे हैं। तो आप राइट अवे मुझे कॉल करें, अगर आपको $60,000 में ये एक एक एकड़ लेना है तो 416-666-2745 डायल कर दें, मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, आई विल सेंड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर मिस कर देंगे तो सितंबर में यही 60,000 आप 100,000 पे करके ले रहे होंगे।
13: एग्जैक्टली दोस्तों, एंड ये इसी होमवर्क की मैं बात कर रहा था, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी लैंड है आपने शायद देखी हो और आपने अतीक भाई को कहा तो अतीक भाई कहेंगे चलो जी जोनिंग बदल देते हैं, अक्वायर कर लेते। ही डज ऑल दिस होमवर्क कि भाई सस्ते में जो चीज आप खरीदते हैं उसी से फिर मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन करते हैं। बाकी जानकारी के लिए द वन एंड ओनली अतीक भाई, 416-666-2745, 416-666-2745। इफ यू आर अ सीरियस पर्सन लुकिंग टू मेक सीरियस गेन्स, ग्रोथ फॉर योर सेविंग्स, कॉल अतीक भाई राइट नाउ, 416-666-2745। एंड अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात।
14: थैंक यू सो मच सर।
13: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 और choleBhature.ca डाइन एंड टेक आउट ऑप्शन है, 4 locations है, 2 in Brampton, 1 in Vaughan एंड 1 in Mississauga। choleBhature.ca, दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस। विल लाइफ टाइम ट्रेडिंग कल सैटरडे 12:30 से 3:30 होता है इनका फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून, उसे अटेंड करने के लिए प्लीज रिजर्व योर सीट, प्लीज डोंट वॉक इन, कई बार फिर सीट ही नहीं मिलती। 9052061008। प्यारा संगीत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अभिजीत उदित नारायण की आवाज में, अनु मलिक साहब भी बीच में आ जाते हैं क्योंकि वो म्यूजिक देते हैं, फिर उनको लगता है भैया मैं भी अपनी आवाज दूंगा, एंड वी ऑलवेज नो हाउ ही डज दैट। एंड चलिए, फिल्माया ऑन सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार, और फिर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस के सुल्तान जी भी आगे चलकर हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड आज टेम्परेचर्स जो हैं तकरीबन 25-26 डिग्री तक पहुंचेंगे। एक्सपेक्ट सनशाइन एंड टेम्परेचर्स अबव 20 डिग्रीज दिस इंटायर वीकेंड। केनेथ लॉ ने प्लीड गिल्टी किया है टू 14 काउंट्स ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग सुसाइड। एंड वो मर्डर चार्जेस वाली बात जो है वो उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। लॉ एडमिट्स टू सेलिंग डेडली सब्सटेंसेस टू वल्नरेबल पीपल, सम ऑफ हुम कमिटेड सुसाइड। ये उसने एडमिट किया है। मर्डर चार्जेस अगेंस्ट केनेथ लॉ टू बी विड्रॉन After he is sentenced today. So, अगर सेंटेंस आज आ जाता है तो, so this is the breaking news that came out. And इसके अलावा जतिंदर गंदम रियल्टर हमारे साथ हैं मस्कोका में। ये बहुत ही एक अमेजिंग सी प्रॉपर्टी है, कॉटेज है, और अगर आप इसके मालिक बनना चाहते हैं तो

0: 416-266-2222 पर जितेंद्र जी से संपर्क कर लीजिए. क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉशन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं. बहुत ही इनके जबरदस्त सर्विसेज हैं. नेम ब्रांड सनग्लासेस पर बहुत अमेजिंग डील्स वरुण जी ने लगाई हुई है. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम इज राजधानी. चलिए जितेंद्र जी से बातचीत करते हैं. टेक इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कॉटेज तो इसकी चाबियां आपके हाथ में हो सकती हैं बहुत जल्द. जितेंद्र जी आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर.
1: हेलो, सत श्री जोशीपा जी, गुड आफ्टरनून. तो अज आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लैके आए हैं. यह जी कॉटेज है 2 एकड़ के लॉट के बनी हुई है. 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए. 3 बैडरूम ने, 3 वाशरूम ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो. फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है. यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी उत्ते चल रही है पिछले 1.5 साल तो. लास्ट ईयर 2025 के लगभग $1,00,000 के लगे है एयरबीएनबी उत्ते रेवन्यू सेगा. प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं. जे तुसी इस प्रॉपर्टी नूं लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज ते साडा नंबर गलबात कर लिओ. साडा नंबर 416-265-2252222. रियल स्टेट दी मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो कॉल 416-265-2222. थैंक यू वेरी मच
0: जी. जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा. ते नंबर आ 416-265-2222, नंबर आ 416-265-2222, 416-265-2222. एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी में, मस्कोका की कॉटेज है, तो जल्द से जल्द जितेंद्र जी से संपर्क करें. गीत संगीत भी चलेगा, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वी विल प्ले देम. एंड लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर कार्तिक साहब ने लाइन अप कर दी है, वो एंजॉय करें.
2: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: एक और कहानी मेरी जुबानी. प्रयास करो, तमाशा मत देखो. एक गांव में आग लग गई. आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे. एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी. वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती. जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते. सबने प्रयास किया और आग बुझ गई. ये सारा दृश्य एक कौवा देख रहा था. उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू क्यों कर रही थी. चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं. तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं.

0: Welcome back, friends. Ek baar phir se aapka swagat hai. Hum pahunch chuke hain Brampton TV and Appliances, 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chinkusi in Brampton. TV Appliance Laundry ke Sultan. Sultan ji hamare saath hai. Open 7 days a week, 11 AM to 7 PM. And the number to call is 905-450-2828. Kai gharon ki dosto closings chal rahi hain. Aur closings mein sabse pehle jo cheez aapko chahiye hoti hai, appliance, laundry. And main sochta hoon ki wahin se shuru kar lete hain. Sultan ji se sultanic deals आपको आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
1: थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई. और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी. आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंट और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं. उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है $29.99 में. $2,000 कस्टमर सेव करेंगे. किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये. और अगर लॉन्ड्री एड करते हैं जी, तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $10.99 का है. और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला $14.99 का है. $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है. और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को. और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ. इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com. हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं. 905-450-2828 हमारा नंबर है जी. 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828. यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: जी बिल्कुल, डेफिनेटली जी. अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $9,000 वाली 499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला 799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला 899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा. कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है. $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी, ऑन बोवेड है जी. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट. और जिस तरह से एक हर हफ्ते, हर महीने, हर त्यौहार पर, फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए. सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
1: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग. उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त। इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं। इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ $699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का, 98 इंच जो $3500 वाला सिर्फ $1999 में मिलेगा। सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1999 का, बोवेड एंड चिंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 9054502828 905-450-2828 जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ। ਰੈਡ ਟੈਗ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% ਤੇ $4,900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
6: Welcome back, friends. मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड बाहर का तापमान हो चुका है 24 डिग्री सेल्सियस। इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इस सनशाइन को इंजॉय करें, क्योंकि फिर कुछ महीने बाद हमारी वो कंप्लेंट होगी कि भाई सनशाइन नहीं है एंड क्लाउडी वेदर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो बीच बीच में जब मौका मिले, आप अगर काम भी कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा निकल कर लंच के दौरान इस ब्यूटीफुल सनशाइन को इंजॉय करें। और जहां पर मैंने कहा बीच बीच में निकल कर, वहां पे मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह का गीत है बीच बीच में, एंड दैट इज फिल्म आया ऑन अनुष्का शर्मा एंड शाहरुख खान फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल। एंड इस साल शाहरुख फैन के लिए खुशखबरी होगी, क्रिसमस में रिलीज हो रही है उनकी किंग। एंड किंग में ऑब्वियसली किंग शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं एंड अभिषेक बच्चन इज प्लेइंग द बैड गाय, बट देन इट हैज़ अ ह्यूज स्टार कास्ट। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी एंड सो मेनी अदर पीपल इन द फिल्म। एंड यू नो, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस। चलिए इंजॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस 1:15 बजे तकरीबन। मॉर्गेज क्वीन नीलम सदोव जी भी हमारे साथ होंगी।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: काव्या होम्यो केयर. काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
6: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
5: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
7: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
8: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादि टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
9: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca.
10: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcbc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acbc.info.

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors, Sarabjit Gill, CP Chatwal, for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain. 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
3: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट मार्कम जेनेसिस मार्कम डूइंग लग्जरी योर वे अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल अलायंस से हमारे डियर फ्रेंड फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर अमन मेहता जी हमारे साथ हैं 241 क्लेरेंस स्ट्रीट यूनिट 26 ब्रैम्पटन इज वेयर द ऑफिसेज आर लोकेटेड 416-707-9900 अमन जी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ भाई हमें तो सिखा के जाते हैं मी ऑन अ पर्सनल लेवल आई गेट टू लर्न सो मच अबाउट बिजनेस कॉरपोरेशंस इतने सालों से बिजनेस करने के बावजूद कई चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता एंड देन व्हेन अ एक्सपर्ट लाइक अमन जी इज ऑन एयर तो फिर आंखें खुलती हैं 416-707-9900 अमन जी आपका स्वागत है हेलो
4: ताकि
2: भाई हमें कुछ नॉलेज भी गेन हो जाए इस लवली लवली से वेदर में अबाउट द लवली थिंग कॉल्ड बिजनेस पहला सवाल आपके लिए आप हैं हॉट सीट पर नंबर आपका एक बार फिर से दे दूं 416-707-9900 क्योंकि कई बार हमारे लिसनर्स ही कुछ जबरदस्त सवाल भेज देते हैं पूछने के लिए अमन जी व्हाट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स मेक आफ्टर देयर कॉरपोरेशन स्टार्ट्स जनरेटिंग प्रॉफिट्स मुझे लगता है ये गलती कईयों से हो जाती होगी
4: जी सनी भाई होता क्या है ना फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल अबाउट कहाँ इन्वेस्ट करना है कैसे टैक्स बचाना है तो द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई सी बिजनेस ओनर्स मेक व्हेन दे स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स इज पैसे को यूज कैसे करना है अब नॉट नोइंग कि इफ दे इन्वेस्ट इनटू पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है अगर आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में है तो आपकी एक्टिव इनकम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की है बट इफ यू बाय लैंड स्टॉक्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं वो पैसिव इनकम है सनी भाई जैसे ही आप कॉर्पोरेट से पैसे निकाल के पैसिव इनकम में वो करना शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं गेस व्हाट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है नॉट ओनली यू लूज योर बिजनेस बेसिक बेनिफिट वहां पर आपको 51% टैक्स मिलता है तो लोगों को यही नहीं पता होता कि करना क्या है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी ऑन द पेपर दे आर लूजिंग ऑन डबल टैक्सेशन ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है बिजनेस ओनर्स के लिए
2: क्या बात है नो आइडिया पता भी नहीं होता कई बार इन चीजों के बारे में अमन जी मेनी पीपल थिंक स्टेट टैक्सेस ओनली इफेक्ट द वेल्दी क्या ये बात सच है इज दैट द ट्रूथ
4: बहुत प्यारा क्वेश्चन सनी भाई वेल्दी वर्ड जो है ना हमारे माइंड में होता है कि वो वेल्दी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन जितने बड़े बिजनेस हैं उतने बड़े एक्सपेंसेस हैं. सो वेल्दी वर्ड यू आर वेल्दी, और एक ना बड़ी अच्छी प्रोवर्ब, एक बड़ी अच्छी वो स्लैंग लाइन आती है, यू आर रिचर देन यू थिंक. इसका मतलब क्या है कि हर आदमी सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आज आपको सारी एसेट्स बेच के सारे लोन्स पे करने पड़े तो आपके हाथ में जो बचता है वो आपकी नेटवर्थ है. एंड आई एम श्योर इफ यू एनालाइज nobody has less than 100,000 asset. क्यों? क्योंकि होता क्या है, कुछ ना कुछ तो आपके पास है, घर है आपके पास, फर्नीचर है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है. सो वेल्दी वर्ड जो है माइंड से निकाल दें, वी ऑल आर वेल्दी. अगर आप इस कंट्री में दो साल से पुराने हैं तो आपको इन टैक्सेस के बारे में जरूर सोचना चाहिए
2: और फाइनेंशियल प्लानर अमन मेहता साहब से मुलाकात जरूर करनी चाहिए. दिस इज दैट मीटिंग जो आप मीटिंग से निकलने के बाद अपने आप को थैंक यू करेंगे कि यार पहले क्यों नहीं किया, पर चलो देर आए दुरुस्त आए कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. 416-707-9900. ये जो सवाल है ना, मैं चाहूंगा लिसनर्स बड़ा ध्यान से सुने, बिकॉज इसका जवाब हम कईयों को नहीं पता है, यू नो, बिकॉज हम कईयों के साथ ये हुआ नहीं है, और भगवान ना करे हो, पर हो जाएगा जब होना है. What happens, अमन जी, to a corporation when the owner passes away unexpectedly? और ये passing away जो है unexpectedly, unfortunately होता है अक्सर.
4: I know, Sunny भाई, nobody is born with a date till. हम कहते ना कि every product comes with expiry date. सिर्फ human being के पास expiry date नहीं होती.
2: Yeah.
4: है. हाँ, good till होती है कि हम good till 50 या 60 हैं. तो आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है कि इफ somebody passes away unexpectedly. सनी भाई, इस कंट्री का उसूल है, बिल्डिंग बनने में सबसे पहले एग्जिट साइन लगता है ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भागना कहां से है आपको पता होना चाहिए. एंड वी डोंट फॉलो दैट प्रिंसिपल. सो अगर कई कल भगवान ना करे कोई ओनर passes away unexpectedly, देयर कैन बी लॉट ऑफ टैक्स कंसीक्वेंसेस, ओनरशिप डिस्प्यूट्स, लिक्विडिटी एसेट्स, और सर्वाइविंग फैमिली के लिए इट कैन बिकम अ चैलेंज अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग या एप्रोप्रिएट फंडिंग स्ट्रेटजीज नहीं बनाई है, तो दैट ट्रांजिशन कैन बी अ वेरी वेरी पेनफुल इवेंट. सो प्लीज मेक श्योर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन फैमिली, जस्ट इमेजिन करें.

0: यार हमको ये क्यों नहीं हमने किया, एंड दैट इज द नॉट द टाइम टू लर्न. टाइम टू लर्न इज टुडे नाउ.
1: Exactly. And the time to call Aman Mehta ji is today, right after this segment, 416-707-9900. Ye bahut valuable cheeze hain, just like life insurance. Hum tab tak nahi lete ga rahe, bhai, hum nahi honge, hume kya hai, this and that. But pata in cheezo ke baare mein jab tak chalta hai, kai baar cheeze haath se nikal jaati hai. You don't want that to happen. We often hear the phrase, Aman ji, the wealthy borrow instead of selling assets. Iska matlab kya hai exactly?
0: हसन जी यहीं पर की है. अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं आपके करियर में, जब आप इस कंट्री में आए थे, द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी वॉज वेन यू बोरोड. बोरोड का मतलब आपने घर लिया फ्रॉम अ बैंक एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट और आपके पैसे ग्रो करने शुरू हुए हायर इंटरेस्ट रेट पे. दैट वॉज द ओनली वे यू कुड एक्यूमुलेट कैश और वैल्यू इन दिस कंट्री. सो कोई भी बंदा जो अगर अपने आप को बोरो करके प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बोरोइंग इज नॉट फॉर एवरी वन सनी भाई. क्योंकि होता क्या है, जब हम सोचते हैं कि बोरो मेरा हो गया है, वहीं पर हम गलती करते हैं. बोरो आपका नहीं है, आपको उससे ज्यादा कमाना है. और उसके लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर अच्छा है ना सनी भाई, आई कैन प्रॉमिस यू अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टूड कि उनके टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है जस्ट बाय बोरोइंग. सो एक कॉर्पोरेशन का छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. ही हैड $1 million इन्वेस्टमेंट उसके थी, हमने उनके साथ प्लानिंग शुरू की, वी गॉट हिम अ 3 times लोन. So, उसको 3 million मिल गए बोरो करने के लिए. इंटरेस्ट वॉज अ राइट ऑफ एट 3% एंड ही इज मेकिंग अराउंड 12%. सो आठ, कहां वो 1 million पे 8% कमा रहा था, कहां वो 3 million पे 8% कमा रहा है. यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट हिज एसेट्स विल ग्रो. बट यहां मैं पीस ऑफ कॉशन देना चाहूंगा वेरी केयरफुली, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन.
1: जी, एंड दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानर अमन मेहता जी जैसा इंसान आपके साथ हो, हु वैल्यूज योर टाइम, योर एफर्ट, योर मनी, your security, your safety, what more do you need? What a great human being, ek bahut hi zabardast professional, aur Aman ji ko hum kaun nahi jante, das ka dam jo hamare yahan ka most popular 101.3 FM ka show tha, you know, uske producer and host Aman ji. 416-707-9900, waqt kam hai, do sawal quickly pooch lete hai Aman ji se. Aman ji, ek to, is corporate life insurance really an expense or can it be considered an asset? And also, मैं यहाँ पे ही जोड़ देता हूँ, why do many families lose wealth by the third generation?
0: सनी भाई, इसका क्विकली आंसर देता हूँ. अगर आप गाड़ी में एयर बैग एक्सपेंस समझ के लेंगे तो यू नो वट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट ट्वाइस. इट इज ऑलवेज एन एसेट, मोर वैल्यू देन द कार इटसेल्फ. क्योंकि जब गाड़ी लगती है सबसे पहले हम ये बोलते हैं शुक्र एयर बैग डिप्लॉय हो गया. सो थर्ड जनरेशन क्यों लूज कर रही है, बिकॉज हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसको रिटेन कैसे करना है वो हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है. एंड आई ओपनली ऑन एयर से, आप एक बार मेरे साथ एक घंटा बैठे, इफ आई डोंट प्रूव इट ऑन पेपर कि कैसे आप टैक्स एफिशिएंटली, नाउ मैं टैक्स एफिशिएंट CRA कंप्लायंट हूँ बिल्कुल, और 20 years इस करियर में हूँ. एंड बड़ी प्राउडली इस बात को ही करता हूँ कि जितनी फैमिली से भी हम जुड़ते हैं सनी भाई, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली. मैं आपको वे आउट दिखाऊंगा हाउ इट इज डन. करना है नहीं करना है वो आपकी ऑप्शन है, बट ऑनेस्टली आई कीप ऑन एजुकेटिंग द कम्युनिटी. एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट सनी भाई यू एंड द होल CMR फैमिली for helping me bring my voice on air for such an event.
1: मुझे लगता है ये वो सेगमेंट है जिसके लिए मुझे आपको हर दिन, हर मतलब जब आप ऑन एयर आते हैं, आपको एक $500 का चेक भेज देना चाहिए CMR और साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की तरफ से फॉर एजुकेटिंग अस अबाउट स्टफ दैट वी समटाइम्स फील कि हमें बहुत कुछ पता है. आपके सेगमेंट के बाद मैं इतना छोटा महसूस करता हूं कि भाई मुझे कितनी चीजों के बारे में कोई इल्म नहीं है, आइडिया नहीं है, बट आई थिंक आई बीन इन बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई नो इट ऑल. दोस्तों, अमन मेहता जी नंबर एक ही है, 416-707-9900. ही इज बीन डूइंग दिस फॉर 20 years नाउ. फाइनेंशियल प्लानर हैं, एडवाइजर हैं, और आपकी स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आपके परिवार के फाइनेंसेस के हिसाब से, आपके फाइनेंसेस के हिसाब से आपको करेक्ट प्रॉपर एडवाइस देते हैं. द नंबर वन फाइनेंशियल प्लानर दैट आई नो, अमन मेहता, 416-707-9900. आई जस्ट डोंट कॉल कंपनीज, ब्रांड्स एंड पीपल नंबर वन जस्ट बिकॉज वो ऑन एयर होते हैं. इट टेक्स टाइम फॉर मी टू एक्चुअली से कि भैया ये बंदा मेरे हिसाब से नंबर वन है. एंड अमन मेहता अपने काम को बहुत ही शिद्दत से प्रार्थना की तरह, वर्शिप की तरह करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड. अमन मेहता, फाइनेंशियल प्लानर, 416-707-9900. अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: Thank you, sir. Have a lovely weekend and thanks for that generous word.
1: Thank you, brother. Take

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰੈਡ ਟੈਕ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
2: Real estate is not easy business aur jo easy nahi use easy banate hain realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley ghar khareedna ya phir ghar bechna first time home buyers ya phir investors sabki pasand ka rakhte hain khayal ye hai Raj Joshi realtor bemisal call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086 Raj Joshi sirf naam hi kaafi hai
3: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है ऐसा क्यों नया इलाका और नया घर अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस पॉल सहगल 416-940-0624 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन
0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट यूनिट नंबर 23 स्कारब्रो नोन फॉर देयर साड़ीज लहंगा सलवार सूट्स ब्राइडल वेयर मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स एशियंस 416-438-6568 East or West, Asians is the best.

0: स्टेशन।
1: कम्युनिटी का जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
0: Skylake Immigration।
2: लेक डेदा प्लान सी, पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
4: जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बटता हूं मैं तो आज भी, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। एक चेहरा है मेरा कमबख्त, एक चेहरा है मेरा कमबख्त, वो भी इतना जिद्दी है कि जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा अभी दिखना नहीं सीखा। जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा अभी दिखना नहीं सीखा।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे, यानी नेक्स्ट वीक। मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
4: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
3: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. आप सभी का शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3. इट्स 2 o'clock और हमारा और आपका साथ रहेगा बरकरार शाम के 4 बजे तक. फाइनली फ्राइडे आ चुका है और आज सिर्फ वीकेंड का इंतजार नहीं, थोड़ा खुद को सेलिब्रेट करने का दिन है. पूरे हफ्ते हमने जो मेहनत की है, जो चुनौतियां पार की हैं और जो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए हैं, उन सब के लिए खुद को एक स्माइल देना तो बनता है. आज का इंस्पायरिंग पॉजिटिव थॉट कहता है कि सफलता हमेशा बड़ी छलांगों से नहीं मिलती, रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं. कहते हैं कि उम्मीदों का दिया जलाए रखिए, हौसलों को हमेशा सजाए रखिए. मंजिल मिल ही जाएगी आखिरकार एक दिन, बस मुस्कुराकर कदम बढ़ाए रखिए. तो आज शिकायतों को जरा छुट्टी देते हैं, खुशियों को प्रायोरिटी देते हैं और इस फ्राइडे को ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं मिलकर मस्ती की रेलगाड़ी पर. और बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक है, ओ बॉय चार्ली तूने दिल की बाजी मार ली. आज पंकज कपूर का बर्थडे है और ये वंडरफुल सा फुट टैपिंग नंबर आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर.
6: Hey.

0: दिल की बाजी मार ली दोस्तों। दिल की बाजी मारने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। असल मायने में दिल की बाजी वो जीतता है जो दिल से काम करता है। मेहनत होनी एक अलग जगह है। आप अपने करियर में मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ दिल लगाना है ना, वहाँ सिर्फ दिल का ही काम होता है, वहाँ मेहनत और दिमाग का काम नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को साफ रखिए, ऑटोमेटिकली दिल की बाजी आप जीत सकते हैं। तो आज फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि आपको दिल से एक बार फिर से कनेक्ट करें और दिल की बाजी हम सभी साथ मिलकर जिएं, दिल से दिल का कनेक्शन करें। मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे 29th of May आज की तारीख है और बाहर का मौसम मैं चेक कर लेती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल डे सनशाइन के साथ, 23 degrees centigrade तापमान है और आज का हाईएस्ट जाएगा 3 बजे 24 degrees centigrade और रात का लोएस्ट जा सकता है रात के 11 बजे 13 degrees centigrade। और एक और दिन है खुश होने के लिए, एक और दिन है वीकेंड के प्लान्स बनाने के लिए, एक और दिन है अपनों और परायों के चेहरों पर स्माइल लेकर आने के लिए, और यही हमारी कोशिश है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सी मस्ती की रेलगाड़ी की राइड लेकर आए हैं। बॉलीवुड कैलेंडर खोलेंगे और जैसा बताया आज पंकज कपूर का बर्थडे है, उनके बारे में कुछ और बातें करेंगे, कुछ मूवीज के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट कौन सी रिलीजेस हो रही हैं, कौन सी फिल्म पुराने दौर की सुपरहिट रही थी, इसके अलावा कौन सी मिड एज के ऐसे गाने हैं जो अनसुने हमने कर दिए हैं, बहुत दिनों से बहुत वक्त से हमने नहीं सुने, ऐसे गाने भी आपके तक पहुंचाएंगे और बिहाइंड द सीन स्टोरीज भी पहुंचाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन की बात करेंगे कि आज का दिन क्यों है वेरी वेरी स्पेशल, आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है, राइट? कुछ इंटरेस्टिंग मेहमान जुड़ेंगे बहुत ही अमेजिंग डील्स एंड ऑफर्स के साथ और आपकी हमसे बातचीत तो होती रहेगी। आज का टॉपिक भी रखेंगे तैयार। स्टूडियो का नंबर 4165930055 4165930055। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
2: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 9054585300.
2: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
1: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant. वेलकम बैक दोस्तों, शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर। CMR FM 101.3, it's a 214 राइट नाउ। और आज बर्थडे मना रहे हैं एक ऐसे एक्टर जिनकी एक्टिंग में है डेप्थ, रियलिज्म एंड परफेक्शन का कॉम्बिनेशन, और हर कैरेक्टर को वो लिटरली जिंदा कर देते हैं ऑन स्क्रीन। एक ऐसा नाम जो ग्लैमर से नहीं बल्कि प्योर टैलेंट से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिलियंट एक्टर पंकज कपूर के बारे में, और इनका सफर शुरू हुआ थिएटर से। तो जब इनकी हम एक्टिंग देखते हैं तो बिल्कुल मंजी हुई एक्टिंग नजर आती है जो एक थिएटर एक्टर में होती है जनरली। वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग की स्ट्रांग फाउंडेशन रखी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से इन्होंने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे बन गए एक्टर्स, एक्टर। जी हाँ, बहुत सारी इनकी आइकॉनिक फिल्में आई जैसे जाने भी दो यारों, मकबूल, फाइंडिंग फैनी, और मकबूल में उनका परफॉर्मेंस एकदम इंटेंस और पावरफुल था और क्रिटिक्स ने उन्हें दिया स्टैंडिंग ओवेशन। बॉलीवुड के साथ साथ पंकज कपूर ने टेलीविजन में भी अपनी हिस्ट्री बनाई है। कैसे भूल सकते हैं ऑफिस, ऑफिस को, और मुसादीलाल का कैरेक्टर कैसे भूल सकते हैं, आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। कॉमिक टाइमिंग, उनका जो सटायर है एकदम यूनिक, एकदम परफेक्ट था। तो सॉन्ग्स में हालांकि कम नज़र आते हैं, लेकिन अगला जो सेगमेंट है, जो गाना है, हमने लिया है एक बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म में जिसमें ये डैड थे और इनके बेटे शाहिद कपूर इनकी मूवी में भी बेटे बने। बिल्कुल फन लविंग फिल्म थी और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत प्यारा सा गाना है, आपकी नज़र करेंगे। कहते हैं कि पंकज कपूर ने जो है मेन स्ट्रीम रोल्स काफ़ी कम किए, लेकिन हर रोल इतना पावरफुल दिया है कि अब तक यादगार बन चुका है। और क्वालिटी से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर इन्होंने फोकस किया है, और यही रीज़न है उनकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन का। उनकी डायलेक्ट डिलीवरी, एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल और एफर्टलेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वी आर हिटिंग फ्राइडे इवनिंग वेरी सून, और आपकी आज की शाम को बनाते हैं शानदार। शाम शानदार, आपकी नज़र करते हैं फ्रॉम द मूवी शानदार टू सेलिब्रेट दिस आइकॉनिक एक्टर्स बर्थडे ऑन मस्ती की रेलगाड़ी। एंजॉय।

0: dear sponsors for fast, effective and result-oriented ride. Get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा
2: भाई चार लोकेशन तो देण सेवावा बस इसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने
4: मिड्डा फर्नीचर आओ घर दफ्तर नु सजाओ ब्रैम्पटन स्कारब्रो मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही
3: आजमाओ ता सही अपना बनाओ ता सही मिड्डा फर्नीचर
: कॉल करो 416-901-2810 416-901-2810 मिड्डा फर्नीचर।
5: वेल दोस्तों, और मस्ती की रेलगाड़ी में आज एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और इस वक्त मस्ती की रेलगाड़ी को हम जीडीए से बाहर लेकर जा रहे हैं और सीधे पहुंचते हैं टिंग टोंग लंदन, जहां पर पांचवी लोकेशन खुल चुकी है मिड्डा फर्नीचर गैलरी की और कल बड़े ढोल धमाकों के साथ एक फॉर्मल लॉन्च होने जा रहा है। एंड ज्वाइनिंग अस नाउ ऑन एयर इज पवन मिड्डा जी विद द ग्रेट ग्रेट ऑफर्स। पवन जी, मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू शो।
6: थैंक यू जी, और जो आप मुबारकें हैं सब आपको हैं, छोटी बहन को हैं, छोटी बहन और जो जितने मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, बड़ी बहनें, बड़े भाई, बच्चे, कहते हैं ना मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, और किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताया और किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा भाई, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो कहते हैं अजीज। तो ये बड़ा प्यार हमें बड़े सालों से मिलता आ रहा है, तो उसके लिए ऋणी हूँ मैं, ऋणी हूँ, और सभी को मिलता होगा अपने जो बिलावट का प्यार। और मेरी इतनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है कि मुझे बड़ा मान महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ, मैंने बहुत बार ये रेडियो पे भी कहा है कि दौलत पैसों से तो होगा बिल गेट्स या बहुत वाले एप्पल वाले अमीर होंगे, पर प्यार मिलने में मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ये प्यार मिला और आपका साथ मिला, वैल्यूएबल बिजनेस दिया, जॉब से कैरियर शुरू करा था, फिर एक छोटा स्टोर, फिर एक से बड़ा, बड़े से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, तो ये सब कुछ हुआ। तो जब अपने साथ खड़े होते हैं तो अपनों के बगैर ये संभव नहीं हो पाता, और अपना आपका जब प्यार मिलता, साथ मिला, वैल्यूएबल बिजनेस मिलना, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती
5: सही है। बात है,
6: मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ और ये चाहता हूँ मेरी छोटी बहन नजर भी उतार ले ताकि ये नजर भी ना लगे इस प्यार को, ये प्यार यूं बना रहे। और हमने भी अपनी तरफ से भी कोशिश करी है कि जो हमें आप लोगों की वजह से वॉल्यूम डिस्काउंट हमें मिला, हमें जितना सस्ता मिला हमने आपको दिया। हर दुकानदार एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाता है
5: जी,
6: हम भी कमाते हैं, और लेकिन हम सस्ते भी हैं फिर आपके लिए, और प्रूफ भी करा हमने उस रिश्ते को। रिश्ता तो शालिनी जी बनाना, मतलब आप किसी को भी कह सकते हैं,
5: सही कि बात है। हैं,
6: लेकिन उस रिश्ते को निभाना मतलब वो है, तो जैसे आप निभाते आ रही हैं तो वैसे ही निभाना जो है ना बड़ा वो हार्ड होता है। बनाना कहते हैं इजी होता है लेकिन निभाना होता है। आप लोग भी निभा रहे हैं, इतने सालों से निभा रहे हैं, और हमारी भी पुरजोर कोशिश है कि हम आपके जो भी है हम भी उस रिश्ते को निभा भी पाए और प्रूव भी कर पाए कि मीठा बोलना कह देना अली बात है, प्राइस फिर सस्ती होनी भी चाहिए, प्रूफ के साथ भी सस्ती होनी चाहिए, नहीं तो हर बंदा ही ढोल बजा के कह रहा है कि मैं सस्ता, मैं सस्ता, मैं सस्ता हूँ। लेकिन हम आपने हुनेस्टी को भी सराहा, उसके लिए भी आपको जो सलूट है। तो आए, जैसे मेरी बहन ने कहा कि पांचवी लोकेशन पे आपका स्वागत है, आई नो 1.5-2 घंटे की ड्राइव है ब्रैम्पटन से, जो बहन भाई आ जाएंगे मैं अपने आप को किस्मत वाला मानूंगा, जो नहीं आ सकते फोन द्वारा भी हमें गुड विशेस भेज सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, कहते ना दिल तो दिल के पास होना चाहिए।
5: क्या बात।
6: और हाँ, ब्रैम्पटन मिसिसागा स्कारब्रो कैम्ब्रिज में भी आ सकते हैं, ग्रैंड ओपनिंग डील का फ्लायर हमारी वेबसाइट के ऊपर लग गया है, हर परचेज के साथ गिफ्ट भी है।
5: oh, wow.
6: गिफ्ट का भी मॉडल नंबर है, गिफ्ट का भी मॉडल नंबर दे रहे हैं। ऐसे की अगर जो रग देंगे आपको, कारपेट देंगे तो तीन मॉडल लिखे हुए हैं, लैंप लिखे हुए हैं तो उसके मॉडल लिखे हुए हैं, वॉल आर्ट जो बड़ी बड़ी पिक्चर हैं उनके मॉडल लिखे हुए हैं कि ये गिफ्ट है, आप एक चूज कर ले, मतलब उनमें से आप एक चूज कर ले तो आपको आना मिड्डा फर्नीचर पे। हाँ, हर आइटम फ्लायर पे कई बार नहीं होती, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो बाजार से सस्ता भी, और आपका हमें प्यार चाहिए, साथ चाहिए, गुड विशेस चाहिए। जैसे आप चार लोकेशनों को प्यार दिया, पांचवी को भी आप देंगे, तो आए मिड्डा फर्नीचर। मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
5: थैंक्स अ लॉट पवन जी, फिर से आप के साथ हम ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी और कुछ और डील्स लेते हैं। तब तक दोस्तों आप middafurniture.com विजिट करें, 416-901-2810, 416-901-2810, नाउ सर्विंग फ्रॉम 5 locations. Talk to you thank very you. soon. बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे फिर पवन जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। दोस्तों आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3 और ये नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द ओल्ड क्लासिक्स आप तक पहुंचाया जा रहा है देओल ट्रैवल के सौजन्य से। और एयर टिकट बहुत ही स्पेशल फेयर लगा हुआ है, टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं बिफोर मिड जून लिमिटेड सीट्स के साथ, वन वे 849 में दो लगेज के साथ। टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं आफ्टर मिड जून 999 में, वन वे विद टू बैगेजेस। वेल इन जुलाई लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, टोरंटो से दिल्ली वन वे जा सकते हैं $1049 में विद टू बैग्स। लास्ट मिनट डील्स आर आल्सो अवेलेबल, टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन देओल ट्रैवल, 9055885100 एंड 9055884200, 5885100 and 5884200. And this segment is co-sponsored by Yash Windows and Doors. आप दोस्तों अगर world class quality के windows and doors चाहते हैं तो Yash Windows and Doors पर जरूर आप जाइए। और ये जो हैं all over Ontario में services देते हैं, खुद ही manufacturing करते हैं और इनकी export जो team है वो install करती है आपकी property पर, no middleman, no compromise। और style, looks, quality, security, durability, efficiency, energy efficiency, everything together, price ऐसी जो आपके pocket को suit करे। इसके अलावा business opportunity भी है, आप franchise option का भी सहारा ले सकते हैं और एक growing team का हिस्सा बन सकते हैं। Yash Windows and Doors, 416-732-3600, that's 416-732-3600। beautiful सा track आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर जो सलाम करता है हमारी आपकी जिंदगियों को।

0: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் புலட்டின் brought to you by ஷான் மீடியா. நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை அஞ்சும் குரேஷி. ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் கால் 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் மஸ்தி கி ரயில்காடி மே சவார் ஹோ சுகே ஹே ஆப் ஔர் யே ஹே நியூஸ் ஜங்ஷன். பஹலே ஜான் லேதே ஹே ஹெட்லைன்ஸ், துனியா பர் கி படி கபரே. அமெரிக்கா மே டொனால்ட் ட்ரம்ப் கி தஸ்வீர் வாலே 250 டாலர் கே நோட் கோ ஜாரி கர்னே கி தயாரி ஷுரு ஹோ கயி ஹே. இஸ்ராயல் கே பிரதான் மந்திரி பெஞ்சமின் நேத்தன்யாஹூ நே காஜா பட்டி கே 70% ஹிஸ்ஸே பர் சைன்ய நியந்த்ரண் லேனே கா ஆதேஷ் தியா. நியூயார்க் சிட்டி கி மேயர் ஜொஹ்ரான் மம்தானி நே ஈரான் ஜங் கா கியா விரோத், கஹா யே யுத்த அப் கத்ம ஹோனா சாஹியே க்யோன்கி இஸ்கி சப்ஸே படி கீமத் ஆம் லோக் சுகா ரஹே ஹே. வஹீ பாரத் மே லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி சுக்ரவார் கோ தில்லி கே பங்காலி மார்க்கெட் மே பனே டோடர்மல் பார்க் மே ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் கே பீச் பஹஞ்சே. தில்லி ஹாய்கோர்ட் நே காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி கே சன்ஸ்தாபக் அபிஜித் திப்கே கி யாச்சிகா பர் கேந்திர சர்க்கார் ஔர் எக்ஸ் கோ நோட்டீஸ் ஜாரி கியா. भारत में मानसून की एंट्री हो गई है लेट, मौसम विभाग ने बताया. श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाले तूफानी हवाओं के चलते मानसून अटक गया है. वहीं उत्तर प्रदेश में एक सीरियल अटैकर अपने पतले पैरों के कारण नफरत करता है लड़कियों से और उन पर कैंची से हमला करता है. बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में मेगा स्टार पिता चिरंजीवी की विरासत के बीच अपनी अलग पहचान बनाना रामचरण के लिए नहीं होगा आसान. अभिनेता सलमान खान ने रणवीर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल की.
2: और दोस्तों अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट लोकल खबरों की तरफ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी क्राइम अपडेट से. टोरंटो और वॉन एरिया में सिनेगॉग पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और टीनेज सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है और ये दो हमले सिर्फ 20 मिनट के अंतर पर हुए थे, एक बेथ एब्राहम यूसुफ ऑफ टोरंटो में और दूसरा बाथर्स्ट और ग्लेन कैरिन एरिया के एक गॉक के पास हुआ था. राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई लेकिन दोनों जगह गन फायर के निशान मिले हैं. इससे पहले एक 17 साल के आरोपी को भी अरेस्ट किया जा चुका है और उस पर कई चार्जेस लगाए जा चुके हैं. अब बात उस मिसिंग टीन केस की जिसने पूरे शहर को परेशान कर दिया था. 14 साल की एस्थर, जिसे एसटी के नाम से जाना जाता है, वो सेफ मिल चुकी है लेकिन टोरंटो पुलिस सर्विसेज ने साफ किया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लंबी गुमशुदगी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी शामिल थी या नहीं और जिस घर में वो मिली वहां रहने वाले लोगों की जांच भी जारी है. अब इकोनॉमी की बात करें तो यूथ के लिए जॉब मार्केट आसान नहीं नजर आ रहा. स्टैटिस्टिक्स कनाडा के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 24 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 14.3% हो गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश टेक्निकली रिसेशन में जा चुका है जिससे जॉब्स पाना और मुश्किल हो गया है. हैमिल्टन से एक डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है जहां हार्बर से एक बॉडी बरामद हुई है. पुलिस ने मामले को सस्पिशियस मानते हुए होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और लोगों से जानकारी देने की अपील की है. एजुकेशन सेक्टर में भी हलचल की खबर. टोरंटो TCDSB के एक पुराने लैंग्वेज प्रोग्राम को बंद करने के खिलाफ पिटिशन शुरू हो चुकी है जिसे 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों ने साइन किया है. ट्रस्टी का कहना है कि ये प्रोग्राम हजारों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है और इसे बचाया जाना चाहिए. इंटरनेशनल फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगाया गया नेवल ब्लॉकेज अब हटा दिया जाए जिससे ग्लोबल शिपिंग को राहत मिल सकती है. ऑन्टारियो पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डग फोर्ड की सरकार पर आरोप है कि ब्लू लाइसेंस प्लेट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को पहले छुपाने की कोशिश की गई है। अब ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं जिनमें बताया गया है कि प्लेट्स को हटाने के कई ऑप्शंस थे लेकिन गवर्नमेंट में जीरो कॉस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने चुना। और अब एक फ्रॉड अलर्ट रिचमंड हिल से। यॉर्क रीजनल पुलिस एक 49 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट डगलस रॉड्रिक्स की तलाश कर रही है जिसने अलेजेडली स्पैनिश स्पीकिंग न्यू कमर्स को टारगेट किया। वो खुद को कार सेल्स पर्सन बताकर लोगों से पैसा लेता था और फिर गायब हो जाता था। अंत में अब वेदर अपडेट दे दें। आज फ्राइडे का फैंटास्टिक मौसम है, काफी शानदार रहने की उम्मीद है। हाई ऑफ 23 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 13 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे दिन सनशाइन का मजा आपको मिलेगा। सुनते रहिए शालिनी के साथ मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3 शाम के 4 बजे तक। गुड आफ्टरनून।
0: न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। दैट्स 416-570-0157।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
10: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना साथ देने आएंगे स्नैक्स चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी
4: शगन का दिन चढ़ेगा सजना घर आएंगे टोली लेकर जाएंगे दुल्हन सजेगी शहनाई भी बजेगी लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी शादी हो या थीम शो कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए लम्हा इवेंट्स हर पल मुस्कुराइए जिंदगी मनाइए कॉल 416-522-0543

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 9057896600, दैट्स 9057896600।
2: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।
3: वेल दोस्तों, लेटेस्ट गाने की बात हुई है और बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक आपकी नजर करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मैं वापस आऊंगा। बड़ी इंटेंस फिल्म है, डायरेक्शन है इम्तियाज अली का और इस फिल्म में है दलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ और साथी कलाकार नसीरुद्दीन शाह भी इस फिल्म में है। और ये फिल्म जो है इंडिया के पार्टीशन की बैकड्रॉप पर बेस्ड एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें बिछड़ने, इंतजार और अपने वतन और अपनों के लिए एक जो तड़प होती है उसको दर्शाया गया है। और ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 12 जून को। कहते हैं दोस्तों कि कुछ कहानियां सिर्फ प्यार की नहीं होती, वो इंतजार की होती हैं, वो उम्मीद की होती हैं, वो उस वादे की होती हैं जो वक्त और दूरियां जो होती हैं वो भी नहीं तोड़ सकती। कहते हैं कि मीलों की दूरियां हों या सदियों का फासला, जो दिल में बस जाए वो लौट कर ज़रूर वापस आता है। मैं वापस आऊँगा इसी एहसास को लेकर आ रहे हैं इम्तियाज़ अली।

0: मैं वापस आऊंगा इस फिल्म से लिया गया बहुत प्यारा सा गाना है और ये इम्तियाज अली के डायरेक्शन में लाइक आई सेड बिफोर दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू फिल्म लॉन्चिंग ऑन 12th of June. और हमारे साथ पहुंच रहे हैं अब राहुल कश्यप जी और उनसे करेंगे एक छोटी सी मुलाकात और वो लॉन्च करने लगे हैं बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप ही के लिए और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए निकले हैं राहुल जी और आज वापस स्टूडियो नहीं पहुंच सके लेकिन उनसे हम फोन लाइन पर ही बातचीत करते हैं और आपसे पूछते हैं राहुल जी कि क्या स्पेशल है हमारे लिसनर्स के लिए. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम टू द शो.
1: जी शाह जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स.
0: थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और इतना अच्छा मौसम है और आज फैंटास्टिक फ्राइडे भी है तो कुछ एक्स्ट्रा यू नो परफेक्ट हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए.
1: जी एब्सोल्युटली. फर्स्टली आई वांट टू अपोलोजाइज टू आवर लिसनर्स कि आज रेडियो पे आना था. I wanted to be in the studio today with you guys, but जी. Unfortunately, कुछ commitments की वजह से, and because we're working on some amazing opportunities for our listeners and our clients, I got caught up with that. So that's why I couldn't be there. But no next problems. Week, I'll be coming to the studio not once, but twice. So
0: that's
1: that we can
0: great.
1: Definitely recap everything that's been happening in the real estate market.
0: जी.
1: But Joe, एक बहुत you know, amazing news ये है कि आज की date में, you know, we all know the numbers that has come out for the month of April.
0: Mm-hmm.
1: They are very promising, especially for the low-rise community. क्योंकि जो भी ये low-rise products आ रहे हैं, जो इनके price points हैं, that has kind of stirred the pot. That's how I would like to call it. उसकी वजह से market के अंदर एक थोड़ी सी positivity वापस आई है.
0: बिल्कुल.
1: The numbers are starting to look a little bit better.
0: Yes.
1: The buyer's confidence is coming back. And जो हमारे first time home buyers हैं, even the regular buyers and some investors as well.
0: Hmm.
1: If the deal is made

0: making sense price point wise and location wise, they are pulling the trigger and they are making the move and they are getting themselves the right unit that works financially for them.
1: क्या बात?
0: और उसी की वजह से हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और वो भी हमारे एक तो पील रीजन में है because two of the projects are coming up in Caledon.
1: अच्छा.
0: Caledon में आने वाले हैं और एक का तो लॉन्च इसी वीकेंड हो गया है होने वाला है सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट और जो अगला प्रोजेक्ट है Caledon का दैट्स कमिंग अप ऑन जून 17th सो पहली बात Caledon के अंदर अगर आप वेस्ट Caledon McLaughlin और Mayfield के एरिया में देखना चाहते हैं वी हैव ब्रांड न्यू टाउन होम्स डिटैच होम्स कमिंग अप from the starting price of $729,000.
1: Kya baat hai? That's amazing.
0: 30,000 mein, this is net of HST price
1: yes.
0: for absolutely free whole townhouse, traditional townhouse hai, with backyard. And these are not 1,300, 1,400, 1,500 square feet. We're talking about 1,700 approximate square feet of townhomes.
1: My God.
0: So, square foot ke townhomes hain ye.
1: Kya baat?
0: Jo aa rahe hain Caledon West ke andar, right at McLaughlin and Mayfield ke upar. 7,30,000 se ye shuru hone wale hain. 729,990 ke price point hai.
1: Very
0: you
1: nice.
0: Cannot go wrong with something like this, especially in the border of Caledon, Brampton. So, I know a lot of our listeners, they love it over there.
1: Kya baat?
0: Saath hi saath jo hamare detached hain, we are getting 30-footers, 38-footers and 45-footers
1: wow.
0: home that are also coming up in detach. Or jo detach ki pricing shuru hone wali hai, that is in the high $800,000.
1: Beautiful.
0: High $800,000 mein aapko detach ka ghar milne wala hai Caledon ke
1: andar. Very nice.
0: You cannot go wrong with that.
1: Not at all.
0: Ye project ka launch is weekend hai. That means you can start reserving the units right away. You don't have to wait. There's only limited release coming up and this is the final phase for this community jo aapki hai West Caledon ke andar right at the border of Mayfield and McLaughlin. Now, agar aapko East Caledon mein dekhna chahe hain, especially at Mayfield and Gold ka jo area hai, and that's close to my house because I live in that neighborhood as well, so I know that neighborhood really, really well.
1: Very nice.
0: Mayfield and Gold ke corner ke upar, wahan pe Solmar is the builder. They're bringing not a couple hundred, 2,500 homes. 2,500 घरों की कम्युनिटी बनने वाली है वहाँ पे. इट्स गोना बी अ मास्टर प्लान कम्युनिटी दैट्स कमिंग अप और यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल टाउन होम्स हैं, सेमी डिटैच हैं और साथ ही साथ आपके डबल कार गैराज हैं यहाँ पे आपके डिटैच होम्स.
1: ब्यूटीफुल.
0: दैट्स कमिंग अप एंड इसका जो लॉन्च है वो जून 17th को है. हमेशा की तरह हमारे पास प्लैटिनम एक्सेस है, वी हैव गारंटीड एलोकेशन इन दिस साइट. और यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ कि जो टाउन होम्स होने वाले हैं, देयर नॉट स्मॉल टाउन होम्स ईदर गाइस, देयर वाइड फ्री होल्ड ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन होम्स.
1: नाइस.
0: जो शुरू होंगे इन द 700,000 रेंज एज वेल.
1: ब्यूटीफुल.
0: सो दैट टाउन होम स्टार्टिंग इन द 700,000 रेंज. Semi-detach are going to be starting in the $800,000 range. Or detached homes. Again, guys, these are double car garage. Okay? Not single car garage. Double car garage, four bedroom, fully detached homes, traditional two-story with a backyard. Jahan pe aap apne bachon ke swing bhi laga sakte hain. These are coming at $900,000 range.
1: Wow, that's great. That's a steal.
0: You cannot go wrong with this.
1: Not at all.
0: Like I mentioned, it's going to be a master plan community, not a couple hundred homes, 2,500 homes over the lifetime of the site. And this is phase one. So you know it. In today's market, phase one, HST ka rebate jo hai aapka, this is your opportunity to grab and we can secure your unit right away. All you have to do is give us a call so we can provide more details. And just to give you a more idea, yahan pe they're going to be creating a lot of you know activities and parks for the kids. You're going to get a splash pad. Yahan pe basketball courts banne wale hain, tennis courts banne wale hain, and jo hamare cricket lovers hain, there's a cricket pitch coming as well. That's going to be built for this community especially. So there's a lot happening, keeping the Indian community in mind, the South Asian community in mind.
1: Right.
0: So we're super excited for this site. June 17th ko iska official launch hone wala hai, and we have guaranteed allocations here. So again, our clients don't have to worry about it. They'll get their first choice right away.
1: Beautiful.
0: So ye to do project the Caledon ke andar Shalin ji. And the third project, we're going to Mississauga, Fort Credit, Lakeview Village on Lakeshore Road. Wahan pe Aura Townhomes ka phase, jo second phase ka launch hai, wo hone wala hai from Kaivan. Pehla phase, 3 days ke andar completely sold out. Absolutely sold out. Ye dusra jo phase hone wala hai.
1: Nice.
0: Yahan pe pricing shuru hogi in the 500,000 range.
1: Okay.
0: These are going to be your two-story stacked townhomes.
1: Acha.
0: Two-bedroom minimum. Yahan se two or three-bedroom ke options yahan pe available hone wale hain.
1: Okay.
0: Include hone wali hai price point ke andar. You're going to get the net of HST rebate. Lots of incentives are coming in. We have right. programs available. This project ka jo official launch hai, wo hai June 9th. Ko.
1: Theek hai.
0: So once again, if you want guaranteed allocation in units in Aura 2 that's coming up, and Mississauga, get in touch with Team Hashtag Homes. We have more details available that I can share with our clients and our listeners once they call me.
1: Gee.
0: And again, the number to call, 647-993-4844. 647-993-4844.
1: 647-993-4844. ये नंबर अपने पास रखें दोस्तों, और ऐसी एक्सेप्शनली गुड डील्स जो बिल्कुल मार्केट कंडीशन के हिसाब से है, ऐसी सेट की गई हैं कि आपकी पॉकेट में फिट हो जाए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट. सो राहुल कश्यप जी और हैशटैग होम्स, एक ऐसा नाम जो रियल एस्टेट की दुनिया में ट्रेंड कर रहा है हर तरफ, जरूर याद रखिएगा नंबर फिर से टू कॉल और टेक्स्ट राहुल जी, 647-993-4844, 647-993-4844. और अगले हफ्ते दो बार आपसे मुलाकात होने जा रही है राहुल जी इन स्टूडियो, और लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड.
0: थैंक यू सो मच राहुल जी.
1: ऑल द बेस्ट. वेल दोस्तों, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ बहुत जल्दी, और एक छोटा सा टाइनी सा एड ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक बहुत प्यारा सा गाना है और आपको लिए चलते हैं 90s के दौर में. स्मॉल हम एक मैसेज लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, उसके बाद वापस लौटते हैं. स्टे ट्यून्ड.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
3: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
6: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
1: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम.

0: Lifetime.
1: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
2: जी दोस्तों, आपका स्वागत करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में. और आज फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन है. आज बड़ा हैपनिंग सा दिन है और इस दिन अगर आपने एक बात सुन ली और उस बात पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है, यानी आप जिंदगी भर जीत सकते हैं. कैसे जीत सकते हैं जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विन लाइफ टाइम की तरफ और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी. Rafi ji, good afternoon and welcome to the show.
3: Thank you very much. Good evening, good afternoon to you and your listeners.
2: Very good afternoon. Thank you so much once again, Rafi ji. तो चलिए, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ये एक वर्किंग वीक का लास्ट डे होता है और इसके बाद लोगों को प्लानिंग करनी होती है सैटरडे की. और हमारे कई सारे लिसनर्स ने आपकी सैटरडे का जो फ्री सेमिनार है उसके लिए अपनी सीट्स बुक की हैं, पर जो लोग नहीं कर सके उनको बताएं कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग अपनी लाइफ को एक बड़ा पॉजिटिव सा टर्न दे सकते हैं.
3: देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी हर मौके पे आती है. 2008 से हम सेमिनार करते आ रहे हैं, हजारों लोगों ने सेमिनार सुना है, कुछ पहली दफा सुन रहे हैं. मैं यही कहता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल लाइफ में लेके आना है कि आपको कल आने वाले पैसों की स्ट्रेस ना हो, आपको अपनी जॉब का खतरा ना हो, एम्प्लॉयर का खतरा ना हो, बिजनेस का खतरा ना हो, तो कोई ऐसी स्किल सीख लें जो रिसेशन प्रूफ है. ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये हम सिखाते हैं, पिछले 18 साल से सिखाते आए हैं. ऑफ कोर्स जब आप भी हमारा ऐड लेती रही हैं तो हम यही कहते थे पहले इसको ज्वाइन करें, फिर आपकी कन्विक्शन खुद ही आ जाएगी.
2: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है. तो कल आपका सेमिनार है राफी जी, तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट चाहिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए.
3: ट्रेडिंग की प्री रिक्विजिट यही है, आप गुड फॉलोअर है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस हम जो दें हैं वो फॉलो कर सकें. ना आपको कोई अकाउंटिंग चाहिए, ना सॉफ्टवेयर की कोई स्किल चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करें और फिर एक्सपर्ट सुपरविजन के नीचे हम आपको बिठा देते हैं और एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 2 मंथ्स आप सीख जाते हैं.
2: 14 दिनों से 2 महीने तक का टाइम देना है दोस्तों आपको. आपने जैसे सुना तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो यू नो 14 दिन थोड़े से कम स्मार्ट हैं, या मैं ये कहूं कि थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं अगर, तो शायद 2 महीने आपको लग जाएं, राइट, अगर आप किसी और काम में हैं. तो क्या इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ किया जा सकता है राफी जी, और इफ यस तो इसमें कितनी फंडिंग डालनी होती है?
3: आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, कोई फंडिंग नहीं डालने, क्योंकि मैथ्स के भी पेपर में पहले लोग स्टूडेंट्स आसान कर लेते हैं. तो आपके 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला है कि आपने अपने पैसे इस इंडस्ट्री में नहीं डालने. ये हमारी, मैं आपसे बेग करता हूँ कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैसे ना लेके आए. हमारे पास ऐसी फर्म्स हैं जो कैपिटल दे देती हैं, सारे का सारा रिस्क वो लेती हैं. नंबर 2, कौन कर सकता है? कोई भी करे, पार्ट टाइम जरूर शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता लें. लो स्टार्ट करते हैं $50 to $100 अ डे और आज हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. आज के बी के पीपल हैव टेकन $15,000-$20,000 होम टुडे विदाउट इन्वेस्टिंग.
2: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, कल बिल्कुल फ्री सेमिनार है और दोपहर के 1 बजे मिसेस आगा की 2 लोकेशंस पर होने जा रहा है. फ्री सीट है, आप जल्द से जल्द बुक कराएं. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी. winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर खड़ी है आपकी अपॉर्चुनिटी. गो एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स टू लेट. 905-206-1008, दैट्स 905-206-1008. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए राफी जी. हैव अ ग्रेट वीकेंड, फिर आपसे जुड़ेंगे.
3: थैंक यू, टेक केयर.
4: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से बात की। राहुल उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए। पार्क में बैठे राहुल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऑटो की सवारी करते हुए भी दिखे। राहुल ने ऑटो ड्राइवर से उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों, उनकी इनकम, उनके बढ़ते हुए खर्च और काम करने के हालात के बारे में जाना। उनकी शिकायतें सुनी, उनकी जीवन शैली और समस्याओं पर चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दिपके ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट के फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। भारत में मॉनसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया, श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मॉनसून केरलम तट से 35 किलोमीटर दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2 से 3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं है, यानी राहत की खबर आते आते अटक गई। केरलम के तट पर मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मॉनसून आने का अनुमान जताया था। ताजा अनुमान के मुताबिक अब ये 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा, यानी पिछले अनुमान से मॉनसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा। उत्तर प्रदेश में एक सीरियल अटैकर अपने पतले पैरों के कारण लड़कियों से नफरत करता है और उन पर कैंची से हमला कर देता है। उधर सरकारी टीचर्स को अब गायों के लिए भूसा जुटाने का भी आदेश मिला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के खेत से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकला, तो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति सिर्फ 5,000 कमाने के लिए ट्रेन में 1,22,00,000 देकर निकल पड़ा। वहीं चीन का एक 68 साल का बुजुर्ग 30 घंटे तक समुद्र में बोट चलाकर देश से 4th बार भाग गया। ऐसी अजब गजब खबरें भी हैं। और अब खबर बॉलीवुड से। मेगा स्टार पिता चिरंजीवी की विरासत के बीच अपनी अलग पहचान बनाना रामचरण के लिए आसान नहीं था। करियर की शुरुआती ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें गहरे अवसाद और आत्मसंदेह में धकेल दिया। एक समय वे खुद को कमरे में बंद कर लेते थे और प्रशंसकों से माफी तक उन्हें मांगनी पड़ी थी। अभिनेता सलमान खान ने रणवीर सिंह और फिल्म मेकर फरहान अख्तर के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल की। ये विवाद रणवीर सिंह के अचानक फिल्म डॉन 3 को छोड़ने के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर के खिलाफ असहयोग प्रस्ताव यानी नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने दोनों पक्षों से निजी तौर पर बातचीत की है, ताकि इस मामले को शांति से सुलझाया जा सके। सलमान ने दोनों पक्षों से बात की। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से उन्होंने इस गंभीर होते विवाद में बीच बचाव करने का फैसला किया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: ਕੰਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕੰਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
3: बिल्कुल दोस्तों, आपने मांगी थी अच्छी अच्छी डील. आपने कहा था आज का मौसम बहुत अच्छा है तो ऐसी फैंटास्टिक डील्स होनी चाहिए कि आपका फ्राइडे और भी ज्यादा मजेदार बन जाए. तो उसका इंतजाम हमारे पास हो चुका है इन स्टूडियो और हमारे साथ जुड़ने लगे हैं वन एंड ओनली अश्विनी कैंडा जी फ्रॉम कैंडा ऑप्टिकल. और जैसे जैसे मौसम वार्म होता है डील्स को और ज्यादा वार्म किया जाता है. तो अश्विनी जी, वेरी वार्म वेलकम. हाउ आर यू?
4: बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच शालिनी जी. एंड जैसा कि आपने बताया, ब्यूटीफुल डे है आउटसाइड, बहुत अच्छी अच्छी धूप लगी है और ठंड भी नहीं गर्मी भी नहीं और बहुत ही प्यारा दिन है. इसके लिए जरूरी है व्हेन वी आर आउट, वी आर डूइंग एनी वाटर एक्टिविटीज, एनीथिंग टू डू विद अंडर द सन और ऑन द वाटर, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर आईज बिकॉज यूवी रेज go high. That's where we need to protect our eyes. Take anybody on the water, they need to have polarized lenses. It helps. They can sort of see through the water. Shalini ji, this is so good.
3: Wow.
4: People doing fishing, any boats or anything like this is an amazing experience.
3: Nice.
4: We have got latest designs हमारे पास पहुंच चुके हैं, कलर्स पहुंच चुके हैं. एज यू हैव मिरर कोटिंग्स ऑन द लेंसेज, वी हैव डबल कोटिंग ऑन द फ्रंट एंड द बैक.
3: क्या बात है,
4: इट इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव. जाके ट्राई कीजिए. या अगर आपको नॉन पोलराइड लेंसेज भी चाहिए, वो हमारे पास पूरी तादाद में हर कलर्स में अवेलेबल है. उसके साथ साथ वी ऑल्सो डू कस्टमाइजेशन प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज. किसी के को प्रोग्रेसिव चाहिए, बाइफोकल चाहिए या सिंगल विजन डिस्टेंस ओनली चाहिए, उनके लिए भी उनके हिसाब से जैसा कलर चाहेंगे, जैसी कोटिंग्स चाहेंगे, उसके हिसाब से बना के देंगे. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस.
3: क्या बात,
4: शालिनी जी बता रहा हूँ कि हमारे पास जब हमारे कस्टमर आते हैं, ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम कांडा ऑप्टिकल बिकॉज वी आर नोन फॉर कस्टमाइजेशन. We known for the best of the best quality lenses and frames. We do customization, even putting their initials on the lenses. We can customize the colors for them.
3: Kya baat hai?
4: Main aaj kisi ko bata raha tha ki we had so many time requests, especially this request last week. Somebody bought a special watch with two colors on that,
3: kya
4: on the bezel.
3: Achha.
4: We had to match the color of those lenses.
3: Oh, really?
4: It is so amazing because he wanted to wear together. He said, this is just like, you know, this thing happening. We used to have ladies coming in, they want to match the color of their eyes with the dress they're wearing. Now, the new trend is even the watches, they want to match the color of the watch with the lenses.
3: Oh, nice. Mere jaisa hi koi insaan hoga jisne suggest kiya. That's amazing.
4: Customized lenses, diamond cut lenses.
3: Why not?
4: Diamond, put it on the glass.
3: Amazing.
4: Glasses or on the frames. We've got it all available.
3: Beautiful.
4: Any shape, any color, any size you are thinking of getting, we've got it all. We
3: Very
4: have
3: nice.
4: Solid gold frames available for you in white gold, yellow gold, Cartier frames ले सकते हैं,
3: क्या बात है,
4: chrome hard frame ले सकते हैं, Dita frame, Chanel frame, Bulgari, Prada, Versace, you name it, we've got
3: Amazing.
4: It. And own special pricing. That's important.
3: क्या बात है अश्विनी जी, ये तो भाई मजा ही आ गया. तो दोस्तों, आप जरा स्टाइलिश बन के निकले और अश्विनी जी के वीडियो जरूर देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पर. एंड ही इज अ स्टाइल आइकॉन हिमसेल्फ, लाइक आई ऑलवेज से. और भाई समर में वी ऑल वेयर नाइस ड्रेसेस, स्पेशली लेडीज और इवन मेन. तो आप लोग जो दोस्तों हैं, जरूर जाइए कैंडा ऑप्टिकल की नियरेस्ट लोकेशन पर. फॉर डिटेल्स विजिट कैंडा ऑप्टिकल .com 416-922-9225263 एंड celebrate the summer together. Thank you so much Ashwini ji for joining us today. Phir aap se mulaqat hoti hai. All the best.
4: Thank you. Bye.
3: और कैंडा ऑप्टिकल स्पॉन्सर कर रहा है अगला गाना नैना दा क्या कसूर, बेचारी आंखों का क्या कसूर है दोस्तों, आंखों का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है जब हम स्टाइलिश ग्लासेस नहीं लगाते आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम द मूवी अंधाधुंध आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं इन स्टूडियो और उनसे भी करेंगे बातचीत। मुकेश शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट और इसके साथ साथ यश विंडोज एंड डोर से धर्म जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारी डील्स, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे एक्साइटमेंट लेकर स्टे ट्यून्ड।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: डोंट वरी मुकेश चौहान है जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइव इन स्टूडियो विद अस मुकेश जी वेरी वार्म वेलकम हाउ आर यू
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद आई एम डूइंग ग्रेट ऑसम
2: ग्रेट टू सी यू टुडे यू लुक इवन हैप्पियर देन बिफोर मौसम का तकाजा है मौसम का असर सीधे आपके ऊपर आता है
3: मौसम बड़ा बेईमान है और बहुत धन्यवाद आई एम रियली ब्लेस्ड यू इनवाइटेड मी
2: थैंक यू थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस और आपका इंट्रोडक्शन दे दूं बड़ा हैवी पोर्टफोलियो लेकर आते हैं मुकेश चौहान और 20 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें मॉर्गेज इंडस्ट्री में बैंकर भी रह चुके हैं ही कैन लिटरली हेल्प यू रीफाइनेंस एंड कंसोलिडेट ऑल योर डेट्स इनटू छोटी सी प्यारी सी मंथली पेमेंट 55 एंड अबव हैं अफोर्डेबिलिटी में नहीं है आपकी मॉर्गेज तो आप रिवर्स मॉर्गेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुशी खुशी इंडिपेंडेंस आपके खुद के घर में ले सकते हैं होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो लो इनकम लो क्रेडिट से परेशान हो या पावर ऑफ सेल में आप फंसे हुए हैं सब चीजों का सलूशन है मुकेश जी के पास एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिजनेस ओनर्स के लिए भी कैश फ्लो का इंतजाम हो जाएगा अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल का भी इंतजाम करा देंगे 6475127000 मुकेश जी एक बार फिर से स्वागत है तैयार हैं आप
3: बहुत बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी और हमारे सारे प्यारे लिसनर्स को और मैं वेट कर रहा था शायद आप सवैया मुझे ऑफर करेंगे
2: उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे घर डेफिनेटली आपको सेवैया ऑफर करेंगे मुकेश जी और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है
3: बिल्कुल जी
2: तो आपको तो बड़ी पुरानी यादें भी होंगी
3: बहुत ज्यादा ये तो टाइम था बिल्कुल आस पड़ोस से मिठाइयां सेवैया सब कुछ आता था
2: जी
3: इस दौरान तो इज रियली एक्साइटिंग टू सेलिब्रेट दिस सच काइंड ऑफ इवेंट सो स्पेशली हम कनाडा में मल्टी कल्चरल हमारी सोसाइटी है सो वी रियली एंजॉय एवरी सिंगल इवेंट व्हेनेवर वी कम अक्रॉस
2: जी बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की और आज हम वी आर गोइंग टू ब्रिज द गैप्स ब्रिज फाइनेंसिंग की आज बात करेंगे आपसे तो ये किस तरह की फाइनेंसिंग है हाउ कैन इट हेल्प अस द होम ओनर्स
3: बिल्कुल देखें ब्रिज फाइनेंसिंग बड़ा डिफरेंट टॉपिक छेड़ा आपने जफा और डेफिनेटली आई लव टू आंसर देखें ब्रिज फाइनेंसिंग में ये होता है आप अपना घर बाय करना चाहते हैं राइट और आप घर बेचना भी चाहते हैं अभी देखें घर बेचेंगे पैसे आएंगे तो घर बाय करेंगे ना राइट ये सिचुएशन ऑपोजिट हो जाएगी आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग के अंदर आप अपना ड्रीम हाउस पहले बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हो और अपना घर बाद में बेचना चाहते हो बेच सकते हो अब सवाल ये पैसे कैसे आपके रोटेट होंगे कैसी फाइनेंसिंग में एडजस्टमेंट होगी आपको बैंक 30 डेज से लेके 120 डेज का टाइम देगा टू मेक द पेमेंट फ्रॉम योर प्रोसीड
2: ओके
3: मतलब एग्जांपल है 1 जून को आप घर बाय कर रहे हैं और September 1st को आप बेच रहे हैं
2: अच्छा।
3: तो आपको 4 महीने का टाइम मिल गया तो क्या हुआ आपकी होता क्या है मैं बताऊं शालिनी जी ये सारी चीजें हैं सारी कॉस्टिंग का आप जब आप बहुत ऑब्वियस है आपको घर इंपॉर्टेंट मिला है अगर आप उसको टाइम पे क्लोज नहीं कराते हो आपको आपको पेनल्टीज पड़ती है आपको बिल्डर भी लगा सकता है रीसेल भी लगा सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं बट इन सारी चीजों बचने के लिए आंसर एक ही है ब्रिज फाइनेंसिंग इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है
2: बिल्कुल
3: आपके पास सेल एंड परचेज एग्रीमेंट फॉर्म होना चाहिए कि आप खरीद रहे हैं और बेचने का भी होना चाहिए सेल एंड परचेज एग्रीमेंट फॉर्म मतलब डेट फिक्स्ड होनी चाहिए ऐसा नहीं है आपने खरीद लिया और आपने घर बेचा नहीं है तो बैंक भी जो है लेजिट अपनी सारी ड्यू डिलिजेंस करता है तो मेक श्योर यू गाइस यूविंग अ फर्म सेल एंड परचेज एग्रीमेंट एंड ब्रिज फाइनेंसिंग का कोई भी प्रश्न है कोई भी डिस्कशन है क्लैरिटी चाहिए Give me a call.
2: 6475127000. अच्छा अब मुकेश जी अब बड़ा घर चाहिए हमें से बहुत लोगों को हम अपग्रेड करना चाहते हैं और वो भी डाउन पेमेंट भी हो लिमिटेड चाहिए भी ज्यादा और देना भी हो लिमिटेड सो आई एम श्योर यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल
3: बड़े घर की बात है तो बड़ी परेशानी है राइट तो इसमें देखें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है आपको द ग्रेट न्यूज ये है कि अगर आप छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं कॉन्डो से सेमी सेमी से डिटैच डिटैच से अपने महल में जाना चाहते हैं तो एज लॉन्ग एज 1.5 मिलियन का घर है आप 10% डाउन पेमेंट से खरीद सकते हैं चाहे फर्स्ट टाइम होम बायर हैं चाहे आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, दो कंडीशन है इसके अंदर, आपका क्रेडिट स्कोर 680 एंड अबव होना चाहिए.
2: अच्छा.
3: और दूसरी बात है कि मैक्सिमम एक्सपोजर, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
2: ठीक है.
3: तो ये कोई सेकंड फाइनेंसिंग में नहीं आपको बता रहा कि आपको बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमेशा ये परेशानी रही है शालिनी जी कि सेल्फ एम्प्लॉयड को 20% देनी पड़ेगी पेमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं ये भी नहीं बोल रहा आपको सेकंड मॉर्गेज लेनी पड़ेगी. 90% फाइनेंसिंग लेंडर से आएगी, बैंक से आएगी, आपको सिर्फ 10% देनी है.
2: oh, wow.
3: बाकी और एक मजे की बात ये, आपको सेकंड स्वीट बनाना है, साथ साथ आपको घर अपग्रेड करवाने हैं, अप टू $100,000 की एडिशनल फाइनेंसिंग भी मिलेगी.
2: क्या बात है.
3: तो इन्फॉर्मेशन cool. तो मैंने बहुत सारी दी है. आई लव टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शाउट. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंस. नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000.
2: लास्ट आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी मुकेश जी, बिफोर यू गो, कि ये जो प्राइवेट मॉर्गेज है ये किस तरह से हमें हेल्प करती है इन द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स.
3: प्राइवेट मॉर्गेज के नाम सुनते ही एक तो पहले वर्ड पहले फॉरन जहन में आती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा
2: और बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं
3: बहुत सारे, वाई मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ, परेशान हो जाते हैं बिल्कुल. क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड और एक्सपेंसेस आपके राइट अवे बढ़ जाते हैं. जो रेगुलर मॉर्गेज जो 4,000 की, मे बी प्राइवेट आपको 6,000 की पड़ेगी.
2: बिल्कुल.
3: मगर मैं आपको सिचुएशन बेस्ड बताता हूँ, ठीक है. अगर आपको 3 महीने की मॉर्गेज मिस करी है, पावर ऑफ सेल का नोटिस आ गया है, आप बताएं क्या करेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ एक और आपको. यहाँ से आप मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, गाड़ी को छोड़ देंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको फिक्स करवाएंगे, फिर अपनी डेस्टिनेशन में आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. इज अ प्रोसेस. देखिए प्राइवेट मॉर्गेज इज अ प्रोसेस टू कम आउट फ्रॉम दैट करंट डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट सिचुएशन.
2: बिल्कुल.
3: रीजनेबल रेट्स के साथ आपको हेल्प करूंगा टू गेट द प्राइवेट फाइनेंसिंग विद द रीजनेबल लैंडर ब्रोकर फी. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जिट स्ट्रेटेजी अगर पता है आपको. देखिए प्राइवेट फाइनेंसिंग एक शॉर्ट टर्म प्लान है.
2: Yes.
3: 3 महीने से लेके 1 साल के लिए ले रहे हैं तो फिर ठीक है, इसके साथ शादी मत करें, डोंट गेट मैरिड. सो कम आउट ऑफ द सिचुएशन, आई विल हेल्प यू आउट टू गेट द सॉल्यूशन, गिव यू द क्लियर पाथ के प्राइवेट फाइनेंसिंग पावर ऑफ सेल में है, मॉर्गेज पेमेंट आपने मिस करी है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस करी है, सीआरए के ड्यूज हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल 3-3 साल से नहीं पे की है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बैड क्रेडिट है, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी की हुई है आपने, इंपॉर्टेंट. इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको प्राइवेट फाइनेंसिंग हेल्प करती है. एज आई मेंशन, it is not about the product, it is about your solution.
2: Beautiful.
3: Give me a call, give me a shout, I'm here to help you. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker. Number Shalini ji, aap Jumma hai aur aap hi bataiye.
2: 6475127000, that's 6475127000. Mukesh ji, thank you so much for joining us.
3: Bahut shukriya, bahut dhanyawad. Eid ki bahut sari shubhkamnaen aapko, aapke team ko once again, and thank you for inviting me.
2: Thanks a lot. Anytime, all the best. Well dosto, ek bahut pyara sa gana aapki nazar karenge. Mukesh ji ne ghar ka to इंतजाम करा दिया और आपकी प्रॉपर्टी का इंतजाम करा दिया. तो ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है. और घर हसीन बनता है किस चीज से? ब्यूटिफाई करने से. उसको अच्छी अच्छी विंडोज, टॉप क्वालिटी की विंडोज, टॉप क्वालिटी के डोर्स जब आप लगाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम इन द कम्युनिटी से, यानी यश विंडोज एंड डोर्स. हमारे साथ धर्म जी जुड़े हैं आज हिमसेल्फ इन स्टूडियो, द मैन बिहाइंड द सक्सेस of Yash Windows and Doors. Pyara sa geet aapki nazar karte hain, uske baad chalte hain, Yash ji se mulaqat karenge masti ki rail gaadi par. Stay tuned.

0: ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, या आपका ऑफिस बहुत हसीन है। अगर आप चाहते हैं ऐसा आपके घर जो आ रहे हैं मेहमान वो बोलें, तो आपको एक काम ज़रूर करना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स इंस्टॉल करने हैं। यश विंडोज़ एंड डोर्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वन एंड ओनली नाम बिहाइंड द सक्सेस ऑफ यश विंडोज़ एंड डोर्स, धर्म जी। धर्म जी वेलकम, हाउ आर यू?
1: एकदम कुशल मंगल मैं आपको और सारे श्रोताओं का गण जुग जुग के नमस्कार करता हूँ।
0: क्या बात है धर्म जी, और आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताई थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आपके जहन में आइडिया आया यश विंडोज एंड डोर्स का, और कहाँ आज यश विंडोज एंड डोर्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक सवाल सबसे पहले, कि अगर आप पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है एंड दिस इज वेयर यू आर, आपको कैसा लगता है?
1: मुझे लगता है कि मैं अभी 25% पर पहुंचा हूं।
0: अरे वाह,
1: 75% टू गो।
0: आई लव दैट।
1: कुदरत को मैं बोलता हूँ 150 साल की आयु से कर दो और 125 साल तक ऐसा ही रखो।
0: राइट। और आपके बारे में एक मैंने सीक्रेट ये भी सुना है धर्म जी, कि आप इतने ज्यादा वर्कहॉलिक हैं और आपको देखकर आपका जो पूरा स्टाफ है वो बड़ा मोटिवेटेड रहता है। यू आर द फर्स्ट वन टू रीच द ऑफिस, एम आई राइट?
1: एकदम, और सारे लोग इतने कमीशन पर हैं कि सबको और मैक्सिमम कमीशन के लिए रीच आउट करने के लिए वो लगते ही लगे ही रहते हैं।
0: अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। सो ग्रेट हार्ड वर्किंग टीम यू हैव धर्म जी। सबसे पहले यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर नोट करें, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। तो हमेशा हम बताते हैं यू नो यश विंडोज एंड डोर्स की प्लस पॉइंट्स, यूएसपीज। आज मैं आपके लफ्जों में सुनना चाहूंगी धर्म जी, क्या है यश विंडोज एंड डोर्स एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
1: यश विंडोज एंड डोर्स पहले तो डीलर नहीं है, यश विंडोज डोर की दो फैक्ट्रीज हैं, विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं पिछले 14 साल से।
0: क्या बात है,
1: पहली कंपनी ओंटारियो में ऐसी है जो 95% रिटेल करती है, घर घर जाके विंडो बेचती है और 5% होलसेल करती है।
0: क्या बात है,
1: तो होलसेलरों का जो रिलरों का जो डिमांड होती है कि ऑर्गन गैस मत डालो, रिसाइकल विंडो दो, ये सारी चीज हम सुनते नहीं है।
0: जी जी।
1: हम प्योर 30 ईयर की फ्रेम की वारंटी, 30 साल की ग्लास की वारंटी, 30 साल मल्टीपल लॉक सिस्टम की वारंटी। वी आर द ओनली कंपनी इन ओंटारियो विच इज गिविंग यू हाईएस्ट वारंटी।
0: ओह नाइस। तो वारंटी की बात रही तो आपने इतने सालों की वारंटी बताई है धर्म जी, हम बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि विंडोज एंड डोर्स में भी इतनी वारंटीज आती हैं और इतने तरह तरह के ऑप्शंस हैं उसमें। आई वेंट थ्रू योर फैक्ट्री और मुझे आपने खुद पूरा टूर दिया था एंड यू शोड मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज एंड डोर्स। ये भी आपने दिखाया था कि बिल्डर्स बाय डिफॉल्ट कौन सा लगाते हैं और आपके जो क्वालिटी है वहां तक पहुंचने के लिए कितने लेवल्स पे अपग्रेड करना पड़ता है लोगों को। राइट।
1: मैं तो आपको ये बार बार बताता हूँ सारे श्रोताओं को, डीलर के पास क्यों जाते हो आप? सीधी कंपनी आपको दे रही है 14 साल से 19,000 जॉब्स का जिसके पास एक्सपीरियंस है।
0: नाइस।
1: फैमिली ओन कंपनी है।
0: यस।
1: कोई विंडो डोर की जरूरत के लिए अक्रॉस ऑन्टारियो, जस्ट कम टू द जस्ट कॉल अस 416-732-3600। बाकी की सारी चीज हम पूरी कर देंगे।
0: वेरी नाइस। और धर्म जी एक चीज और हमने सुनी है कि प्रोजेक्ट जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, आपकी टीम जो है उतने ही डेडिकेशन के साथ काम करती है और इतना सीरियसली लिया जाता है।
1: आज हमारे पास जो एक सेल्स पर्सन के पास, रिस्पेक्टेड सेल्स पर्सन के पास जो अपॉइंटमेंट्स थी
0: जी,
1: उनके पास एक जॉब थी, खाली 4 स्क्रीन वो अम्मा जी को चेंज करनी है।
0: अच्छा।
1: तो गाय आदमी वहाँ पास जाएंगे, वो स्क्रीन निकालेंगे, बना के उनके घर पे डाल देंगे।
0: अच्छा।
1: और सी इज 85 ईयर ओल्ड।
0: क्या बात।
1: सो वी आर नॉट इवन चार्जिंग हर एनीथिंग।
0: ओह माय गॉड,
1: सी इज लिविंग अलोन।
0: दैट इज सो स्वीट। आई एम श्योर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। दोस्तों यश विंडोज एंड डोर्स नंबर 416-732-3600, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वहां मिलती है, ड्यूरेबिलिटी, लुक्स, सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर। अच्छा, और अब हमारे साथ तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं धर्म जी, और वो लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक ऐसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर डेडिकेशन बहुत हो, काम थोड़ा कम हो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको अपना बिजनेस खोलना हो, सो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज?
1: यस विंडोज, पहले तो विंडो डोर एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें कभी रिसेशन नहीं है
0: जी।
1: इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोगों के नए घर बन रहे हैं कि इतने सारी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आपके टाउन में खाली शोरूम खोलेगा वो उस टाउन के शोरूम को ही आपको हैंडल नहीं आप हैंडल करना है
0: अच्छा।
1: ना तो आपको मेजरमेंट करनी है ना तो आपको कोई इंस्टॉलेशन करवानी है ना तो आपको कोई सर्विस देनी है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड आपको सेल्स सेल्स एंड सेल्स के सिवा कुछ नहीं करना उसके साथ आपको ट्रेनिंग मिलेंगी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हम देंगे आपको लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर से भी कम इन्वेस्टमेंट पे आप विंडो डोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हो अगले जनरेशन को भी ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो
0: वेरी नाइस तो भाई देर किस बात की है ऑल द बिजनेस ओनर्स वर लिसनिंग टू आवर शो 416-732-3600 दैट्स 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स तो धर्म जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे बिफोर यू गो
1: वेदर बहुत अच्छा है विदाउट वेस्टिंग टाइम हर रोज दोपहर में एक दो घंटा निकालिए शाम को एक दो घंटा निकालिए और ये चार महीना का वेदर जो कनाडा को मिलता है उसका पूरा लुफ्त उठाइए
0: दैट्स राइट 416-732-3600 थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन स्टूडियो
1: थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू
0: आपसे फिर मुलाकात होती ऑल द बेस्ट दोस्तों एक छोटा सा टाइनी सा हम ब्रेक लेते हैं कुछ स्पॉन्सर्स के मैसेजेस लेंगे वील बी राइट बैक फॉर मोर अपडेट फॉर मोर सॉन्ग्स एंड मोर डील स्टे ट्यून्ड
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस
3: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
4: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
3: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट अटैक बाईपास सर्जरी लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर सुकून के और पास टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

0: करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।
1: जी दोस्तों, कार एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कभी भी कुछ हो सकता है। उसके लिए बेस्ट होती है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेकिन वी शुड बी रेडी टू वेलकम द बेस्ट। तो जब तक आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट इन योर लाइफ। इसीलिए हमारे साथ एक परफेक्ट जो है मेहमान जुड़ी हैं, जो आपको परफेक्ट सॉल्यूशंस देती हैं उस वक्त जब आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा होता सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और जल्दबाजी में हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब हम इस सूरत में पड़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, वहां पर जो है गहमा गहमी चल रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, आपको खुद चोट लगी हुई है, गाड़ी भी टूटी हुई है, फिर उसमें दिमाग वैसे भी काम नहीं करता, तो ऐसे में आपको डायल करना होगा ये नंबर जो आपको बताएगा आपकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए। तो अंजुम कुरैशी जी, बड़ा रेनाउंड नाम है एक्सीडेंट क्लेम की दुनिया का, 416-570-0157 ये नंबर अपने फोन्स में आप स्टोर कर लें और उनसे करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। अंजुम जी, वेलकम।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों को भी आदाब नमस्ते, सत श्री अकाल। हमने हमेशा कहा कि हमारा काम है आपके साथ अवेयरनेस को शेयर करना। तो जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग जो है वो अपना एड्रेस कहीं और रहते हैं और चेंज कर लेते हैं, और लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। अभी पिछले हफ्ते क्या एक सिर्फ हम एक वाकया ही शेयर कर सकते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ और वो रहते कहीं और थे, स्टोनी क्रीक का उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था।
1: अच्छा।
2: तीन लोग इंजर्ड हैं, तीनों हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और अभी उनको आगे चल के इनकम रिप्लेसमेंट भी देना है, सब कुछ देना है। जब इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया एक्सीडेंट कहाँ हो गया, तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने बताया, आप वहाँ क्या कर रहे थे, हम मिलने के लिए गए थे रात को 2 बजे। अच्छा जी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को अगर जरा सा भी रेड फ्लैग हो जाए तो वो फिर हर चीज को डिग आउट करती है। उन्होंने उनके फोन बिल्स निकाले, उनके बैंक की कहाँ वो बैंकिंग करते थे वो सारा मालूम किया, डॉक्टर कहाँ था, और जाहिर है कि जहाँ आदमी रहता है ये सारी चीजें वहीं होती हैं। तो फिर उन्होंने उनके पूरे केस को डिक्लाइन कर दिया। $49,000 अभी उन्होंने डीलरशिप को देने थे, और कार जो है अभी 49,000 उस पर बाकी थे।
1: अच्छा।
2: और गाड़ी टोटल राइट ऑफ है, लेकिन अब वो उसको एक पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि आपने अपने आप को मिसलीड किया, आपने झूठ बोला। अब आप सोचो कि एक तो आपको आपके मतलब मियां बीवी और बेटा हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और आपको ये पता चलता है कि आपने जो झूठ बोला था इंश्योरेंस कंपनी ने, उसकी वजह से आपके केस को डिक्लाइन कर दिया। आपको पैसे इसलिए नहीं मिलेंगे कि आपको जब एक हाई रिस्क का एरिया है और आपको उसकी वजह से $150 ज्यादा देने पड़ते हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत दिमाग लड़ा के, या कोई आपको कह देता है कि किसी और जगह का एड्रेस दे दो, आप दे देते हैं, और आप बिलीव करो कि इंश्योरेंस कंपनी जो आपने एड्रेस दिया होता है वहां जाके विजिट करते हैं। बाज़ औक़ात किसी के रिश्तेदार रहते होते हैं, बाज़ औक़ात तो वहां कोई रहता ही नहीं है। 2 साल पहले आपने वो जगह छोड़ी थी मगर आप वो एड्रेस यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है आपके इंश्योरेंस में नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। आपको जो है वो अगर फर्ज करो कि आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, बेटा भाई कोई भी रहता है, और आपने कहा कि जी वो हमारा एड्रेस है, इंश्योरेंस कंपनी को ही मालूम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है तो उसके पास हर किस्म का राइट मौजूद है, और वो जो ना आपका फोन बिल निकालते हैं, आपका डॉक्टर कहाँ है, आप जॉब कहाँ करते हो, तो अगर आप 140 मील दूर का अगर आप एड्रेस दे रहे हो तो रियलिस्टिक बात ही नहीं है कि आप डॉक्टर के लिए यहाँ आते हो, चलो ठीक है मान लिया, आप ग्रोसरी करने यहाँ आते हो, आप बच्चों के स्कूल आपके यहाँ है, आपकी जॉब यहाँ है, मतलब आप कितना उसको करोगे कि कितना आप झूठ बोलोगे।
1: नॉट पॉसिबल।
2: और फिर पूरा का पूरा आपका केस डिक्लाइन हो जाता है, और उस वक्त आपको पता चलता है कि जो मैंने $50 या $100 जो महीने के बचाए थे वो अब मुझे कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं या कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। हमारा काम ये है आपका अवेयरनेस पहुंचाना, आपको ये बताना कि रॉन्ग एड्रेस बहुत सीरियस मसला है, प्लीज ऐसा नहीं करें, जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस दें, और कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप मिस रिप्रेजेंट नहीं करें। मेरा काम आप तक मैसेज पहुंचाना, कोई भी कार एक्सीडेंट होता है, मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, आप मुझे कॉल करते हो 416-570-0157 570-0157 मेरा नंबर है. एट फॉल्ट एक्सीडेंट हो नॉट एट फॉल्ट एक्सीडेंट हो दोनों सूरतों में आप हमें कॉल कर सकते हो. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच अंजुम जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. नंबर फिर से बता दें दोस्तों 416-570-0157 दैट्स 416-570-0157.

0: आप भी रखें और आपके अपनों तक भी ये नंबर पहुंचाएं। मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका हम फिर से स्वागत करते हैं ऑन सीएमआर एफएम 101.3। और दोस्तों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर आपको चाहिए अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल आपकी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इको फ्रेंडली सेफ ऑप्शंस देते हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटेड है। अयान काशिप जी से आज ही बात करें, 647-966-4355, 647-966-4355। और सच ए ब्यूटिफुल मौसम आउटसाइड, घर या बिजनेस के लिए आप पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स लगवा सकते हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी से बात करके, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड। और ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी या ऑनिंग इंस्टॉल्ड, बिल्कुल फ्री बारबेक्यू है। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल भी, प्रोटेक्शन भी। 416-831-4790, 416-831-4790। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन सीएमआर एफएम 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेड टैग डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स DRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 months लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को जाओ
7: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3 पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही ये गाना जो है आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं फ्रॉम द मूवी जॉनी मेरा नाम। और लेकिन अब हमारे साथ जो आवाज जुड़ने जा रही है वो झूठा नहीं, बिल्कुल सच्चा प्यार, सच्चा अफेक्शन उनसे मिलता है। सब लोगों को पवन मिड्डा जी जुड़ेंगे। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन पवन जी फॉर द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ 5th लोकेशन टुमारो इन लंदन। आपका वेलकम है और हम सभी इंतजार कर रहे हैं डील सुनने का।
8: जी थैंक यू वेरी मच, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है आप लोगों के, आप बहन भाइयों के प्यार, सहयोग और जो आपकी जो बड़ों की दुआएं हैं, छोटों का विशेष हैं। और बिल्कुल पांचवी लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग और ये चेन वाइड पांचों लोकेशन पे सेल जारी है और हमारा फ्लायर अपलोड हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर। इवन देन आप एक फ्लिप ऐप है, बहुत सारे फ्लायर वहां पे आते हैं, वहां भी हमारा फ्लायर अपलोड कर दिया गया है। सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं वहां पे भी हमारा फ्लायर आपको देखने को मिलेगा। और हमने फ्लायर में डाला है मिड टू हाई एंड फर्नीचर।
7: क्या बात है,
8: क्योंकि मिड टू हाई एंड में मिड ऑफ फर्नीचर आपकी बचत भी 10-30% तक करवाता है आपकी बचत जो है। तो बचत आपको अगर ज्यादा बचत चाहिए तो मिड टू हाई एंड में। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्राडिक्ट की स्टेटमेंट नहीं बन रही कि हमारे पास 299, 199, 499, 499 वाला जो बहुत सारी आपको आयात देखने सुनने में मिलती है वो भी हमारे पास होता है
7: जी।
8: वो भी बाजार से कम होता है। क्यों कम होता है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट, आपके जो आप हमें वॉल्यूम देते हैं हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो हमारा कोई मोटिव किसी को ना ही क्रिटिसाइज करना है, ना ही किसी से कंपटीशन करना है, आपसे रिश्ता मजबूत करना है। वो तभी होगा जब हम आपको आप कहेंगे, आप हमें चेक करेंगे, जैसे कहते हैं एक बार आए अजमाए और हमें अपना बनाए। जब आपके टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर तो तभी तो रिश्ता और मजबूत होगा। तो मिड्डा फर्नीचर उसके लिए जाना जाता है। तो हमारा फ्लायर देखें या जो भी आप लेना चाहेंगे उसके लिए हर परचेज 500 एंड अबव के साथ हमने फ्लायर के ऊपर गिफ्ट रखे हैं।
7: नाइस।
8: और गिफ्ट के भी चॉइस के मुताबिक रखे।
7: अरे वाह।
8: अगर 3 लैंप रखे हैं आप कोई चूज अपने अपने घर के डेकोर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो पिक्चर अगर एक रखी है मिलेगी एक, 3-4 की चॉइस आपको दे रहे हैं।
7: Very nice.
8: वो भी एशले फर्नीचर की, मतलब कोई ऐसी वैसी उठा के नहीं दे रहे, एशले फर्नीचर के मॉडल नंबर के साथ दे रहे हैं जिसकी रिटेल वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। किसी की 200 है, किसी की 250 है, किसी लैंप की $90 $100 है, तो डिपेंड्स है कि आप क्या, जैसे हमने 3000 अबव के साथ दो गिफ्ट रखे हैं विच इज 500 रिटेल वैल्यू के, तो एक बोलना अलग बात है कि मैं $20 वाले को कह दूं जी $500 के, मैं प्रूफ दूंगा, मैं मॉडल नंबर दूंगा, मैं प्राइस होगी, तो क्योंकि ये बहन भाई से पर्दा कहेगा, बहन भाई से गिमिक्स कहेगी ना, मेरे को किसी बहन भाई ने मेरे से कहा कि भाई ग्रैंड ओपनिंग होगी तो गिफ्ट देना, हम मैं दिल से मेरा मन है
7: Very
8: कि
7: nice.
8: मैं ग्रैंड ओपनिंग है, खुशी है, जब सेलिब्रेशन होती है तो शादी पे तो कई बार नोटों को भी लुटाया जाता है, करते हैं ना चरण जी ऐसे कि आप ढोल वाले के ऊपर नोट उला रहे होते, कोई खुशी कर रहे होते हैं सेलिब्रेशन करके, तो गिफ्ट कोई मेरी बहन कोई मांग नहीं रही, तो हम दिल से चाहते हैं कि मेरे बहनों का भाइयों का बड़ों का छोटों का बच्चों का रिस्पेक्ट हो और ये हमारी जो खुशी है उसमें आप सब शामिल हो।
7: Very nice.
8: मेरी बात बिजनेस देने की, तो आप सालों साल से बिजनेस देते आ रहे हो और देते रहोगे, हमें जो आशा बहुत है, I'm very positive. तो हमारी तरफ से प्राइस कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और सर्विस अगर कोई इशू आता है वो अच्छी
7: क्या
8: होगी,
7: बात?
8: डिलीवरी का टाइम जो बोला जाएगा वो टाइम पे होगा। तो हमारा ये रिश्ता बना रहना चाहिए। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810 4169012810 हमारा नंबर है, और मिड्डा फर्नीचर .com पे जाके भी हमारा आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्लायर भी देख सकते हैं, और इंतजार है आपका, आज भी आए कल आए, कल ग्रैंड ओपनिंग जो लंदन में 12 बजे, जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं लंदन के और उनका स्टाफ और जो काउंसलर्स हैं सभी आएंगे, 12 बजे रिबन कटिंग होगी और आप आ सकते हैं, तो 10 बजे भी खोल देंगे, आए आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी,
7: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, मेनी कांग्रेचुलेशन, मुलाकात होती है आपसे, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। कहते हैं दोस्तों कि प्यार अगर सच्चा हो तो एक उम्र भी कम लगती है, प्यार अगर सच्चा हो तो एक उम्र भी कम लगती है, और अगर दिल टूट जाए तो एक पल भी भारी लगता है, कभी कभी कोई बस एक नज़र में दिल में उतर जाता है और फिर उसकी यादों का सफ़र सारी ज़िंदगी चलता है हमारे साथ, छोड़े जाते हैं आज आपको इस प्यारे से गाने के साथ, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, मुलाकात होती है मंडे आपसे फिर से शो के बाद, डायरेक्ट नंबर 416-569-7812 416-569-7812, have a great rest of the day, namaskar.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products, or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM. Tune in Monday to Friday or log on to CMR.FM.
5: हाँ जी, मेरे भाइयों जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम। मेरे भाइयों, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, कुदरत के इस हुस्न पर मर मिटने का दिल करता है। यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर यूं तो गुजरी है जिंदगी कई शहरों में, मगर अब उम्र भर यहीं पे ठहर जाने को दिल करता है, इन हसीन वादियों में। आइए लिए चलता हूं एक हसीन नगमे की ओर। ये वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
7: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
9: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
10: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
11: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
12: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
13: Tasty dosa khane ka man hai? Hamara favorite Guru Lakshmi hai na? Unit 44-50, 7070, St. Barbara Boulevard, Mississauga. Monday or Tuesday ko dinner, sham 5 to 10. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lunch 12 to 3, dinner 5 to 10. Wednesday ko band, magar, long weekend pe khule rehte hain. Call karein 905-795-2299 ya visit karein gurulakshmi.com. Guru Lakshmi, South India ke swad ka asli tadka.
14: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: रेट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
4: सस्ते

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: हाँ जी मेरे भाइयों, ये डू वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन, फर्नीचर की दुनिया का सबसे अच्छा यार रिट्ज फर्नीचर, यहां पर मिलेगा आपको सब कुछ और बहुत सारा प्यार। हाँ जी मेरे भाइयों, फर्नीचर की दुनिया का धुरंधर यानी कि रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53, मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6477657657, रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca है वेबसाइट। ईद के मौके पर बेहतरीन सेल लगाई है, आप जरूर पहुंचिए क्वालिटी फर्नीचर के लिए। आइए हम सीधे पहुंचते वहीं पर, बात करते हैं हिमानी जी से। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज हमारे श्रोताओं को प्रमोशंस के बारे में बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर कहे। ओवर टू यू हिमानी जी।
3: जी थैंक यू सो मच, और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिस्क की टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और इसी के साथ ईद की शुभकामनाएं वैसे तो हमने दे दी थी, बट स्टिल हमने कहा कि ईद एक दिन की थी लेकिन हम पूरा वीक जो है, क्योंकि सबको आने का टाइम तो नहीं मिला रिच पे, सबने ईद भी सेलिब्रेट करनी थी, इसलिए हम वीकेंड पे जो है वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली हर एक फर्नीचर पे। तो उसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं सभी को, और ईद स्पेशल जो है वो डील्स हम इस वीकेंड पे देंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि हैसली की सॉलिड वुड बेडरूम सेट्स, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफी टेबल्स, बहुत सारी एक्सेंट आइटम्स, मैट्रेसेस, मतलब घर की हर एक चीज जो घर को चार चांद लगा देती है वो आपको एक ही स्टॉप पे मिलेगी, विच इज रिच फर्नीचर प्लैनेट, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा, डिक्सी एंड मैथिसन के बिल्कुल पास, और यूनिट 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फोन नंबर हमारा है 905-232-7489। आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारे सेल्स रेप से बात भी कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है स्टॉक कलर ऑप्शंस के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना आपको, वो आपकी हर तरह से तसल्ली करवाएंगे। और साथ में एक सोफास की इंफॉर्मेशन दे दूं, लेट्स से आप सोफास कस्टमाइज करवाना चाहते हैं और उसमें कुछ भी कोई भी सीटिंग नैरो वाइड करानी है, या फिर आपने हार्ड फोम या सॉफ्ट फोम कुछ भी ऐसा कुछ चेंज करवाना है, लेग्स का स्टाइल चेंज कराना है, टफ्टिंग करवानी है, क्रिस्टल्स लगवाने हैं, बटन्स लगवाने हैं, कुछ भी कस्टमाइजेशन करानी है। और रूम में कई बार क्या होता है, कोई वॉल बीच में आ रही होती है, उसकी वजह से आप सोफा फिट नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए भी आपको पूरा वॉल टू वॉल वो है वैसे ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोफाज बनवा के देते हैं। इसके साथ हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आप 6 मंथ प्लान या फिर 12 मंथ पेमेंट प्लान विद 0% इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं। और साथ में जो मेन बात है, हमारा फ्लायर आपने देखा है जिसमें आपको इतनी सारी डील्स मिलेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम प्राइसेस पे ये डील्स कैसे। और ये सारी डील्स देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, विच इज रिट्स फर्नीचर प्लैनेट .ca, RITZ फर्नीचर प्लैनेट .ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि इसी में मिलेंगी ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स। एंड वंस अगेन एड्रेस प्लीज नोट कर लीजिए, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फोन नंबर है 905-232-7489, और बाकी के फोन नंबर्स आपको हमारे फ्लायर पे दिख जाएंगे। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारे सेल्स हमसे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, ईद मुबारक।
2: हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंद्र भाइयों, फैमिली के साथ जरूर पहुंचिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53, मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6477657657, और करंट फ्लायर्स देखने के लिए और डिटेल जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca। ये हिट वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
4: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू सुइट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai. MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: हाँ जी मेरे भाइयों, ये वो ही सर हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द इंडिया। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ट्रेड डेलीगेशन के साथ कनाडा पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने और इस साल के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA को पूरा करने पर सहमति बनी है। पीयूष गोयल जी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने BAPS स्वामीनारायण संस्था टोरंटो की मुलाकात भी की और मंदिर में जाकर दर्शन और आशीर्वाद लिए। वैश्विक दबाव के कारण भारतीय मुद्रा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है और यह 97 रुपये प्रति डॉलर के आंकड़े को छू रहा है। डॉलर की मजबूती और रुपये की कमजोरी के चलते अब भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों की डेली ओपन करेंसी पोजीशन पर नजर रख रहा है ताकि बाजार में अटकलों को रोका जा सके। IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ी खबर देते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। फ्रेंचाइजी जल्द ही नए कप्तान के नाम की घोषणा कर सकती है। कर्नाटक में नए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे जहां 10 जनपद पर उन्होंने मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बंदर भाइयों, एक और खबर सामने आ रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार में दोपहर 3 बजे के बाद अचानक भारी गिरावट देखने मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में आए इस तेज क्रैश के पीछे MSCI इंडेक्स की तिमाही रीबैलेंसिंग और ग्लोबल मार्केट के दबाव को मुख्य वजह माना जाता है। पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाने के लिए सरकार भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हाँ जी मित्र भाइयों, ये थी अराउंड द इंडिया टॉप खबरें, ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के लिए जरूर पढ़िएगा weeklyvoice.com।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844 தட்ஸ் 6478648844
1: ஆர் விசிட் teamsabarwal.com
2: யுவர் சர்ச் எண்ட்ஸ் ஹியர்.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009
4: Dr. Neil Gajar, 735 Twin Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009
5: Ritz Furniture, the message is

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
3: एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
2: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
4: हाँ जी मित्र भाइयों ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन आइए नजर करते हैं अराउंड कनाडा टॉप खबरें स्टैटिस्टिक्स कनाडा की आज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही क्वार्टर वन में कनाडा की जीडीपी में गिरावट आई है जिसका सीधा मतलब है कि देश टेक्निकल मंदी की ओर बढ़ रहा है इसकी चपेट में आ चुका है टेक्निकल रिसेशन अब मजेदार बात करते हैं मतलब साफ है बॉस अब टीम हॉर्टन्स की कॉफी पर जो एक्स्ट्रा डॉलर खर्च हो रहा था उस पर अब जेब कतरने वाली फीलिंग आएगी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ग्रोथ रुक गई है और यहां जनता सोच रही है कि ग्रोथ का तो पता नहीं पर बैंक अकाउंट का बैलेंस जरूर रुक गया है एक और खबर टोरंटो का सेंटिनियल पार्क हुआ अचानक चकाचक फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू टोरंटो की मेयर ओलिविया चो ने इटोबिको में सेंटिनियल पार्क में नए स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन किया यह पार्क फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग साइट बनने जा रहा है जिस पर $75 मिलियन का खर्च हो रहा है अब मजेदार बात 75 मिलियन इतने में तो हमारे इंडिया के कई शहरों में हर गली के कोने पर एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन सकता है खैर फुटबॉल प्रेमी खुश है कि रोनाल्डो और मेसी के पैर उसी ग्रास पर पड़ेंगे जहां कल तक लोग अपने डॉगी को टहलाने निकलते थे तरक्की इसी को कहते हैं ना और बहनर भाइयों एक और खबर सोशल मीडिया का नया रायता हवाई जहाजों से गिराए जा रहे हैं कीड़े अरे क्या बात है आइए खबर बताता हूँ ओंटारियो में इन दिनों टिक्स छोटे कीड़े जो काटते हैं उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है इस बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि सरकार आसमान से हवाई जहाजों के जरिए ये कीड़े गिरा रही है आज एक्सपर्ट्स को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि यह मजा एक बकवास कॉन्स्पिरेंसी थियरी है अब मजेदार बात वाह मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत में ही नहीं कनाडा में भी टॉप गियर में चल रही है सरकार के पास और कोई काम थोड़ी है कि वो टिकटॉक छोड़कर आसमान से टिक्स गिरवाएगी भाई मौसम बदला है कीड़े खुद आए हैं किसी पायलट ने आकर पार्सल ड्रॉप नहीं किया है और बहनों भाइयों एक और खबर सिगरेट के पैकेट पर अब और डरावने होंगे चित्र हेल्थ कनाडा का नया पैतरा वर्ल्ड नो टोबैको डे से ठीक पहले कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले हफ्तों में सिगरेट के पैकेटों पर और भी ज्यादा कड़े और डरावने वार्निंग मैसेज छापे जाएंगे जो अगस्त 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे अब मजेदार बात कनाडा सरकार को लगता है कि सिगरेट के पैकेट पर ये आपको बीमार कर सकता है लिखने से लोग डर जाएंगे उन्हें क्या पता स्मोकर्स इतने ढीठ हो गए हैं कि पैकेट पर भूत की फोटो भी लगा दोगे तो वो कहेंगे अरे भाई ये भूत वाले पैकेट की जगह कोई और भी चित्र लगा दो धुआं तो हम यूं ही छोड़ते रहेंगे और भूत को भी कहेंगे क्या सिगार पियोगे बहनर भाइयों धूम्रपान से दूर रहिएगा क्योंकि सरकार जो करती है हमारे भला के लिए ही करती है भलाई के लिए करती है ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन कनाडा की हर खबर weeklyvoice.com पर

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर हैं और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: जीविंदर भाई, यू डू वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन. आइए नजर करते हैं टीवी की दुनिया में कौन सी टीवी सीरियल्स रही टॉप पर इस सप्ताह. वसुधा नंबर वन पर. भाई साहब, यह शो जब से आया है टीआरपी चार्ट पर कुंडली मारकर बैठ गया है. शो में अमीर गरीब का वही पुराना ड्रामा चल रहा है, लेकिन दर्शकों को इसमें इतना मजा आ रहा है जैसे इन्हें हर एपिसोड के साथ फ्री नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा हो. इस हफ्ते नंबर दो पर गंगा मई की बेटियां. बैनर भाइयों, इस शो का नाम सुनकर ही लगता है कि आधा आधा पुण्य तो सिर्फ टीवी ऑन करने से ही मिल जाएगा. इमोशन का ऐसा सैलाब आता है कि दर्शकों को सोफे पर बैठने के लिए लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ जाए. हाँ जी बैनर भाइयों, गंगा मई की बेटियां बहुत खूब कर रही है. बेटियां आगे है और सास पीछे चल रही है. हाँ जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. नंबर तीन पर एकता कपूर का यह रिबूट वर्जन आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है. और तुलसी और मिहिर के खानदान में इतने ट्विस्ट आ चुके हैं कि अब तो खुद मिहिर को भी ये याद नहीं होगा कि इस जन्म में कितनी बार जिंदा होकर वापस आया है. तुम से तुम तक नंबर चार पर इस शो में ऐसा एज गैप और रोमांटिक ड्रामा चल रहा है कि सिंगल्स को देखकर वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाए. हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने में इतना वक्त लगाते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने वाला भी थक कर शायद सो जाता है. हाँ जी, तुम से तुम तक चार नंबर पर. और पांचवें नंबर पर याद है ना जो सीरियल सालों तक नंबर वन पर रहा, वो पहुंच गया है पांचवें नंबर पर. याद आया? नहीं आया? चलिए हम याद दिलाते हैं आपको कि कौन सी वो सीरियल है जो नंबर वन से बिछड़कर अब पहुंच गई है नंबर पांच पर. सही आपने सोचा, ये है अनुपमा. हाँ जी बिंदर भाइयों, ऐसा भी वक्त आएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था. अनुपमा नंबर पांच पर. और अनुपमा नंबर चार, तीन, दो और एक पर आने के लिए खूब मेहनत कर रही है. लगता है कि पिछले वाले जो कलाकार थे उन्हें शायद वापस भी बुलाना पड़े, लेकिन कोशिश तो ये हो जा रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आगे चलते हुए अनुपमा को आगे बढ़ाया जाए. हाँ जी, अनुपमा नंबर पांच पर. और अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अनुपमा नंबर पांच पर है इसीलिए अब अनुपमा में एक और ट्विस्ट आने वाला है. कौन सा ट्विस्ट होगा आगे वाले दिनों में पता चलेगा. लेकिन बैनर भाइयों, ये थी टीवी की दुनिया की टॉप फाइव सीरियल्स. ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन.
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545.
4: हाँ जी बेनर भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए चलते हैं टीम अरोरा रियल्टी की ओर. नंबर वन रियल एस्टेट एजेंट्स, टॉप रियल्टर्स इन ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा. GTA में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी हो, बेचनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर रियल एस्टेट की कोई भी एडवाइस चाहिए, एक बार टीम अरोरा के कप्तान परवीन जी से बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। नंबर टू डायल इज 416-910-8923, 416-910-8923, teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें। ओवर टू यू सर।
6: जतिन जी, मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिस्टनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि जतिन जी, मार्केट में अभी काफी अच्छी एक्टिविटी हो रही है और खास करके प्री कंस्ट्रक्शन में मार्केट में काफी एक्टिविटी है, तो आज मैं थोड़ा सा प्री कंस्ट्रक्शन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जतिन जी ये है, क्योंकि HST की वजह से जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं मार्केट में काफी एक्टिव हैं प्री कंस्ट्रक्शन वाली साइड में, और इसके साथ काफी इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन की साइड में। और आज मैं जो हम दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही अच्छे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। सबसे पहले तो मिसिसागा में लेक शोर के ऊपर जो एक 177 एकड़ की जो लेक व्यू कम्युनिटी बनी है साउथ मिसिसागा में, वहां पे एक प्रोजेक्ट है वो आ रहा है जिसमें के जो टाउन हाउसेज है स्टार्ट हो रहे हैं हाई 500s में। और ये जो टाउन हाउसेज हैं जतिन जी, बिकॉज इसका जो पहला प्रोजेक्ट फेज था वो एक ही दिन में सेल हो गया था लास्ट मंथ, और अब ये दूसरा फेज लॉन्च हो रहा है क्योंकि प्राइस पॉइंट इसका काफी अट्रैक्टिव है और लेक व्यू कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक एक पार्किंग साथ है इन टाउन हाउसेज के साथ। अगर हमारे कोई भी भाई बहन जो कि साउथ मिसिसागा में लेक के ऊपर रहना चाहते हैं और बजट उनका लिमिटेड है, तो उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हाई 500s में बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट है जो हम जून के महीने में जतिन जी लॉन्च करने वाले हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये नियाग्रा रीजन में है ये प्रोजेक्ट, और जहां पे भी टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज हैं, और ये जो टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज हैं विद बैकयार्ड, और इनका जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है वो है जी 499। स्टार्टिंग क्या कहूँ, इसका प्राइस ही 499 है क्योंकि ये 499 के ऊपर ही इनका प्राइस रहेगा। और ये जो प्राइस है इसमें जतिन जी 50,000 से 60,000 के ऐसे अपग्रेड्स हैं एज ए स्टैंडर्ड फीचर जो के बाकी बिल्डर्स हैं आपको चार्ज करते हैं उन फीचर्स के लिए। और इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है, आप 10,000 डिपॉजिट के साथ इस टाउन हाउस को बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर 2027 में इनकी क्लोजिंग्स हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है जतिन जी, इसके हम एक्सक्लूसिव ब्रोकर हैं। अगर हमारे कोई भी भाई बहन नियाग्रा रीजन में कोई टाउन हाउस देख रहे हैं और वो भी ब्रांड न्यू टू स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन हाउस विद बैकयार्ड जस्ट फॉर 499 विद $10,000 के डिपॉजिट के साथ। इसके साथ जतिन जी हमारे पास ओकविल में एक प्रोजेक्ट है, वहां पे हमारे पास डिटैच घरों की ऑप्शन है अगर आपका ओकविल में कोई इंटरेस्ट है, और ब्रैम्पटन में भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि डिटैच घरों की ऑप्शन है। अगर आप इन किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या आपको अभी इस चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही कि आज की डेट में प्री कंस्ट्रक्शन में बाय किया जाए या ना बाय किया जाए, एक बार आप हमें कॉल करें, एटलीस्ट एक बार हमारे साथ मुलाकात करें, हम आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। नंबर है हमारा जतिन जी 416-910-8923, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं teamarora.com। थैंक यू जतिन जी।
4: परवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों, एक बार तो बात और मुलाकात बनती ही है। 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
7: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं

0: today. Dr. Neil Gajjar Associates and Specialists, Family Dentists, caring for all your dental needs, accept कर रहे हैं patients जिनके पास CDCP यानी कि Canadian Dental Care Plan है. अगर आपने ये plan receive नहीं किया है और आप eligible है तो इस plan में enroll होने के लिए visit करें CDCP website. CDCP की website visit करके enroll हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले. 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट.
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
0: हाँ जी मित्र भाइयों, जीडो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. कितना हसी सफर है, कितना हसी है मौसम, लेकिन मित्र भाइयों, फैमिली के साथ क्या रिड्ज फर्नीचर का सफर आपने किया? जरूर उस तरफ जाइएगा. रिड्ज फर्नीचर की टीम मुस्कुराते हुए करेगी आपका स्वागत और आप वहां फर्नीचर और उसकी प्राइजेस और क्वालिटी देखकर चेहरे पे लाएंगे मुस्कान. रिड्ज फर्नीचर पर जरूर पहुंचेगा, जबरदस्त सेल लगी है आपके लिए. आइए सीधे चलते हैं वहीं पर ज्यादा जानकारी लेने. बात करेंगे हिमानी जी से. हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में. प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं, रिड्ज फर्नीचर प्लेनेट क्या जबरदस्त प्रमोशंस आपने किए हैं, क्या जबरदस्त सेल लगाई है? प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट कीजिए. ओवर टू यू.
2: जी, थैंक यू सो मच. और सबसे पहले रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर्स को रिच की थीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. और इसी के साथ आपको ये बता दें कि ईद जो है, ईद स्पेशल जो सेल थी वो हमने पूरा वीकेंड तक कंटिन्यू करने का सोचा है और संडे इवनिंग तक आपको ये डील्स कंटिन्यू मिलेंगी जो हमारे फ्लायर पे पोस्टेड हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिच फर्नीचर का फ्लायर आपने देखना है और फ्लायर देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट नोट करनी है, विच इज रिच फर्नीचर प्लैनेट .ca. RITZ फर्नीचर प्लैनेट .ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर जरूर चेक करना है, क्योंकि उसी में मिलेंगी आपको ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स, जिसमें आप ले सकते हैं बेडरूम सेट्स, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफी टेबल्स, मैट्रेसेस, एक्सेंचर्स. हर एक आइटम जो घर को चार चांद लगा देती है वो देयर इज ओनली वन स्टॉप टू बाय, विच इज रिच फर्नीचर प्लैनेट, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा, यूनिट 53. और साथ में अगर आपको सोफाज कस्टमाइज करवाने हैं, विच इज कि अगर आपको उसमें कुछ लगाना है, क्रिस्टल्स लगवाने हैं टफ्टिंग के साथ, बटन्स लगवाने हैं, या फिर आपको कोई लेग्स का स्टाइल चेंज कराना है, या और फिर आपको सीटिंग नैरो वाइड करानी है, कोई अपने रूम की मेजरमेंट के हिसाब से आपको कोई साइज बड़ा छोटा करना है सोफे का, तो एल शेप सेक्शनल्स में भी आपको मतलब कैसी भी कस्टमाइजेशन चाहिए, हर तरह से जो हमारी सेल्स टीम है, देयर एक्सपर्टीज आपको हर तरह से सेटिस्फाई कराएंगे. और साथ में हमारे पास फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप 6 months या फिर 12 months पेमेंट प्लान ले सकते हैं, विच इज 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, सो विच इज वेरी बेस्ट ऑफर. एंड वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा. और फ्लायर देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है रिच फर्नीचर प्लैनेट .ca, RITZ फर्नीचर प्लैनेट .ca. एंड फोन नंबर हमारा 905-232-7489. और सैटरडेज एंड संडेज वी आर ओपन टिल 6:30, सो वी विल वेट फॉर यू. और चाय और रिफ्रेशमेंट हमारे इस तरफ से होगा, ईद स्पेशल है सो वो विल सेलिब्रेट टुगेदर एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू गाइस, सो मोस्ट वेलकम एट रिच फर्नीचर प्लैनेट. थैंक यू सो मच.
0: हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कितना हसी है मौसम, तो इस हसीन मौसम में रिड्ज फर्नीचर जरूर जाइएगा. 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा. रिड्ज फर्नीचर प्लैनेट .ca है वेबसाइट, और कॉल भी कर सकते हैं 6477657657. ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन.
3: another

हाँ जीवेंद्र भाई, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। बंदर भाइयों, एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा, एक सीधा गिरा। जो आड़ा गिरा वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस नदी को रोक रूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए मैं इस नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं पर रोक दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान बनाई थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगी। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। वह ये कहता था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे मिशन तक पहुंचा दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था, वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है, वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन गया जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत की कोई संभावना नहीं है, और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार की कोई संभावना नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है, और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास करता है वो मूर्ख है, क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, नहीं रुक सकता है। वह अज्ञान में है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खता करता है। बंदर भाइयों, सुख की धारा जितने दिन बहती है उतने दिन तक बहकर ही रहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। हम जिंदगी में सीधे हो या आड़े हो, जिंदगी को तो बहने ही वाली है, हमें जिंदगी के साथ बहते जाना है, बस मुस्कुराते हुए। ये थी जिंदगी की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

मीट अगेन ऑन द डे जो आज सिर्फ इसलिए नहीं है यहाँ चर्चा में क्योंकि ये फ्राइडे है या क्योंकि सूरज ज्यादा चमकते रहे या मुस्कुरा मुस्कुरा के, पर इसलिए भी क्योंकि टुडे इज टोरंटो का न्यू कमर डे. बोले तो स्वागत करता देन टू ऑल न्यू कमर्स हियर, बाहें फैलाए. अपना टोरंटो इज इन वेलकम मूड एंड वॉन्ट टुडे टू सेलिब्रेट 12th एनुअल टोरंटो न्यू कमर डे एट नेथन फिलिप स्क्वायर, वही जगह जहां सब लेते हैं फोटो विद द टोरंटो साइन टू शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बैक होम. क्या आगे भाई हम तो अपन यहाँ कनाडा में. मेला लगा था आज वहाँ 10 से 3 के बीच में विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर न्यू कमर्स जिसे वो एट होम फील कर सकें और बहुत सारी जानकारियों ने अपनी आगे की यहाँ जीविका के लिए मिल सके. हालांकि सीएन टावर आज चमकेगा इन ब्लू कलर टू मार्क वर्ल्ड मेलानोमा मंथ. वीकेंड है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस्टिवल भी होते रहेंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन डिलेज होंगे, कुछ रास्ते जैसे कि डीडीपी गार्डनर संडे को बंद भी होंगे फॉर बाइक फॉर ब्रेन हेल्थ. वीकेंड है प्लस वेदर ऑसम तो यू भी मन में रहती है फुल ऑन उमंग एंड तरंग है ना. सो ऑन दिस आज का दिन दिलाता है याद कभी हम भी थे न्यू कमर यहाँ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक ऑल द न्यू कमर्स फील एट होम बींग हेल्प्ड टेकन केयर ऑफ लाइक यू नो हम सभी ने भी उम्मीद की थी तब वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि घर छोड़ा देश छोड़ा नया ख्वाब सजाने को बहुत कुछ छोड़ा लाखों मुश्किलें झेली और शहर को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ा किया. पर सच सच बताना क्या आप टोरंटो का विंटर भी आपको लगने लगा है अपना सा सुहाना सुहाना या आज भी ढूंढता है दिल वही अपना पुराना ठिकाना सा.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.
9: Jum chikum kuch kum jum chikum.

हर फिल्म में ये गाना खास डेडिकेटेड था टू माउंट एवरेस्ट. अब देखो ना, लोग प्यार में गाने लिखते हैं या माउंट एवरेस्ट के प्यार में गाने लिखे गए. फिल्म थी ऊंचाई जहां मैसेज था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो या आपकी बकेट लिस्ट में कुछ और है जो आपको करना रह गया है. रह गया है तो उम्र का मुंह क्या देखना. खुद को एक मौका देना तो भाई बनता है ना. वैसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक इसे कहते ही हैं, अबव सी लेवल वाली, ऑब्वियसली अबव सी लेवल, क्योंकि बिलो सी लेवल में तो हवाई के माउंटेन का नाम आता है ना. और कोई 88.48 मीटर्स टॉल बताया गया था जब लास्ट ईयर 2020 में मेजर हुई थी. एंड उम्र 60 मिलियंस यंग, क्या बात है. पर बात ना सिर्फ यही नहीं ठहरती, क्योंकि इट्स ऑल्सो माउंटेन ऑफ ब्यूटी, कल्चर एंड हिस्ट्री. एंड यस, जहाँ खतरे की कभी कभी जोर से बज सकती है घंटी, आप जब चढ़ रहे होते हैं, जो चढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है वेदर. बाकी स्पिरिचुअलिटी की भी बात से कनेक्ट करते हैं लोग इसको कहीं ना कहीं. बट मैं ये देख रही थी कि इसका नाम कहाँ से आया, तो देखा पीक 15 इसे पहले कहते थे, पर फिर 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उनके नाम पर इसका नामकरण हो गया. इनफैक्ट नेपाल में तो इसे सगर माता के नाम से बुलाते रहे हैं, ये मुझे पता था, कांश की देवी मतलब होता है जिसका, या पीक ऑफ द हेवन. तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से, मतलब पहाड़ों की देवी माँ. और जब गॉडेस मान रहे हैं इतनी भाषाओं में, देशों में, तो सेक्रेट भी तो मानते ही होंगे, है ना. और इसीलिए परमिशन सेफ्टी के अलावा जाने के लिए चाहिए होती है समिट जब करना हो. बकायदा बेस कैंप पर पूजा होती है बिफोर यू पुट योर फीट ऑन टू द माउंटेन. एक रिचुअल है प्रॉपर. हालांकि हम सभी ने यू नो रट रट के एग्जाम्स में लिखा है कि एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड से, अलोंग विद टेंजिंग नॉर्गे फ्रॉम नेपाल, वो पहले थे विद अ सक्सेसफुल समिट जो आज के दिन May 29 को 1953 रिकॉर्ड हुआ. एंड दैट्स वाई Day today is also International Mount Everest Day. पर बहुत लोगों का मानना है कि रिकॉर्ड पहली बार तब हुआ. इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था, किसी ने किया नहीं ऐसा. पॉइंट. एनीवे, फास्टेस्ट समिट का रिकॉर्ड जो है वो 10 घंटे 56 मिनट्स का है. और यंगेस्ट जाने वाला 13 साल का बताया जाता है, ओल्डेस्ट 80 साल का. इन शॉर्ट, जुनून उम्र कहाँ देखता है ना. उड़ने का ख्वाब लिए ये मन का परिंदा खुले आसमान में उड़ ही जाता है.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच। ऑलराइट, इस वीक बहुत सारी फिल्में सिनेमा का मुंह देख रही हैं, तो धीरे धीरे बताती जाती हूँ कौन कौन सी हैं, क्या हैं, सो दैट यू कैन चूज टू वॉच इफ यू लाइक देम एनफ, सुनने के बाद, है ना। तो पहले तो है जैकी श्रॉफ की बच्चों वाली फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। अनकन्वेंशनल साइफाई कॉमेडी है, थ्रिलर है, कहानी है बच्चों के ग्रुप की जो दादाजी को सुपर हीरो बनने के लिए प्रेरित करते हैं जब गांव में एक एलियन का आगमन हो जाता है। बेसिकली एक बच्चा है जो नए स्कूल में फिट इन होने के लिए वहां पे बैठ मार देता है, कहानी सुना देता है कि भाई मेरे दादा तो सुपर हीरो हैं, पर बच्चे कहां बच्चे रह गए, कहते हैं ऐसे नहीं मानेंगे, पहले सबूत दो। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, ये सच बोल रहा है, मैं हूँ सुपर हीरो, पर मेरी पास तभी किक इन करती है जब कोई एलियन पृथ्वी पर अटैक करता है, एंड मजे की बात वो भी हो लेता है। तो बच्चों के साथ ही डेफिनेटली फिल्म देखी जा सकती है, आफ्टर ऑल सुपर हीरो फैंटेसीज समझदारों में कहाँ ही चलती हैं। वेल, फिल्म के रिव्यूज ओवरऑल अच्छे हैं, स्वीट सिली नॉस्टैल्जिक इसे बताया जा रहा है। यूं भी बच्चों की अच्छी फिल्में बनती नहीं हैं आजकल, बहुत मुश्किल से कोई कोई दिखती है। हालांकि VFX इफेक्ट्स जो हैं बहुत ग्रेट नहीं है, सेकेंड हाफ कह रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग भी कम है देन फर्स्ट हाफ, बट ओवरऑल आई थिंक इट कैन बी योर पिक, स्पेशली इफ यू हैव किड्स।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353 दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353 647-453-5353
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
2: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate saving sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी उर्दू पंजाबी और तमिल में विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर Wayne's Auto Group.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच।
2: अच्छा, द ग्रैंड सुपर हीरो के अलावा एक और फिल्म रिलीज हो रही है, जीना दिल से। इसका टाइटल है, यूथफुल है, म्यूजिकल कॉमेडी है जिसके फोकस में है प्यार व्यार, दोस्ती वस्ती, ढेर सारे इमोशंस, थोड़ा सा पागलपन और खूब सारी मस्ती। कहानी दोस्तों के एक क्रेजी गैंग की है जिनकी लाइफ जो होती है ना, वो ऊपर नीचे हो जाती है ड्यू टू सम केओस जो क्रिएट होता है हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। राज की बात यहां से वहां शिफ्ट जब होती है, चाइनीज विस्पर्स की तरह जब फैलती है, तो कुछ की कुछ कहानी बन के पहुंचती है ना। होता है हम सबकी लाइफ में। यूथफुल है तो रोमांस वाला एंगल भी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ इज बेस्ट लिव्ड जब उसे बिना डरे खुशी खुशी जिया जाए पूरे दिल से, वरना ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हाँ, नटवरलाल कह के गए है ना। फिल्म कैन बी अ फील गुड ब्रीजी वन, ऐसे रिव्यूज कहते हैं, जो हंसाएगी और कुछ समझाएगी भी। ओवरऑल रिव्यूज ओके हैं। जीना दिल से को आप देख सकते हैं समय निकाल के।
3: पर

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: authorized Honey Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at RajdhaniSweets.ca.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: Find out high spring special mortgage rates and extra promotion ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cash back from bank and special gift from Amit Khurana, up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit. 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.com.
3: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16th तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
5: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
4: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
6: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

first sound that comes out of our mouth जब पिनविंच कभी चुप जाता है. बाकी ये जो पेपर क्लिप्स होते हैं ना, ये बहुत सेफ रहते हैं क्योंकि ब्यूटीफुली कर्व्ड होते हैं. दैट टेल्स की स्ट्रेंथ जो होती है ना सबको होल्ड करने के साथ साथ, स्पेशली इन हैवी एंड एडवर्स सिचुएशंस, वो भाई तन को सीधा खड़े रखने में नहीं, कर्व्स में होती है कई बार. पर अगर ये ही पिन कभी खुल जाते हैं तो बंद ताले और छेद खुलने के काम भी आते हैं, है ना. वेल, नेशनल पेपर क्लिप डे है आज और मैं जिज्ञासु जीव इसके बारे में पढ़ने लग पड़ी तो सोचा आपसे भी कुछ शेयर जरूर करूं. ये बेंट वायर पेपर क्लिप का पहला यूसेज मेरे सामने आया सैमुअल फे के द्वारा किया गया. म्यूजियम के टिकट जो थे उन्होंने फैब्रिक से क्लिप करे थे कि कहीं खो ना जाए. इन 1867 पहला पेटेंट हुआ, फिर धीरे धीरे डिफरेंट पेटेंट्स आए, डिफरेंट यू नो डिजाइन आए, न्यूज़पेपर के लिए आए क्लिप करने के लिए साथ साथ. बट मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे मिली पेपर क्लिप प्रोजेक्ट की, करूँ शेयर. तो वेल बताती हूँ. टेनेसी के एक स्कूल में बच्चों को होलोकास्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था, 90s की बात है, और बताया गया कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लोग इसे पहनते थे एज अ सिंबल ऑफ डिफाइंस, लाइक यू नो स्टिकिंग टुगेदर, पर्टिकुलरली नॉर्वेजियंस जो थे. इनफैक्ट उस समय जो नाजीज थे उन्होंने इसी कारण से पेपर क्लिप बैन भी कर दी थी. तो 1998 में टेनेसी के स्कूल ने कुछ ऐसा किया कि वहां के जो बच्चे थे ना, 6 मिलियन पेपर क्लिप्स उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत कलेक्ट की. एक पेपर क्लिप फॉर 1 life lost. नाउ दिस प्रोजेक्ट गेन्ड गुड अटेंशन ग्लोबली. 30 मिलियन से ज्यादा पेपर क्लिप्स कलेक्ट हुई बाय 2001, यानी कि विद इन 3 years. और फिर जो बुक थी ना 6 मिलियन पेपर क्लिप्स, उसके ऑथर पीटर एंड डेगमार, उन्होंने जर्मन रेल रोड म्यूजियम से एक रेल कार खरीदी और इस स्कूल में भेजी. जानते हैं क्यों? टू हाउस ऑल 30 मिलियन पेपर क्लिप्स. इन शॉर्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल स्टफ, है ना. वैसे मैं ये सोच रही थी कि हमारी लाइफ में भी ना दो चीजें हैं जरूर से जो हमारी लाइफ की पेपर क्लिप हैं. एक तो भाई माँ, है ना, जो हम लड़ते मिड़ते भाई बहनों को, पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखती हैं क्लिप्ड एकदम. और एक प्यार, वही तो होता है ना जो जानता है कि कुछ भी हो जाए हम साथ साथ हैं.

movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkad's Weekend Watch. राइट तो वीकेंड वॉच में आगे मैं बताने वाली हूँ अबाउट एक और फिल्म दर्शी सफारी की है वो कृष्णा और चिट्ठी इस फिल्म का टाइटल है. काफी इंटेंस ड्रामा है इमोशनल त्याग पैशन और देन क्रिकेट मैच के खेलने के जज्बे से भरपूर है. स्टेडियम की शोर से खामोशी तक का सफर जो सिर्फ खेल नहीं है किसी के लिए एक उसकी डेस्टिनी भी हो सकती है. कहानी एक पंडित जी की जिनकी एक जमीन है कश्मीर में जिस पर वो मंदिर बनाना था उन्हें क्योंकि ग्रांटेड थी जमीन मंदिर के लिए पर वहां पर एक करप्ट एमएलए है जो उस जमीन पर मॉल बनाना चाहता है. तो पंडित जी को चैलेंज करता है इसलिए कि चलो वहां पर एक काम करते हैं क्रिकेट मैच रखते हैं जो जीता जमीन उसकी. लगान फिल्म याद आ गई ना मुझे तो आ गई. पंडित जी का बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है सचिन तेंदुलकर का फैन है और लोकल मैच खेलना उसे अपनी इज्जत कम मालूम देता है. यू नो ये लोकल मैच मैं नहीं खेलता. पर फिर क्या होता है उसके पास एक चिट्ठी आती है जिससे कहती है खेलो. मालूम है वो चिट्ठी किसकी होती है सचिन तेंदुलकर की. अब आइडियल ने उसके कह दिया फिर तो खेलना ही है ना. अब उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको कृष्णा की चिट्ठी पढ़नी होगी मतलब फिल्म देखनी होगी. फिल्म देखिए आप फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. आगे और भी बताऊंगी अभी कुछ और फिल्में जो हो रही हैं रिलीज उनके बारे में.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कर। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkar.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
3: Another Don Clean with the Don Dux.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स It deserves.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Retro in Metro, Nukkad Classics.

just released Broadway's On. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच. वीकेंड वॉच के लास्ट सेगमेंट में आते हैं हम. कृष्णा की चिट्ठी पढ़ने के अलावा, जीना दिलसे के डिसीजन के अलावा, सुपरमैन दादा के कारनामे देखने के अलावा, देयर आर फ्यू मोर दैट यू कैन वॉच. साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एक जिसका नाम है ऑब्सेस. मतलब कैसे एक सड़क पर ड्राइव करते हुए छोटी सी झड़प बन जाती है वायलेंट एंड डेंजरस गेम ऑफ सर्वाइवर्स, उसकी कहानी. तो एक खूनी है इसमें जो अनस्टेबल डिस्टर्ब है मेंटली एंड इमोशनली. उसके पास अपने बॉस से मैसेज आता है अब्यूसिव सा कि भाई तुम्हें ड्रंक ड्राइविंग के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है. उसे बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा सा बेइज्जती भी फील करता है और गुस्से में वो जाकर सीधा बॉस का मर्डर कर देता है. एक लड़की है जो कि सिंगल मॉम है, अपने बच्चे को के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और अपनी माँ के पास जा रही है वो, और दोनों सड़क पर मिलते हैं. रोड रेज एनकाउंटर जैसे कहते हैं, लड़ाई होती है. बंदा उस लड़ाई को दिल पे ले लेता है और शुरू होता है फिर चूहे बिल्ली का खेल. ओवरऑल रिव्यूज ऐसे ही हैं, नॉट ग्रेट. आई वुड नॉट वॉच इट, पर जिनको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखना अच्छा लगता है और जगह ना जिसमें एक रेस चल रही है, तू आगे मैं पीछे, मैं आगे तू पीछे, उनको शायद अच्छी लग सकती है. रादर मैं देखना चाहूंगी ये एनिमेटेड 3D फिल्म, बच्चों की है, रिटर्न ऑफ द जंगल नाम है. जोश दोस्ती ताकत ये इसकी टैगलाइन है. ये मैं देखना चाहूंगी, दिल तो बच्चा है जी, है ना. अ परफेक्ट फैमिली फ्रेंडली वॉच विद अ क्यूट मैसेज एंड स्टोरी थ्रू जंगल विजडम एंड इंटरेस्टिंग क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने बात करी है. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, यंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं और साथ में एनिमल्स भी हैं, पर है सारा एनिमेशन ही. मिल मिलकर एक कहानी बुनते हैं जिसमें मजा आएगा आपको. मुझे ट्रेलर बड़ा क्यूट लगा और इसके गाने भी बड़े अच्छे अच्छे से, जैसे होते हैं ना उसके जंगल बुक के वैसे से कहानी गाने हैं. कार्टून फिल्मों का शौक जिन्हें है कहीं दबा छुपा सा भी, मुझे लगता है उनको ये मिस नहीं करनी चाहिए. नाम है रिटर्न ऑफ द जंगल, जोश दोस्ती ताकत.

Welcome back. आप सुन रहे हैं CMR at 5 PM स्वाति और हासिल के साथ on 101.3 FM and trending today is also hashtag ये जवानी है दीवानी अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर DDLJ ऑफ दिस जनरेशन एंड यस ये जवानी है दीवानी ऑफ फॉरएवर ऑल टाइम दिल से जवान जनरेशन. बाकी वो भी है ना कि जब भी ये फिल्म मैं देखती हूँ फिल्म का वो डायलॉग एक्चुअली इस फिल्म के लिए ही फील करने लगती हूँ कि अगर तुम्हें थोड़ी देर और मैं देखती रही ना तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से. और ब्रेकअप के बाद भी मैं ये देख रही थी कि इतनी सॉलिड केमिस्ट्री दो जनों की हो सकती है वो वाकई ऑसम है इस फिल्म में. वेल मूवी डेफिनेटली हैज अ रिपीट वैल्यू एंड सेम गोज विद द सॉन्ग्स एज वेल. बट द मीन्स द कमिंग अप नेक्स्ट.

Well, ये था 90s की इश्क से, जहाँ काजोल थी, आमिर थे, पर फिल्म में वो आपस में इश्क विश्क में बिल्कुल नहीं थे. इनफैक्ट इतना लंबा करियर उनका रहा आपस में, जब उन्होंने काम किया एज लीड पेयर टुगेदर, वो जाकर किया उन्होंने इन 2006 की फना में, विच वॉज रिलीज आज ही के दिन टुडे, एंड इट वॉज अ सुपर हिट फिल्म. काफी अवार्ड भी मिले थे इसको. कहते हैं जब आमिर वॉज आस्क्ड कि तीन चॉइसेस बताओ फॉर द गर्ल्स फॉर द रोल ऑफ जूनी, तो आमिर खान सेड काजोल, काजोल एंड जस्ट काजोल. वेल, फिल्म का मेरा फेवरेट गाना इज देखो ना, वो बारिश वाला गाना. पर कहते हैं ना, सिफारिशों का जमाना है, तो चांद की सिफारिश को कैसे ठुकराऊं? बोले तो.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन. टेलीफोन 9057999400.
4: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
5: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison Street.
6: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
5: Member of Wayne's Auto Group.
7: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

0: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग पर साधारण इंसान है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हुंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकला है उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हुंडई कार लेते हैं ना तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हुंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: जले।
1: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16th तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
3: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को।

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: Winters में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. Tune in to your favorite radio in GTA. CMR 101.3 FM.

ब्यूटिफुल से लिरिक्स. और ये गाना मुझे इसीलिए भी खास बहुत पसंद है, बहुत ही रिलेटेबल एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. और लिरिसिस्ट हैं योगेश. इनके गाने ना बहुत ही उलझुलझी बातों और फीलिंग्स को बहुत ही सरल सीधे तरीके से कह डालते थे. एंड दैट वॉज द खूबी. वो खुद ये कहते थे कि जो देखता हूँ जीता हूँ वही लिख देता हूँ, अपने आसपास के लोगों को जिंदगी को ऑब्जर्व करता हूँ और लिख देता हूँ. कहते हैं जब फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिला था ना, तो फर्नीचर शॉप पर वो काम करने लगे और मालिक से ये कह दिया कि देखो प्लीज किसी को पता ना चले. पर तब उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनका नाम सत्तू बताया जाता है, उन्हें पता चल गया. एंड ही केम एट द स्टोर. और तब योगेश जी से लिपट कर वो खूब रोए कि यू आर मेड टू राइट, सिर्फ लिखो, ये सब मत करो. अ फ्रेंड हु बिलीव्स इन यू. वो लकी थे मेरे ख्याल से कि ऐसा दोस्त उन्हें मिला. और तब योगेश जी के सहन में जब वो लिपट कर रो रहे थे ना, कुछ ऐसे ख्याल आए जो बाद में इस फेमस गाने का हिस्सा भी बने, कि कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते और कहीं से निकल आते जन्मों के नाते, है ना. आनंद, रजनीगंधा, छोटी सी बात, इन सभी फिल्मों के जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाले गाने हैं, दे विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स लाइक योगेश जी विल. दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद दिस वन ऑफ द जेम ऑफ हिज राइटिंग्स.

0: लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
0: सिटी ऑफ ब्रैम्पटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रैम्पटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है। इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप खिलौने लेकर आएं। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/eid पर लॉग इन हों। अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: To Talawatti ko call mila.
1: Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
7: टोरंटो तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25, 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777। ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
2: कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है, और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577। द बेस्ट गोरमे पिज्जा विद बेस्ट प्राइसेस, पिज्जा पॉप 3075 रिचवे ड्राइव मिसिसागा, और विजिट pizzapop.ca। फैमिली के साथ डाइन इन करें या टेक आउट, बच्चों और बड़ों सभी की पहली चॉइस पिज्जा पॉप। लजीज और मजेदार तंदूरी चिकन पिज्जा, चीज स्टेक पिज्जा, चिकन शवरमा पिज्जा। एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफर, लार्ज तंदूरी चिकन पिज्जा, लार्ज चीज पिज्जा, टू डिपिंग सॉस, थ्री कैंस ऑफ पॉप फॉर $24.99 ओनली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक आउट ऑर्डर कॉल 905-828-0985। इट्स 905-828-0985। पिज्जा पॉप 3075 रिजवे ड्राइव मिसिसागा। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500, और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600, क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
8: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
9: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। एक बार फिर आपको ले चलेंगे मीडा फर्निश होलसेल गैलरी और जनाब लंदन ओंटेरियो की कल ओपनिंग होने जा रही है इनकी लोकेशन की 3075 वंडरलैंड रोड साउथ यूनिट डी। और पांचों लोकेशन के लिए मैं भी चार कह गया, पांचों लोकेशन अब इनकी मिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन ओंटेरियो। 4169012810 मीडा फर्निश .com इनकी वेबसाइट है। बहुत स्पेशल कल के लिए बहुत जबरदस्त डील्स हैं और अगर आपका इस वक्त है तो लंदन टेरियो चले जाइए आप जनाब, बहुत से रिफ्रेशमेंट्स भी हैं और आपके लिए बहुत से तोहफे भी हैं। मेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। मेरा साहब वेलकम यू अगेन सर।
10: हाँ थैंक यू भट्टी साहब, और जैसे आपने कहा कि ग्रैंड ओपनिंग की पूरी लहरें बह रही हैं, लंदन में मैं हूँ, देखो आज ही बहुत सारे परिवार फैमिलीज आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये

0: कोई भाई नए मई कोई बहन भाई इमिग्रेंट आया, किसी बच्चे ने अभी शुरुआत करी है, या जो बहन भाई कहते हैं ऊपर वाले की बरकत है, वो माइकल अमीनी के भी मतलब हमने रखे हैं। तो मैं डील देने जा रहा हूँ, एक सोफा लव और चेयर तीन पीस हम लाए हैं, और उसमें वैसे सस्ते भी आते हैं भट्टी साहब, वो मतलब 799 के भी होते हैं, पर मैं जब बहन भाई कहता हूँ चले ही ना, जो 6 महीने के अलावा जो साल के बाद खराब ही हो जाए तो 800 लगाने का फायदा क्या। तो हमने इम्प्रूवमेंट करके 999 में परफॉर्मेंस फैब्रिक लगा दिया ताकि अगले 5-7 साल आपके खराब ही नहीं हो। तो अगर आप प्राइस पॉइंट ढूंढ रहे थे, सोफा भी, लव सीट भी, चेयर भी, कंडीशन यही है कि आपको तीनों पीस इकट्ठे ही लेने पड़ेंगे, तो मैंने कंटेनर ही ले लिया और कॉस्ट पे लगा दिया। तो कनेडियन मेड में तो मिड्डा फर्नीचर की कहते हैं भी, मैं वैसे कहते नहीं घमंड ना हो जाए, मान है कि हमें वो वॉल्यूम जो हम लेते हैं 599 का सोफा, सारी उम्र फ्रेम खराब नहीं होता, हार्ड फोम डाली हुई है, और आपको फिर एक और मजे की बात है, ग्रैंड ओपनिंग खुशी में दूसरी लोकेशन पे भी 4 मॉडल की चॉइस दे रहा हूँ, 4 मॉडल की चॉइस भी दे रहा हूँ, ताकि किसी बहन को वो लगता है कि ये राउंड आर्म नहीं चाहिए थी, स्ट्रेट वाली नहीं चाहिए थी, डिजाइन ये चाहिए था, फैब्रिक ये चाहिए थी, वो भी कर रहे हैं। एशले फर्नीचर के 5 मॉडल आपको दे रहा हूँ, 599 के दे रहा हूँ, वो भी सोफा आपको दे रहा हूँ। हमने मेपल वुड के बेड एड करे, और जो MDF जैसे हार्डवुड भी कहते थे भट्टी साहब, तो हार्डवुड में सारे बहन भाइयों को पता है कि जो रेलिंग होती थी ना वो खराब हो जाती थी, रेलिंग वो ऐसे पहिए से लगे होते थे, कुछ आपने थोड़ा भारी रखा और टूट जाता था मतलब अपने। तो हमने एक्सटेंशन ग्लाइडर बोलते हैं स्टील के, मतलब 1-2 ड्रॉर को $24 के लगते हैं, आपसे प्राइस हमने मैन्युफैक्चरर को निचोड़ा है कि आप भी कॉस्ट पे दो हम भी कॉस्ट, आप आके देखेंगे तो प्राइस थोड़ी सी तो वो जो मतलब जो 799 का था वो 899 का हुआ, जो होना चाहिए था 1299 का, लेकिन उसकी क्वालिटी अगले आप फिर 10-15-20 साल बेड खराब नहीं होगा आपका मतलब अपने। तो वो हमने कोशिश करी है कि मेरे बहन भाइयों के घर में फर्नीचर उम्दा क्वालिटी का जाए, लंबा चलने वाला जाए, और जो प्राइस देखें बड़े कारपोरेट स्टोरों से तो उनको 30-40% बचत भी हो। टॉप ग्रेन लेदर की बात हमने पिछले लिंक में करी, टॉप ग्रेन लेदर जो है वो आपको सोफा आपके घर में 1299 का, और 1399 में ऑल ओवर लेदर की मैं बात कर रहा हूँ, 7 कलर की चॉइस भी कर रहा हूँ जो आपको सेक्शनल चाहिए, या एशले के तो कोई मॉडल नंबर आप ट्राई करके आए, हाँ कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल लिखे होते हैं वो हमारे पास नहीं होते क्योंकि उन्हीं कोई एक्सक्लूसिव वाला वो होते हैं, लेकिन बिना एक्सक्लूसिव के लिखा हुआ आप ही प्राइस पता करके ले आए, और ये सोच के आ जाए कि भाई के स्टोर पे 10-30% और सस्ता मिल जाएगा, जो कंटेनर में आता होगा वो 30% सस्ता होगा, नहीं तो 12-10 जी मैं मुझे भी 10 ही रटा हुआ है, 12% सस्ता होगा। अब तो 5 लोकेशन हो गई है, और हमने जो गिफ्ट आपको दे रहे हैं, गिफ्ट हमारे फ्लायर पे देख लें कि जैसे 500 की परचेज तक, फिर 1000 के बाद वाली परचेज तक, फिर 2000 के बाद वाली पर, और 3000 प्लस पे तो 2 गिफ्ट दे रहे हैं $500 रिटेल वैल्यू में, रिटेल वैल्यू बोल रहा हूँ, हमें भी 3-350 के तो आते ही होंगे, तो अगर आप कहोगे नहीं भाई हमें तो चाहिए ही नहीं, आपको वो कैश बैक भी वापस कर देंगे। तो हमें आपको बहन भाई वाला रिश्ता बनाना ना भट्टी साहब, कि 500 वाला सुना, 500 के रहे आते तो होंगे ना 380 के आसपास हमें भी, तो 380 अगर आप नहीं लेंगे तो वाई नॉट, हम तो स्पेंड कर ही रहे हैं, आश्रय से भी आश्रय को भी पे करके ले रहे हैं, आप बहन भाइयों को कम करके दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि गिफ्ट भी आपको घर पहुंचे, अगर आपको नहीं चाहिए कई बार अगर नहीं चाहिए कई या कुछ और आपको इक्वलेंट अमाउंट का चाहिए तो वो दे देंगे, नहीं चाहिए तो पैसे कम करके दे देंगे, तो तभी तो रिश्ता बनेगा, तभी तो हमारा बना हुआ है, और रिश्ते को आप सराहते हैं, मुझे भी रेडियो पे अच्छा लगता है कि जो दिल में है वही जुबान पे आए, तो क्योंकि कोई हेरा फेरी गिमिक से दूर हमने रहा रहे हैं, परमात्मा ऐसे ही हमें बना के रखे कि हम भी आप भी ऐसे सराहते रहें, आप भी ऐसे अप्रिशिएट करते रहें, और हम भी आपकी दिखाई हुई राह पे चलता रहें। तो मिड्डा फर्नीचर और भट्टी साहब ने मुझे कहा था कि ईद की सेलिब्रेशन तो ट्यूजडे से लेके पूरे वीकेंड तक रहेगी, तो दोबारा से भट्टी साहब आपको, आपके परिवार को, और मैं ये कहूंगा ये आपका और मेरा दोनों का एक्सटेंडेड फैमिली है जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि भट्टी साहब आप मेरे साथ
1: जी बिल्कुल ऑफ कोर्स,
0: क्योंकि जो आपसे जितने भी सुनने वाले हैं तो मैं कह रहा हूँ हम और आप भाई हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, आपको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं, ऊपर वाले से यही दुआ कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और अपने बच्चों के साथ आपका प्यार बना रहे, और हमारे साथ भट्टी साहब और हमारे साथ भी आपका ये बड़े सालों का जो प्यार बना रहे इसको नजर ना लगे, ये प्यार और बढ़े, ये रिश्ता और गूढ़ा हो, ਮੇਰਾ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ
1: ਜਾਂਦਾ
0: ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ। ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਕੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰ ਘਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕੇ ਰੱਖੇ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਫਿਫਥ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਮੀ ਨਗਰ ਲੰਡਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਕਲ ਆਪਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Global Travel and Tours.
3: Global Travel and Tours. Mrs.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही गोट पाए निहारी खोए वाले चने स्मोकी कीमा बटर और सेसमी नान लस्सी और बेशुमार आइटम्स केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी बर्थडे वेडिंग फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 905-839-0002 बटकड़ाही जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता
2: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राबता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू
3: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
4: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब सीख कबाब कड़ाही बिरयानी ताजा नान और बेशुमार डिशेज जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 905-282-9868 बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 905-282-9868
5: जनाब आज के प्रोग्राम को ग्लोबल ट्रेवल टूर भी स्पॉन्सर करते हैं और कमल रशीद साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं वो अगले हज के लिए वहां पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो आज उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका तो दुनिया में आपको कहीं भी सफर करना हो बड़ी तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके साथ साथ अंडरवन रूफ आपके लिए इमिग्रेशन की सर्विसेज भी हैं कौंसलेट सर्विसेज भी हैं और मनी ट्रांसफर की सर्विसेज भी हैं हज उमरा के स्पेशल पैकेजेस हैं इनके पास आप नंबर नोट कर लीजिए कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो 905-275-3555 बटकड़ाही की पिकिंग लोकेशन पर हलवा पूड़ी के नाश्ते का आगाज हो रहा है 6 जून से और जबरदस्त किस्म की हलवा पूड़ी है अली भाई कहते हैं कि ऐसा जायका आपने चखा नहीं होगा तो आप तशरीफ ले जाइए बटकड़ाही की पिकनिंग लोकेशन 820 किंगस्टन रोड पिकनिंग 905-839-0002 905-839-0002 24 घंटे माइन शाह पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी रेसेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए कॉल तला भट्टी 647-295-7861 647-295-7861 लिए चलेंगे आपकी न्यूज की तरफ जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब
6: You're listening to CMR FM 101.3.
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने
7: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157
4: न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन तीन खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपनी खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 43